धूल से भरी हवा, सूखी नदियां और बढ़ता हुआ तापमान। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वो वास्तविकता है जिसकी ओर हमारी धरती तेजी से बढ़ रही है। साथियों, मनुष्य की आवश्यकताएं हमेशा से रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में आवश्यकताएं धीरे धीरे अंधाधुंध उपभोग में बदल गई हैं। आज हम पहले से कहीं अधिक खरीद रहे हैं, अधिक संसाधन उपयोग कर रहे हैं, अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और अधिक कचरा पैदा कर रहे हैं। मोबाइल बदलने से लेकर फैशन के नए ट्रेंड तक, हर चीज की दौड़ में प्रकृति पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। हम भूल जाते हैं कि हमारी हर सुविधा की कीमत कहीं ना कहीं प्रकृति चुका रही है। एक नया फर्नीचर, एक नया घर, एक नया उद्योग, इन सब के लिए जमीन चाहिए, लकड़ी चाहिए, संसाधन चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया भर में जंगलों का क्षेत्र लगातार घट रहा है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, वे धरती के फेफड़े हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये वे वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं, हजारों जीव जंतुओं का घर होते हैं। जब जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं गिरते बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की जिन चुनौती का सामना कर रही है उसमें वनों की कटाई एक बड़ा कारण है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी की लहरें अधिक तीव्र हो रही हैं, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। कभी जो मौसम अनुमानित हुआ करते थे आज वे अनिश्चित होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने विकास को केवल उपभोग से जोड़ दिया है। हमने ये मान लिया है कि जितना अधिक उत्पादन और उपभोग होगा उतनी ही अधिक प्रगति होगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या विकास वो है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में डाल दे? क्या विकास वो है जो नदियों को प्रदूषित कर दे, जंगलों को खत्म कर दे और हवा को जहरीला बना दे? सच्चाई ये है कि प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं नदियां सूख रही हैं, कहीं वन्य जीव अपने आवास खो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इनका असर अंततः मनुष्य पर ही पड़ रहा है। जब जंगल कम होते हैं तो बारिश का संतुलन बिगड़ता है, जब बारिश असंतुलित होती है तो खेती प्रभावित होती है, जब खेती प्रभावित होती है तो खाद्य संकट बढ़ता है। यानी प्रकृति को होने वाला हर नुकसान अंततः मानव जीवन को प्रभावित करता है। दोस्तों, धरती हमारी माँ कही जाती है, लेकिन सोचिए यदि कोई माँ लगातार बीमार होती जाए और उसके बच्चे केवल अपनी सुविधाओं में व्यस्त रहे तो क्या होगा? आज धरती का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो हमें पानी देती है, हवा देती है, भोजन देती है, जीवन देती है, लेकिन बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? कटते जंगल, बढ़ता प्रदूषण और असीमित उपभोग। हमें यह समझना होगा कि समस्या केवल सरकारों या संस्थाओं की नहीं है, समाधान की शुरुआत हमसे भी होती है। यदि हम अनावश्यक खरीदारी कम करें, प्लास्टिक का उपयोग घटाएं, पुनर्चक्रण को अपनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तो बदलाव संभव है। हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि प्रकृति कोई असीमित खजाना नहीं है, उसकी भी सीमाएं हैं। यदि हम आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। वे पूछेंगी कि जब जंगल कट रहे थे तब आपने क्या किया, जब नदियां प्रदूषित हो रही थी तब आपने क्या किया, जब धरती बीमार हो रही थी तब आपने क्या किया। और उस समय हमारे पास शायद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होगा। इसलिए आज आवश्यकता है जागरूकता।

जागरूकता की, जिम्मेदारी की और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की। याद रखिए, एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि धरती के प्रति हमारा कर्तव्य है। आइए संकल्प ले कि हम विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाएंगे। हम अपनी जरूरतों को समझेंगे, लालच को नहीं। हम जंगलों को बचाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि यदि वन बचेंगे तो जीवन बचेगा, यदि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो मानवता भी स्वस्थ रहेगी। तो श्रोताओं, याद रखिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। आइए इस अमानत की रक्षा करें। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। आज की विविधा में बस इतना ही।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया

0: देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपये की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थयात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के

0: लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृहमंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और जैसा कि आप जानते ही हैं आज है शनिवार, तो शनिवार को आता है आपका मनपसंद कार्यक्रम आज सुबह। तो आज की ये पेशकश आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नंदिनी मिश्रा।
1: जी हाँ, और साथ में हूँ लवि सिन्हा।
0: तो स्वीकार करें हमारा नमस्कार। एक समय में एक ही काम करो और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त होते हैं तब तक काम बहुत आसान लगता है।
1: जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आलसी अगर कोई हो जाता है तो फिर बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, और उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य आप करिए, बिल्कुल ही आपने महसूस भी किया होगा कि जिस भी कार्य को हम करें पूरे मनोयोग के साथ अगर उसको करते हैं तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते।
1: जी बिल्कुल, कहा भी जाता है ना, पुरानी कहावत भी है कि दो नाव पर पैर नहीं रह सकते।
0: बिल्कुल सही बात है। आपको जीवन में एक लक्ष्य साधिए और पूरे ध्यान के साथ तो उसको, बिल्कुल अर्जुन ने जिस प्रकार से मछली की आंख फेंधी थी ठीक उसी प्रकार, यानी एक उदाहरण है कि आप अपने लक्ष्य को साधिए, इधर उधर के डायवर्जन से अपने मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, विचलित मत होने दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। तो पूरे योग के साथ
1: मन पे लगाम लगाते हैं और मन की लगाम को ले चलते हैं उस पतवार की ओर, जो पतवार हमें बहुत ही सुंदर सुंदर हौले हौले नैया, जो है संगीत की नैया, उसमें प्यारा सा मधुर गीत हम तक पहुंचा रही है।
0: समझ गए, हम समझ गए। चलिए लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।

जी हाँ, जानते हैं ये जो गीत है ये हमने फिल्म डोर से लिया है, और गायक कलाकार हैं शौकत अमानत अली, और गीतकार हैं मीर अली हुसैन, और संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

0: जी हाँ, बिल्कुल नहीं रुक सकता है और बिल्कुल नहीं झुक सकता है वो हौसला जो वाकई में हिम्मत से लिया गया, हिम्मत से बनाया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे हौसले की जो पहचान है, हौसले की बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो हमारे बहुत सारे दिव्यांग साथियों ने भी पेश किए हैं।
1: बात तो सही है। जीवन
0: जी
1: में अगर ईश्वर, ये हम लोगों ने देखा है कि कहीं कुछ कमी कर देते हैं तो उसको भरपाई कहीं और दूसरी जगह जरूर कर देते
0: जी
1: हैं।
0: इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है ना कि सिक्स सेंसेस मिल जाते हैं ऐसे ही लोगों को। और यही बात की जाए अगर, तो हमारे बहुत सारे संगीतकार हैं, हमारे गीतकार भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं की हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे खिलाड़ी भी हैं। आप बहुत अन्य
1: हर
0: क्षेत्रों में
1: क्षेत्र
0: देखें,
1: में,
0: और फिर हम दूर
1: हाँ
0: क्यों
1: आगे
0: जाएं,
1: बढ़
0: हम
1: रहे
0: बात
1: हैं
0: करें सूरदास जी की भी
1: बिल्कुल। तो
0: तो
1: हर
0: फिर
1: क्षेत्र
0: हाँ
1: में
0: हर
1: इन्होंने
0: क्षेत्र में।
1: अपनी एक धाक जमाई है और
0: जी
1: अपनी दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं है। तो
0: बिल्कुल।
1: जब बात हो गई है हौसले की और दिव्यांगों की, अगर हम बात कर रहे हैं तो लवी, इसी बात पे आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय शंकर जी से उनकी वार्ता सुनिए। सशक्त दिव्यांग, समृद्ध भारत, केंद्र सरकार के 12 वर्ष और बदलता जीवन। आइए सुनते हैं इस वार्ता को।
2: नमस्कार श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके सबसे शक्तिशाली लोग कितना आगे बढ़े, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने अपने सबसे जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग को कितना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया है। आज जब हम केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तो यह सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं का जश्न नहीं है, यह जश्न है उस गरिमापूर्ण बदलाव का जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में आया है। बीते एक दशक से अधिक समय में देश ने सहानुभूति की जगह अधिकार और समान अवसर की नई सोच को अपनाया है। सुगम्य भारत अभियान से लेकर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID तक का यह सफर बेहद ऐतिहासिक रहा है। आइए सुनते हैं वार्ता डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी से।
3: आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं दृष्टिबाधितार्थ विभाग का पूर्व विभागाध्यक्ष भी हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसको कार्य करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, और इन 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितने कार्य किए हैं दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित, वो वाकई काबिले तारीफ हैं। मैं कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा जिससे ये साफ परिलक्षित होता है कि जो वर्तमान सरकार है वह दिव्यांगजनों के प्रति कितना ज़्यादा ध्यान देती है और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए तमाम वह प्रयास कर रही है जिससे दिव्यांगजन अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। इन्हीं प्रयासों से आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जो दिव्यांगजनों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत बदला है। मैं आपका ध्यान सबसे पहले आकर्षित कराना चाहूँगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 में आया। सबसे पहले उसमें यह बात चर्चा करने योग्य है कि किस प्रकार जो अन्य दिव्यांगजन थे उनकी जो श्रेणियाँ थीं वो पहले वाले जो एक्ट थे उसमें अछूती थी, और 1995 का एक्ट हुआ करता था जिसमें केवल 7 दिव्यांगताएं थीं, उनको बड़े अच्छे तरीके से श्रेणीबद्ध करते हुए, 4 श्रेणियों में विभक्त करते हुए कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता श्रेणियों में बांटा गया।

किया जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा, जिसका सीधा प्रभाव उन दिव्यांगजनों पर पड़ा जो पहले सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव शिक्षा नीति निकल कर के आई, उसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए जो विद्यालयी शिक्षा है उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया और जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी एक अलग अध्याय में दिव्यांगजनों की शिक्षा के हितों की बात की गई। आप देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, अर्थात जो भी दिव्यांगजन है वो उन समस्त सुविधाओं तक पहुंच सके, यानी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके प्रयास किए गए। अक्सर ये देखा जाता है कि दिव्यांगजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनकी लर्निंग को इंश्योर करने के लिए डिजिटल संसाधनों का विकास किया गया। जिस वक्त इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक वर्ष पूर्ण हो गया था, तत्समय भारत के प्रधानमंत्री ने जो इंडियन साइन लैंग्वेज है, भारतीय सांकेतिक भाषा, उसको एक विषय की मान्यता दी और उसके बहुत दूरगामी प्रभाव हमारे जो श्रवण दिव्यांगजन हैं उन पर पड़ने वाला है, और किस प्रकार उच्च शिक्षा में और विद्यालयी शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, इन सभी की व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुनिश्चित की गई। बहुत सारी छात्रवृत्ति की योजनाएँ चलती हैं, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, PhD स्कॉलर्स के लिए योजनाएँ हैं। पहले इनके लिए विद्यार्थियों को एक अलग अलग पोर्टल्स पर ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में हमारे पास एक सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जिस पर प्रत्येक विद्यार्थी को स्कॉलरशिप के लिए सारी सुविधाएं एक सिंगल विंडो के तहत मिल जाती हैं, और इससे जितने भी विद्यार्थी जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं उनको अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की थी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया था। इस कैंपेन का ये प्रभाव पड़ा कि एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, यानी जितनी भी सार्वजनिक स्थान थे, सार्वजनिक परिवहन थे, उन सब को दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप डिज़ाइन किया जाने लगा। आज आप देखेंगे जितनी भी बसेस हमको दिखाई देती हैं वो सब लो फ्लोर बसेस दिखाई देती हैं। विद्यार्थी जो भी दिव्यांगजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में एक व्हीलचेयर बाउंड व्यक्ति भी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो फ्लाइट हो, कहीं पर भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विकसित किया गया जिससे विद्यार्थी अपने घर पर ही रह करके स्वयं और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपनी लर्निंग जारी रख सकता है। एक योजना आपको याद होगी जिसे हम एडिप स्कीम के नाम से जानते हैं। एडिप स्कीम में दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार मदद करती है, और इस एडिप योजना में विगत कुछ दिनों में हमने देखा कुछ उपकरण हैं जो मूल्य है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एडिप योजना के में परिवर्तन करते हुए उसका जो प्रति उपकरण मूल्य था उसको बढ़ाया गया। आप देखेंगे कि एडिप योजना में कॉकलियर इम्प्लांट को भी डाला गया जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए प्रति दिव्यांगजन श्रवण बाधित बालक के लिए है, यानी श्रवण बाधित बालक को यदि कॉकलियर इम्प्लांट कराना है तो 6 लाख रुपए तक की सुविधा सरकार अपनी ओर से देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज हैं जो चलन दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ उपकरण अत्यंत महंगे होते हैं, उनकी भी व्यवस्था जैसे ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, इन जो हाई एंड हाई टेक डिवाइसेज हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था इस एडिप योजना में की गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके अधीन क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र यानी कंपोजिट रीजनल सेंटर CRCs काम करते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई जिससे क्षेत्रीय प्रभाव के चलते और जो हमारे देश के विभिन्न भाग हैं उन सभी में जो दिव्यांगजन रहते हैं उनको आप बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसकी सुनिश्चितता सरकार द्वारा की गई। आजकल कौशल विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है और दिव्यांगजनों को यदि आप विभिन्न कौशलों को प्रशिक्षण देते हैं, कुछ कौशलों का विकास उनके अंदर करते हैं, तो वो स्वयं रोजगार उन्मुख होते हैं, और यह भी देखा जाता है कि कुछ स्किल्स को प्राप्त करके दिव्यांगजन बहुत

0: अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जिनको यदि श्रवण बाधित व्यक्तियों को सिखाया जाए तो वो ऐसे रोजगार में जा सकते हैं जहाँ पर श्रवण की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि वहाँ पर तेज आवाज़ करने वाले स्थान हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर वे आसानी से अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो मानसिक बंधित जन हैं उनके लिए भी ये सुविधा है कि जो रूटीन काम है, जैसे शर्ट में बटन लगाना, बॉक्सेस में कुछ सामग्री को निश्चित मात्रा में पैक करना, इन सब का भी प्रशिक्षण देने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए गए हैं। और आजकल के डेट में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो बजट सरकार की ओर से पेश किया गया उसमें एक टैगलाइन थी, वंचितों को वरीयता, अर्थात जो भी डिप्राइव्ड हमारे देश में लोग हैं उन सब लोगों को हम वरीयता प्रदान करें, टेक्नोलॉजी में वरीयता प्रदान करें, प्रवेश में वरीयता प्रदान करें और प्रत्येक आयाम में उनको वरीयता मिलनी चाहिए। एक सरकार की बड़ी अच्छी योजना रही है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना, जिससे प्रत्येक दिव्यांगजन को एक अलग पहचान मिलती है। इस योजना से एक फायदा यह भी हुआ है कि दिव्यांगजनों को पहचाना जा सके और उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन सुविधाओं को दिया जा सके। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो मूल उद्देश्य है वो बच्चे को शिक्षा तक पहुंचाना है, और यदि शिक्षा तक बच्चा नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा को बच्चे तक पहुंचाना है। इन सब प्रयासों से जो भी दिव्यांगजन हैं उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हुआ है, और जो टेक्निकल सशक्तिकरण है, जो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट हुआ है, आप देखेंगे कितने ही दिव्यांगजन मोबाइल लिए अपना सारा काम अपने मोबाइल से कर लेते हैं। अपने मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन, दृष्टि दिव्यांगजन स्वयं अपने टेक्निकल जो मोबाइल है उसका इस्तेमाल करके, स्मार्ट मोबाइल का यूज़ करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म से लेकर के फीस इत्यादि तक भी स्वयं जमा कर लेता है, और इससे उसका जो जीवन है वो अधिक गुणवत्तापरक हो गया है। ये देखते हैं कि भाई जो प्रयास लाखों दिव्यांगजनों के लिए सरकार कर रही है उससे हम ये मान सकते हैं कि जो भी दिव्यांगजन हैं वो हमारे देश के एक उत्पादक नागरिक बनने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उत्पादक नागरिक बन भी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।
1: साथियों, 12 साल एक बड़ा मुकाम होता है और इस दौरान बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक सोच तक एक बड़ा बदलाव देखा गया है, लेकिन समावेश की यह राह यहीं समाप्त नहीं होती। असली सफलता तब सिद्ध होगी जब देश का हर दिव्यांग नागरिक बिना किसी बाधा के अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। सरकार ने नीतियां बनाई हैं, मार्ग प्रशस्त किए हैं, परंतु एक संवेदनशील और सुगम्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी हम सभी की है। आइए इस 12 वर्षों के सफर से प्रेरणा लें और ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं जहां किसी की शारीरिक या मानसिक अक्षमता उसकी योग्यताओं के आड़े न आए। इसी अटूट विश्वास के साथ कि बदलाव का यह कारवां आगे भी निरंतर जारी रहेगा, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
2: ये वार्ता आप सुन रहे थे सशक्त दिव्यांग समृद्ध भारत, केंद्र सरकार के 12 वर्ष और बदलता जीवन विषय पर। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे रमनप्रीत सिंह। और जैसा कि हम लोग अभी कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज के विषय की, तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में ना बहुत सारी बातें आती हैं। हम हर बात को हम बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं कि हमें जो मिला वो हमने बहुत
3: ग्रांटेड हम ले लेते हैं।
2: हाँ, उसको हमने खास नहीं लेते ना।
3: एक छोटा सा यही उदाहरण यहीं पे बहुत जल्दी से शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आज समय कम है हमारे पास। अभी कुछ दिन पहले ना घर में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम जल्दी जल्दी के फ्रिज बंद कर दो, टीवी बंद, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे तो उनको बंद कर रहे थे। तो सबको बंद करते समय एक ख्याल आया कि ईश्वर ने जो हमें ये शरीर दिया है, मानव शरीर, इसमें भी तो कितने सारी मशीन उन्होंने फिट करके दी है। ये दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, हम इन्हें आराम देने की कभी नहीं सोचते।
2: बिल्कुल। और ये तो
3: अपनी ये जबान जो हमारी है इसको कभी भी नहीं रोकते, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। जबान के तहत हम लोग इतना ज्यादा उसके अधीन है, स्वाद के अधीन है हम लोग, कभी ये नहीं सोचते कि शरीर में जो हमें ईश्वर ने एक अनमोल हमारा जो उपहार हमें मिला है इसको भी हम दुरुस्त रखें।
2: जी जी बिल्कुल। तभी तो देखिए फ्लक्चुएशन होता है, बॉडी में भी फ्लक्चुएशन होता है, यानी बीमारियां अपना संकेत देती हैं और कहती हैं जरा हमें भी

0: राम दो, हमें भी विश्राम दो। और देखिए यही रूप यही रंग हमारे पारंपरिक तौर से जो चलता आ रहा है व्रत उपवास का, जिसे लोग आजकल डाइटिंग पर ले आ जाते हैं, वो शायद वो तो सही नहीं है कहेंगे, लेकिन व्रत उपवास में भी देखिए ना, आप अपने शरीर को आराम देते हैं, हर शरीर के हर अंग के लिए सोचा जाता
1: बहुत जरूरी है और इस चीज पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जो ईश्वर ने ये उपहार दिया है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मानव चाहे बहुत कुछ बना लेता है, बहुत
0: सही कहा आपने,
1: चीजें बन गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है ना?
0: जी, और सेहतमंद रहना है तो हमें ऐसी बातें जरूर सोचते रहना चाहिए। और अब सोचते सोचते आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म लिबास से, स्वर लता मंगेशकर के थे, संगीत से सजाए थे आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं गुलजार।

0: और लवी, यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हम याद कर रहे हैं उस महान प्रतिभा को, उस महान शख्सियत को जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें बाबा राव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। आपका जन्म 13 जून 1879 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। ये विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, के बड़े भाई थे
1: जी। और अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के आप संस्थापक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। और साथ ही ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में बंद किया था। ऐसे शहीद, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम सब नमन करते हैं।
0: बिल्कुल, हमारा शत शत नमन।

0: और लवी, आज कुछ बहुत बेहतरीन दिवस भी मनाए जाते हैं. आज है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस. इस दिवस की शुरुआत 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के लिए की गई थी.
1: जी हाँ, और ये एक तरह से बीमारी नहीं है, ये आनुवांशिक स्थिति है जिसमें त्वचा की, व्यक्ति के बालों की, आँखों की, उसमें जो थोड़े से रंग का जो भेद हो जाता है, मेलानिन की कमी होती है जिसे रंग द्रव्य कहते हैं, इसके कारण की त्वचा सूरज की किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है और दृष्टि संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं. तो इसी भेदभाव को मिटाने के

0: लिए और अच्छी भावनाएं एक दूसरे को एक दूसरे के बराबर समझने के लिए आज का दिन मनाया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। और इसी के साथ ही साथ आज है सिलाई मशीन दिवस। जी, और सिलाई मशीन यूं तो अब बहुत सारे लोगों ने इसका व्यवसाय कर लिया है और बहुत सारे लोग अब इसको अपने शौक में भी लेकर के आते हैं। और ये दिन सिलाई मशीन के प्रति आविष्कार और कपड़ों की सिलाई की कला को समर्पित है।
1: इसके अलावा आज है विश्व सॉफ्ट बॉल दिवस। हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस तेज गति वाले समावेशी और स्वास्थ्यवर्धक खेल को बढ़ावा देना तथा इसके वैश्विक समुदाय को एकजुट करना है।
0: जी, और आज राष्ट्रीय खरपतवार दिवस भी मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने बगीचे की देखभाल करें और साथ ही साथ शुरुआत करें कि हम कुछ अच्छा खरपतवार यानी कि कुछ ऐसी जो भी हमारे घर में है हम लगा सकते हैं बगीचे का, उसकी देखभाल के साथ कुछ शांति का अनुभव करें। और देखिए आज एक बहुत ही बढ़िया दिवस और भी मनाते हैं क्योंकि हर दिन का है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्हाड़ी फेंक दिवस है। यूं तो सुनकर के कुछ हंसी ही सकती है, लेकिन ये जो खेल है खेल के तौर पर इसको लिया जाता है, खेल और मनोरंजन के रूप में कुल्हाड़ी फेंकने की कला का उत्सव ये मनाने के पीछे इसका है उद्देश्य। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्हाड़ी फेंक दिवस है, हम इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ
1: इसके बारे में एक और छोटी सी घटना आज के दिन हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, हम भारतीयों को इसके बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए यहाँ इसका जिक्र कर रही हूँ। 1940 में आज ही के दिन महान भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन के जेल में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने लंदन में पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये जानकारी हमारे लिए जानना हमारी बहुत आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारी पीढ़ी इस बात में जागरूक होना चाहिए कि हम लोगों ने कितनी सारी बातों को देखा है जो गवाह है कि हम
1: त्याग के बाद आजादी पाई है।
0: जी,

0: जी जो गीत श्रोताओं आप सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म एक विलन से
1: जी, और इसे स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने, गीतकार है मिथुन और
0: बहुत ही भी वही है
1: जी और बहुत ही प्यारा सा ये जो गीत आप सुन रहे हैं, इसी गीत के साथ ही साथ अब हमें वक्त हो चुका है कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम आज सुबह से ले लें इजाजत।
0: हाँ, तो अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा
1: और लवी सिन्हा को दीजिए
0: अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

और इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ, साथ ही संपन्न हुआ आज का नमस्कार लखनऊ। फिलहाल सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात सुनवाने के लिए, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दो?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि

0: परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई।

0: जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन व सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमरीका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकत दारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकत दारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफ़ा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वजीर आजम का साल 2014 के बाद फ्रांस का 7वां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली 2 तरफ़ा चोटी मुलाकात होगी। वजीर आजम मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकिद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस दिस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक मसनू जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रतिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पेलेग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ तआवुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रतिस्लावा से CM पल्लोरुत्सी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मरतबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमोशान तकरीब में 500 से ज़्यादा मर्द और ख्वातीन कैडेट्स भारतीय फ़ौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट

परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरचार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्मों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिजाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निज़ाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिजाइल तक बैलिस्टिक मिजाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने अहम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिजाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये निज़ाम मिजाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को

0: भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिले ज़िक्र तब्दीलियां हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तहकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफ़र काफ़ी तेज़ रफ्तार रहा और यह सफ़र भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिले दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, माँ कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर का क्याम मोदी हुकूमत के काबिले जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तख्लीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल ज़िक्र है। ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरद चंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफ़ा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज़ डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमरीका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से अमरीका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरक मेज़बान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ। कनाडा की जानिब से सैल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलमी कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजाम इनकलाब ने बहर ओमान में एहतियाती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजरानों की मौत पर रात खारजा की जानब से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिम उमूरों को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रात खारजा ने उन्हें अपनाए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इनकलाब ने कांग्रेस की लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरख्वास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज़्यादा मनफी असर तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिज़ाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाज़ी हलाक हुए हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के मेल और फरमाइशों पर आधारित आपका मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम में श्रोताओं आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा काम, क्या? बस हमें लिख भेजना है अपनी

फरमाइश अपनी इलेक्ट्रॉनिक पाती में और हमें भेज देनी है। आप जो भी फरमाइश करेंगे हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके पसंद की गीत सुनवाएंगे। तो हमारा ईमेल आईडी जल्दी से नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो हम आपकी फरमाइशों की प्रतीक्षा में हैं, आपके मेल्स की प्रतीक्षा में हैं और आप भेजिए और जुड़िए हमारे साथ। तो लीजिए फरमाइशें हमारे पास आनी आरंभ हो गई हैं और ये जो पहली फरमाइश आई है ये आई है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला अनेजा की ये फरमाइश आई है। अगली फरमाइश आई है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी की सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ टीटी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज की आप सबने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी की गुजरात गांधी ग्राम से आपकी फरमाइश आई है और लगातार भारी संख्या में आपके मेल्स आ रहे हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा की फरमाइश आई है और अगली फरमाइश जो हमें दिख रही है वो है आप सबसे अनुरोध है कृपया एक बार में सिर्फ एक ही मेल आप भेजें एक ही फरमाइश भेजें। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्नो बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा की फरमाइश आई है। इसके अलावा फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा साया का ये गीत।

और आइए अगले गीत की फरमाइश हमारे पास जो आई है वो आई है संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अली कबीर की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है विजय पाल यादव ललहुआ से, आपने अपनी ये फरमाइश हमें भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ ज़िला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव और विजय पांडे जी की फरमाइश आई है। और हमारे पास फरमाइश है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टो, विलियंस डिकोस्टो की फरमाइश आई है। और फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी की फरमाइश आई है। अगली फरमाइश आई है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े

करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े की। और फरमाइश आई है हमारे पास याकूब आसमा कुरेशी, यूसुफ आसमा कुरेशी, सरफुद्दीन आसमा कुरेशी और वसीम आसमा कुरेशी की। पटना बिहार से आपने अपनी फरमाइश भेजी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आई है ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाह नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान की। और एक फरमाइश और हम पढ़ देते हैं जल्दी से। ये फरमाइश आई है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा की। आपने अपनी फरमाइश भेजी है बीड शहर महाराष्ट्र से। आप सब सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

और ये बहुत ही पुरानी फिल्म 1957 में आई थी परदेसी, उसका गीत अभी श्रोताओं आपने सुना। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अगले गीत के लिए, वो आई है मैनपाट से, सोनम थापा, सरगुजा मैनपाट से, सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा की आप सबने अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है, जो अगले फरमाइश करता है वो है ज़िला

खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप की। और आप सबने अपनी फरमाइश भेजी है कार्यक्रम में, हम आपके बहुत आभारी हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है फुलेई नगर बीड से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा की। और फरमाइश हमारे पास भेजी है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। आपने भी गीत की फरमाइश भेजी है, कार्यक्रम में अपना मेल भेजा है, उसके लिए हम आप सभी श्रोताओं के बहुत आभारी हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का ये मेल हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे पास मेल आया है धतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा का। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत।

अश्रोताओ, धीरे धीरे करके हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ रहे हैं और अब बारी है आज की आखिरी जो फरमाइशें हैं उनको पढ़ने की। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है अनारकली बाज़ार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक की। आप सबने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजी है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्यारी गुड़िया वेदा सिंह की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश भेजिए ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली। आपका मेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया बार बार अपनी फरमाइश ना भेजें। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा वेग सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर की फरमाइश आई है हमारे पास कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारी की फरमाइश आई है। और फरमाइश आई है लगातार भारी संख्या में आपके मेल्स हमें मिल रहे हैं। ये फरमाइश हमें भेजी है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब। आप का मेल हमने पढ़ा पहले भी और बार बार कहते हैं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया दोहरा कर आप सब अपनी फरमाइश ना भेजें, जिससे हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग नए जुड़ सकते हैं। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है शिमला हिमाचल प्रदेश से वलीउल्ला डोम, डब्लूउल्ला डोम, रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम की। आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अजनबी का ये गीत।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

और दोस्तों, इसी गीत के साथ अब हमें दीजिए विदा, क्योंकि अब समय हो गया है कि आज का ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करें, और अगली बार और नई फरमाइशों के साथ, नए गीतों के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
4: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के

0: प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिग्रा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गनकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
1: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रूपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है, लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
3: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है, और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है।

0: उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाढ़ सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
1: आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
0: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आम जन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपद वासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: मेरी इंतहाए निगारिश यही है, मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। सामीने बज़्म, रामपुर रेडियो मरकज़ से आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम हाजिर है। आदाब सुबह कबूल करें। समीन, किसी भी ज़ुबान का असल सरमाया उसके अदब में, उसके लिटरेचर में मौजूद होता है। हर ज़ुबान अपना वजूद अपने अदब के ज़रिए ही मुस्तहकम करती है और अदब समाज का आईना होता है। अदब से मुराद वो तहरीरी या ज़ुबानी फ़न लतीफ़ है जो इंसानी जज्बात, अखलाक और

0: का मतलब ये कि पहले अदब सिर्फ किताबों की हद तक ही
1: जी
0: महदूद था, लेकिन
1: जी
0: आज जो है वो इंसान के हाथ
1: वसत
0: में,
1: वसत हो गई है,
0: हाँ
1: बस
0: वसत
1: बसी
0: हो
1: हो
0: गई
1: गई है,
0: है
1: जी,
0: जी।
1: बसी पैमाने पर आ गया है अदब
0: अच्छा
1: को।
0: जी हाँ,
1: और
0: तो जो ये
1: बहुत
0: तगयुरात होते हैं वो
1: जी
0: कहीं ना कहीं हमारे लिए मुफीद भी साबित होते
1: जी
0: हैं, और
1: जी
0: कहीं ना कहीं इसमें हमारे लिए नुकसान
1: जी
0: भी होता है, लेकिन
1: जी
0: वो हमारे अपने ऊपर है कि हम
1: जी
0: क्या उसको
1: वो
0: हासिल
1: हमारे
0: करते
1: ऊपर,
0: हैं उससे।
1: अपने ऊपर मुनासिर है कि हम
0: जी
1: किस
0: असल में
1: तगय्युर
0: तबद्दुल
1: तबद्दुल जो है वो हर हालत में हमें फायदा ही फायदा ही
0: पहुंचाता
1: पहुंचाता
0: है।
1: है।
0: बहुत से तगयुरात ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद हम जवाल की तरफ जा रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: लेकिन हकीकत यह है कि जवाल की तरफ नहीं जाते हैं, वो उस दौर के तकाजे होते हैं जो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: हम उसे उस एतबार से उसी तरफ मुड़ते हैं, फिर मजबूर भी हो जाते हैं वही सब लिखने के लिए,
1: जी
0: क्योंकि जमाना हमसे तकाजा करता है,
1: तकाजा करता
0: और
1: है।
0: अदब जो जमाना तकाजा करता है वही तहरीर करता है।
1: जी, तकलीफें
0: हर
1: हैं सब
0: मौजू
1: पर
0: को
1: जिक्र है।
0: मतलब
1: जी
0: अदब में
1: हाँ
0: शामिल
1: जी
0: किया
1: जी
0: जा रहा है। समना साहिबा, आप जब जेरे तालीम थी तो किस किस्म का अदब उस जमाने में होता था, आप पढ़ती थी, और आज आप माशाल्लाह एक मुअल्लिमा हैं, तो क्या पढ़ा रही हैं आप, क्या देखती हैं, किस किस्म का अदब आज निसाब में मौजूद है?
1: देखिए, मैं जिस वक्त तालिबे इल्म थी तो वो ज़माना

0: जी
1: वो
0: जरूर,
1: हर हालत में हमें फायदा ही
0: फायदा ही
1: पहुंचाता
0: पहुंचाता
1: है।
0: है।
1: बहुत से तगयुरात ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद हम जवाल की तरफ जा रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: लेकिन हकीकत यह है कि जवाल की तरफ नहीं जाते हैं, वो उस दौर के तकाजे होते हैं जो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: हम उसे उस एतबार से उसी तरफ मुड़ते हैं, फिर मजबूर भी हो जाते हैं वही सब लिखने के लिए,
0: जी
1: क्योंकि जमाना हमसे तकाजा करता है,
0: तकाजा करता
1: और
0: है।
1: अदब जो जमाना तकाजा करता है वही तहरीर करता है।
0: जी, तकलीफें
1: हर
0: हैं सबका
1: मौजू को
0: जिक्र।
1: मतलब
0: जी
1: अदब
0: हाँ,
1: में शामिल
0: जी
1: किया
0: जी
1: जा रहा है। समना साहिबा, आप जब ज़ेरे तालीम थी तो किस किस्म का अदब उस ज़माने में होता था, आप पढ़ती थी, और आज आप माशाल्लाह एक मुअल्लिमा हैं, तो क्या पढ़ा रही हैं आप, क्या देखती हैं, किस किस्म का अदब आज निसाब में मौजूद है?
0: देखिए, मैं जिस वक्त तालिबे इल्म थी तो वो ज़माना कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं ख़ासकर कदीम अदब की, यानी वो अदब जो जदीद अहद से पहले का अदब था, तो उस फ़न में और उस अदब में हमें अज़मत नज़र आती है जो अपने ज़माने को पूरी तरह से उबूर किया हुआ था। गालिब और मीर और वली दक्कनी का अगर हम खास तौर से लिटरेचर और अदब की जब बात हो रही है, तो जैसे, और वो एक ऐसा अदब था कि जिसे आज की तारीख में भी शौक से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है
1: जी
0: कि उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, और बहुत ही शौक और ज़ौक के साथ लोग उसका मुताला आज भी करते हैं। और उसकी ज़बान में लताफत थी और बड़ी बारीकियों के साथ दीगर फ़नी पाबंदियों का ख्याल भी रखा जाता था।
1: अच्छा,
0: आज इतने सालों में के बाद भी वली दक्कनी से लेकर मिर्ज़ा गालिब तक ने जो कुछ भी फरमाया वही आज भी मुस्तनद माना जाता है और समझा जाता
1: क्या
0: है।
1: बात है। जी
0: आज भी जब हम उन लोगों के कलाम को या उनके ज़रिए जो तहरीरें थी उनके ज़रिए
1: जी
0: उनका
1: जी
0: मुताला करते हैं अदब में, तो एक अजब ताज़गी और लताफत का एहसास हमें होता है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जदीद अदब में हमें उतनी खूबसूरती और
1: अच्छा
0: रानाई के साथ देखने को नहीं मिलता
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा
0: और मैं न सिर्फ उर्दू अदब की बल्कि अंग्रेज़ी लिटरेचर की भी तालिबे इल्म रही हूँ, और यही फ़र्क मैंने वहाँ पर भी महसूस किया। चाहे हम मिल्टन की बात करें या विलियम शेक्सपियर की बात करें, उनके सोनेट्स, उनके ड्रामे आज भी आप देख लीजिए उठाकर,
1: जी
0: मास्टरपीस हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काबिल लोग नहीं रहे या उनकी तहरीरों में कोई कमी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में भी उनको कोई चैलेंज कर सकता है, या जो चीज़ें उन्होंने विरासत के तौर पे हमें दी हैं
1: जी
0: उसकी कोई बराबरी कर सकता है। अरशद
1: जी
0: साहब, इन्होंने जो अभी बात कही
1: जी
0: कि इनका ज़माना उतना कदीम नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके वक्त में जो अदब आप पढ़ते थे और आज आप जो पढ़ाते हैं, हालांकि वही सब कुछ है उसमें भी, लेकिन फिर भी तरमीम जैसा भी मैम ने बोला कि हुई है,
1: जी
0: क्या महसूस करते हैं आप?
1: देखिए, हर दौर में अदब की कदरें
0: जी
1: उसके तकाजे होते हैं।
0: जी अच्छा
1: गालिब, मीर और उससे पहले, यानी मैं ये कहूँ कि अमीर खुसरो से लेके कुली कुतुब शाह तक,
0: जी
1: और कुली कुतुब शाह से लेके आज के दौर के शायर, ये पूरा अदब जो है मुख्तलिफ तगैयुरात अपने अंदर समेटे हुए।
0: अच्छा
1: उसकी वजह यह है कि मीर गालिब के दौर में जो लसानी कदरें थीं
0: जी
1: वो अलग थीं। हमारे दौर में हम लसानियात की उन कदरों को उन पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं।
0: जी
1: हम मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है,
0: अच्छा
1: हम आजकल जबान पे बहुत जोर नहीं दे
0: जी
1: रहे
0: हाँ
1: हैं।
0: जी हाँ
1: उस दौर
0: जी
1: में जबान जो है,
0: हाँ
1: आपने सुना होगा इंशाल्लाह, खान शाह ने जबान की सफाई कराई,
0: जी
1: उसके
0: हाँ
1: बाद
0: जी
1: फिर
0: हाँ
1: नासिक के दौर
0: जी
1: में
0: जी जी
1: जबान की सफाई सुथराई हुई, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त हिंदी अल्फाज बहुत ज़्यादा शामिल थे उर्दू में, और
0: अच्छा
1: धीरे धीरे उर्दू उर्दू की सफाई हुई और फारसी तराकीब शामिल हुई।
0: जी
1: फारसी तराकीब ने ये किया कि उर्दू में जो लोच, जो लताफत है,
0: जी
1: वो फारसी तराकीब की वजह से है। तो वो उस दौर की कदरें थी जब जबान पर जोर हुआ करता था।
0: अच्छा
1: अगर आप मौजू के एतबार से देखें तो गालिब ने तंगनाए गजल का शिकवा किया है।
0: जी
1: गजल की जो कदरें थी
0: जी
1: उस दौर में, आज गजल ने अपना बिल्कुल चोला बदल लिया
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: अब आजकल मुशायरे में अगर या इस तरह कोई शेर शायर पढ़ता है तो कहता है साहब इसमें एक शेर गजल का भी हो गया है।
0: जी
1: आपने
0: बिल्कुल
1: महसूस
0: जी
1: सुना होगा
0: जी
1: कि
0: जी
1: शेर
0: हाँ
1: गजल
0: जी
1: का भी हो गया, जब
0: यही
1: कोई पढ़
0: बात
1: गजल रहा है
0: जी हाँ
1: कि एक ताज़ा गजल है, उसका कहता है एक शेर गजल का भी हो
0: गजल का
1: गया।
0: जी जी
1: इसका मतलब कि गजल,
0: का जो
1: वो
0: मिजाज
1: जो
0: था
1: मिजाज था, वो मिजाज आज नहीं है
0: हाँ जी
1: बेशक, लेकिन वो आज के जमाने के तकाजे कि गमे जाना पे ही मौकूफ नहीं शेर व गजल, गमे दौरा भी सताए तो गजल होती। आज का शायर
0: क्या
1: ये
0: बात
1: कह रहा है।
0: है
1: वो तो लोग कहते हैं मीर के यहाँ कुनूतियत है,
0: जी
1: कुनूतियत नहीं है, बल्कि मीर ने अपने दौर का पूरा नक्शा खींचा
0: नक्शा
1: है। अदब
0: बिल्कुल
1: आईना है, जिस आईने में हम उस दौर को देख सकते
0: देख
1: हैं, उसके
0: सकते हैं।
1: चलती फिरती तस्वीर हमारे सामने आ जाती है।
0: बहुत खूब
1: तो
0: बहुत
1: आज के
0: अच्छा
1: दौर का, आज का जो अदब है, आज हमारे दौर का सियासी जो तगैयुरात हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो आज
0: जी
1: का हमारा अदब, चूंकि ये दौर जो है ये
0: इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक
1: इलेक्ट्रॉनिक
0: दौर
1: और उसका और इसका दौर

0: तो इस पर आज का जो अदीब है वो इस दौर के एतबार से अपने अदब को आगे बढ़ाना चाहिए।
1: आज इसी बहस से मैं कहना चाहूंगी, मुझे याद आया बली का, मुफलिसी सब बहार खोती है
2: जी,
1: मर्द का एतबार खोती है। ये उस जमाने का जिक्र है।
2: अच्छा,
1: बली का। और ये आज देखिए, तुझ लब की सिफत
0: लाले बदख्शां
1: कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजाला से कहूंगा।
2: क्या
1: ये अल्फाज, ये उनका रब्त जब्त
2: जी
1: कितना अलग सा है। और आज जो ये सब रनाई का जिक्र होता है बिल्कुल अलग अंदाज में होता है। देखिए जमाना जो होता है ना, वो जो भी उस वक्त कदरें होती हैं वो उन्हीं को बयान करता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अदब तब भी सब कुछ यही था, जमाने की रबिश, जमाने के हालात कलमबंद हो रहे थे, और आज भी सब कुछ हो रहा है।
2: अच्छा,
1: टेक्निक बदल रही है
2: जी। अगर हम आपसे बात करें कि अदब अतफाल की बात करें अगर हम, तो पहले हम देखते थे कि बच्चों के अदब में अखलाकी कहानियां शामिल होती थी, लेकिन आज जो है वो लगता है कि उसमें भी तब्दीली आई है। तो क्या मुस्बत और मनफी इंकलाबात आए हैं, क्या महसूस करती हैं आप?
1: आज क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट हो गया, एक तरह से
2: जी,
1: बच्चों
2: जी.
1: का दिमाग बहुत अलग हो गया है। ये मोबाइल और पिक्चर्स
2: वो भी वक्त के
1: सब बिल्कुल तकाजों से
2: मजबूर हैं वो भी जी।
1: तो आज बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में
2: जी।
1: इसलिए जो राइटर्स हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, वो भी उसी अंदाज में लिखते हैं जो बच्चों की जरूरत है आज।
2: अच्छा,
1: बच्चा वही पढ़ेगा जो उसको जरूरत होगी
2: जी।
1: अच्छा, हम आज भी ये वाली बात कहते हैं कि जो हमारे मॉरल स्टडी है वो जरूरी है बच्चों के लिए। तो अगर आप बच्चों को वो सब चीज नहीं देती हैं जो हमारे कदरें हैं, हमारा अदब है, मतलब घर में जो तहजीब तमद्दन
2: जी जी जी
1: वो नहीं होता है, तो बच्चे हमारे क्या बताइए बताइए।
2: समझ रहे, आपके हिसाब से जो आज का अदब है वो तुलबा के लिए कितना मुफीद है? क्योंकि जैसे अभी रुबना साहिबा ने बताया कि अदब बराए जिंदगी भी है, यानी तहजीब व अदाब या अखलाकियात तस्लीमात वगैरह सब अदब ही सिखाता है इंसान को। तो क्या कहना चाहेंगी कि आज के अदब में वो चीज़ें शामिल हैं?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए जिंदगी है और होना भी चाहिए, और इस अदब में बड़ी वसअत है। हमारी जिंदगी का हर पहलू, सामाजिक, सियासी, इंफरादी, इज्तिमाई, हर पहलू अदब, इस अदब में ये अदब अपने अंदर समोए हुए हैं। और जैसा कहा जाता है कि अदब समाज का आईना होता है, अखलाकी कदरों से लेकर तहजीब व तमद्दुन तक और आदाब से और तस्लीमात से लेकर तंज व मजा तक, इंसानी तारीख का हर पहलू और अंदाज इस अदब से मुतासिर होता है
2: जी।
3: आज के दौर की अगर हम बात करें और आज के तुलबा के नज़रिए से हम बात करें कि उनके लिए ये कितना मुफीद है या उनको वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो हाँ। मैं बात करूं कि अदब की हर शाख, चाहे वो शायरी हो या फिक्शन हो या फिर हमारे मजामीन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शाख कहीं ना कहीं, इस शाख ने अपनी तरोताजगी और अपनी जो कुदरती शनाख्त थी उसको खोया है।
2: अच्छा।
3: और कहीं कहीं ना कहीं नुकसान उठाया है।
2: अच्छा।
3: आज जिस तरह से हर मेयारी और गैर मेयारी तहरीर को अदब में बड़ी आसानी के साथ जगह मिल जाती है
2: जी,
3: वो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि गौर व फिक्र करने का एक टॉपिक है। और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं या अदब से वाकफियत रखने वाले, गहरे अदब के मुताला करने वाले
2: जी
3: उनको इस तरफ ज़रूर एक फिक्र करने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर हम बात करें सिनफ शायरी की
2: जी
3: या फिक्शन की
2: जी,
3: तो हमने ज़रूर कहीं ना कहीं इन असनाफ में अपनी सामाजिक कदरों को या अपनी अखलाकियात को खोते हुए देखा है, जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छा पैगाम नहीं है।
2: अच्छा,
3: और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नस्लें उठा सकती हैं, क्योंकि जो तहजीब और जो खूबसूरती हमारे अदब में थी,
2: हाँ,
3: मुझे लगता है कि अच्छा, मिस हो रही है।
2: डॉक्टर अर्शद साहब, आपके हिसाब से अदब के मेयार में जो गिरावट आई है या उसका मेयार क्या बुलंद हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे? कहाँ तक इनकी बात से इत्तेफाक करें?
0: मैं इनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, थोड़ा सा उस पर और रोशनी डालना चाह रहा हूँ
2: जी,
0: कि इसमें कोई शक नहीं कि जमान का जवाल हुआ है। पहले हम जब बच्चों को इब्तदाई तालीम देते थे तो उन्हें तख्ती पे लिखवाते थे
2: जी,
0: और
2: जी।
0: उसके उनकी ताकि उनकी तहरीर भी बने और वो अल्फाज, और फिर उसके बाद इमला लिखवाते थे और वो अल्फाज हमारे घरों में राइज थे। आज हमारे घरों में वो अल्फाज जो लताफत से में डूबे हुए थे वो राइज नहीं है। आज का अदीब इस बात पर मजबूर है, अगर वो गालिब और मीर के मेयार पर आज अदब तख्लीक करने लगे तो अदब कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा
2: जी।
0: कि जो साहिब ज़बान है वो भी मजबूर हैं कि अपनी ज़बान को इतना आसान रखना है उन्हें कि आज का जो मेयार है तलबा का या कारीन का, वो उसे बाकायदा समझ सके और उनकी ज़हनी तस्कीन हो सके। उस दौर में

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम के गाए कुछ अवधि युगल लोकगीत। अभी आपने सुना आप दोनों के स्वर में ये देवी गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं इन्हीं की आवाज़ों में ये मेला गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम के गाए कुछ अवधि युगल लोकगीत। आपके साथ जो संगत कर रहे थे नाल पर थे अवध बिहारी वर्मा, हारमोनियम पर चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर साथ दे रहे थे दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर थे बाल कृष्ण शर्मा। इसके साथ आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आपको बताते चलें कि दिन में 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आप एक बार पुनः अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम के गाए अवधि युगल लोक गीत सुन सकेंगे।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान

0: करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सबसे पहले श्रोताओं सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म काम चोर का ये गीत। संगीत दिया है राजेश रोशन ने और शब्द रचना है इंदिवर की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म काम चोर का ये तो गाना। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में जी शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनिन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने

यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP की वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें।

0: और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: प्रस्तुत है चित्रपट से। कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण की धुन पर समीर के बोलों को। गीत को स्वर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, और फिल्म का नाम है रंग।

0: किस्सा सुनो,
1: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से, कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। धुन बनाई है नदीम शमर ने, फिल्म का नाम है जीत और इस गीत के रचनाकार हैं समीर।

0: टाटा नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहाँ सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोलों को। अपनी धुनों के साथ साथ दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है राम लखन।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में देव कोहली के बोलो को। संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं राम लक्ष्मण की धुन पर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म हम आपके हैं कौन का ये दो गाना।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संकेत।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 11 बज चुके हैं। अपेश है फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि जिन साहब से कोशिश हो रही थी बात करने की, शायद टेलीफोन का मसला है, डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, कोशिश करें कि फ़ोन करने से पहले आप गाना और फिल्म का नाम ज़रूर नोट कर लें, ताकि किसी तरह का विलंब ना हो। बड़ी मुश्किल से तो फ़ोन कॉल शामिल होता है, मिलता है, उसके बावजूद अगर कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती। खैर, कोशिश करें।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओह राकेश जी, कैसे हैं? कैसा है शिमला का मौसम?
1: बस बारिश हो रही थी लगातार, कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, आज सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी।
0: हाँ, हमारे शहर लखनऊ में भी यही सूरत हाल है, सुबह से मौसम बड़ा खूबसूरत सा हुआ है।
1: मौसम बारिश का बन रहा है क्योंकि अब तो बरसात भी आने वाली है।
0: हाँ,
1: तो
0: जी, हाँ, जी, हाँ, जी,
1: इस वक्त सभी जो आने वाले टूरिस्ट हैं तो मैं उनसे थोड़ा निवेदन करना चाहिए कि पहाड़ों का सफर थोड़ा सावधान से करें क्योंकि अब बरसात मानसून सीजन भी आने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाना कौन सा सुनवाना है आज?
1: क्यों तेरे नाम मूवी का गाना सुना है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: अच्छा, सुनवाया जाए?
1: बिल्कुल सुनवाइए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कौन साहब बोल रहे
1: हैं? ये जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ सर जी।
0: क्या हाल चाल है भैया?
1: बढ़िया है, लेकिन मुझे जन्म से दिखाई नहीं देता और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: ओ, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, कब से सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को?
1: प्रोग्राम सर सुन रहा हूँ 2001 से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब से मेरा रेडियो छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है कि रेडियो को छोड़े।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने,
1: क्योंकि जब से मैंने रेडियो शुरू सुनना शुरू किया तब से मुझको बहुत कुछ मिला है इससे।
0: बहुत बड़ी बात हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपके बाद बहुत स्लो आ रही है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं कि आप तक सही तरीके से आवाज पहुंचे। गाना कौन सा सुनवाना है आपको?
1: आज गाना सुना दो, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गाने के बोले ये गलियां ये जो आवारा, और कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: हाँ जरूर, बताएं बताएं नाम बताएं
1: जी। मांगेलाल चंदेल भाई साहब हो गए, दिनकर सिंह जी हो गए, पूरन वर्मा जी हो गए, और फूलचंद पाल भाई साहब हो गए, और सतीश भाई साहब हो गए, और जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ सर जी, जिला गुना मध्य प्रदेश।
0: जी जी जी, मांगीलाल जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हूँ।
0: हाँ, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है, सब लोग बहुत अच्छे हैं।
1: जी, जी,
0: घर में कैसे हैं सब लोग? उधर सब ठीक ठाक हैं जी। मांगीलाल जी गाना बताएं कौन सा? जी मांगीलाल जी गाना बताएं कौन सा सुनवाना है?
1: अच्छा सर जी, फिल्म का नाम रहेगा पतंगा।
0: अच्छा बोल, क्या है गीत के?
1: मेरे पिया का हीरा।
0: आए हाय, क्या बात हुआ,
1: वहाँ से टेलीफोन।
0: आए हाय, तुम्हारी याद सताती है, क्या बात हुआ
1: जी।
0: सुनवाया जाए?
1: जी बिल्कुल, लगाइए सर।
0: लीजिए गाना सुनिए।
2: मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: वाह, क्या हाल चाल है भगवान जी?
1: अच्छे हैं सर, आप आ जाते हैं सर जब बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है सर। और आप है ना सर, गाने कम सुनवाते हो और कॉलर को ज्यादा लेते हो सर, तो उससे और सारे बहुत सारे श्रोता जुड़ पाते हैं सर।
0: हाँ, ज्यादा लोगों से मुलाकात हो जाती है। गाना तो यह है कि सुनते ही हैं हम लोग।

0: अच्छा लग रहा है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम लग रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब लग रही है।
0: बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। गाना कौन सा सुनवाएं आज?
1: सर फिल्म का नाम है जानसी और गाने के बोले दिल दीवाना बेकरार होने लगा है।
0: अच्छा,
1: और सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा सर, जो लाइव सुन रहे हैं सर आपको डेलीकेट।
0: थैंक यू सो मच। आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदो, जिला उज्जैन से।
0: वाह प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। क्या करते हैं आप?
1: जी सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक अच्छा। भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप गायक हैं।
1: फिलहाल एमपी में रहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल झालावाड़ आया हुआ हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: अरे वाह, लखनऊ के घर से इतनी दूर होने के बावजूद भी आपने लखनऊ को अपने पास बनाए रखा है, बहुत शुक्रिया आपका।
1: मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम हमें मिलते हैं और मैं प्रसारण मिलते हैं हमें।
0: वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना कौन सा सुनवाए?
1: हुस्न पहाड़ों का, राम तेरी गंगा में।
0: क्या फरमाइश आपकी, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर आपको, मैं भी झालावाड़ आया हुआ ना।
0: अच्छा,
1: यहाँ पे ऐसे पहाड़ मतलब दिखे हैं मुझे, काफी अच्छे हैं और काफी उस पहाड़ पर मतलब पेड़ भी हैं और मतलब ऐसा हरा भरा इलाका है यहाँ पे।
0: अरे वाह, आपको याद आ गई पहाड़ के। थैंक यू। गाना सुनवा जाए फिर।
1: जी मैं आपको बताऊँ सर, आपका प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही अच्छा होता है कार्यक्रम का और आप ज्यादा से ज्यादा कॉलर लेते हैं हमें।
0: थैंक यू, थैंक यू सो मच। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कब दुआएं हैं आपकी, कौन बोल रही
1: हैं? जी सर, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। कैसे हैं आप?
0: बस दुआएं हैं आपकी पूनम जी, क्या करती हैं आप?
1: फिलहाल तो मैं भी कार्यक्रम करती हूँ, कार्यक्रम होस्ट करती हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या क्या वाह बहुत मुबारक हो। अच्छा लग रहा है कि ये सुन के कि आप प्रोग्राम प्रेजेंटर हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी बात है।
1: आप शनिवार को आते हैं, शनिवार को कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं। बहुत दिनों बाद कार्यक्रम
0: में आपसे हमारी बात हो रही है। सो नाइस ऑफ यू पूनम जी, क्योंकि आप खुद इतनी अच्छी प्रस्तुत करता हैं, अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं, तो तब इसको आप लग, वैसे वरना ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि दोस्तों की मोहब्बत है।
1: जी सर, और कहते हैं ना, श्रोताओं से जब बातें होती हैं और उनके भावनाओं के बारे में जाने को मिलता है, उनके विचार
0: सभी
1: तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर।
0: हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो है।
1: एक बात और मैं बोलना चाहूंगी सर आपके कार्यक्रम में, क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, काफी श्रोताओं के कॉल शामिल करते हैं, और साथ साथ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो और श्रोता है, जैसे कि एक श्रोता है वो 3 बार नाम बदल कर बात करते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि हमारी आकाशवाणी लखनऊ बहुत अच्छा हमारा चैनल है, सभी श्रोता जुड़ते हैं, सुनते हैं। तो क्योंकि अगर हम इस चैनल को ज्यादा वो नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, और बार बार नाम बदल के बात करेंगे, तो हमारे आकाशवाणी में भी थोड़ा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है।
1: ऐसा ना करें सर, आप भी इस बारे में आप भी ध्यान दें, और जो आर्टिस्ट आते हैं लखनऊ आकाशवाणी में वो भी थोड़ा ध्यान दें, जो श्रोता है वो नाम बदल बदल के बात ना करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम आकाशवाणी लखनऊ में बात करें, जुड़े, अपने विचार साझा करें,
0: बिल्कुल,
1: तो सभी को मौका मिलना
0: चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपकी बात ऐसे दोस्तों तक पहुँच गई होगी। बिल्कुल, हमारी भी रिक्वेस्ट है, हमारी भी इल्तिजा गुजारिश है कि ऐसा ना करें, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। पूनम जी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने के लिए। गाना कौन सा सुनवाना है आपको?
1: शुक्रिया सर, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो चाहती हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार तो आप आया करें।
0: चलिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। गाना कौन सा सुनवाना है
1: सर? मुझे गीत सुनना है, 4 फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, वो गीत सुनवा दीजिएगा। और ये गीत मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, साथ साथ मेरे दोस्त पिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, अनु पांडे जी हैं, और साथ साथ समा परवीन जी हैं, और इसके बाद भगवान सिंह परमार जी हैं, अविनाश जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, और राम बाबू शर्मा जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, और साथ साथ जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं, सभी को
0: बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जानी, तुम हो, हम हैं, और हम ठाकुर ऐसी सजा देते हैं कि जो हमारी हवेली में आते हैं तो सर नीचे होना चाहिए और आवाज धीमी होनी चाहिए।
0: कमाल कमाल करते हैं आप।
1: नमस्कार सर जी।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको। कौन साहब बोल रहे?
1: बुंदेलखंड की धरती, राम की तपोभूम, चित्रकूट धाम से मैं दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ सर जी को, और सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
0: वाह दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला है आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम के लिए। कैसे हैं आप घर में
1: सर जी? और ये पहला सौभाग्य है कि कंटिन्यू पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई और इस बार भी बात हुई और जो चाहत है वो पूरी हो गई।
0: ये ईश्वर का धन्यवाद है। और सुनाइए क्या हालचाल है?
1: बढ़िया है, मस्त है। स्नान करने जा रहे थे और इस समय जो है अंडरगारमेंट में टहल रहे हैं और स्नान करना है।
0: वाह वाह, चलिए अच्छा किया आपने वक्त निकाला है। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: गाना सुनना है मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये खिड़की खिड़की जो बंद रहती है दुश्मन है मेरी।
0: अच्छा
1: जी जी जी जी जी।
0: सुनवाया जाए फिर?
1: जी बिल्कुल। और इसमें दो तीन मेरे मित्र हैं, फूलचंद पाल जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, और हमारे जो देवी शंकर शुक्ला जी हैं फतेहपुर से, और विजय पांडे उर्दू के शायर है। आप भी उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू के शायर है सर, वो भी है, और जितने भी श्रोता है मांगीलाल चंदेल जी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: में जिला हरदोई से बोल रहा हूँ।
1: प्रणाम, कैसे हैं आप राम प्रसाद जी?
0: सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: दुआएं हैं आपकी, क्या करते हैं आप?
0: खेती करते हैं सर।
1: अच्छा, ठीक चल रही खेती बाड़ी, सब ठीक हो रही
0: जी?
1: धन्यवाद। मौसम कैसा है शहर का?
0: यहाँ धूप निकल आई है।
1: अच्छा,
0: बूंदाबांदी हो रही थी।
1: आज मुझे लग रहा चारों तरफ हल्का बूंदाबांदी
0: है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाना बताइए
0: सर। गाने के बोल हैं, सपनों में आऊंगा, जिन चुराऊंगा।
1: अच्छा,
0: उसको कसम से मैं अपना बनाऊंगा।
1: क्या बात
0: है। और एक बात और है।
1: हाँ जी, हाँ जी बताए।
0: जो पूनम जी ने बात कही थी,
1: हाँ जी,
0: वो नाम बदल के बोलता है।
1: हाँ जी,
0: तो हम भी ये बात सुनी है, वो नाम बदल देता है, लेकिन सचिन फुलखाबाद का है।
1: हाँ, ये थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कि नाम बदल के, हाँ नाम बदल के क्या अपना नाम हो तो बात बने।
0: हाँ,
1: शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार सर।
0: कौन साहब बोल रहे
1: हैं? मास्टर राधेश्याम बोल रहे, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। प्रेम राजेश्वरी को कासगंज से सप्रेम नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपका भी सप्रेम। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: ठीक है सर, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैथ का।
0: अच्छा भाई, गणित तो बड़ा है।
1: जी जी
0: हमको तो बहुत कठिन लगता है गणित।
1: अरे नहीं सर, कठिन नहीं है, जो चीज़ समझ में आया वो सरल है, नया वो कठिन नहीं
0: है। ये तो है, ये तो है, लेकिन हमने देखा ना कि ये सब्जेक्ट बड़ा बड़ा मुश्किल का है, बड़ा बड़ा स्टडी करनी होती है, बहुत बारीकी है इसमें।
1: हाँ वो तो है सर,
0: है ना। गणित लगाना बड़ा कठिन काम है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है सर, छुट्टी चल रही है अभी तो, जून की, जुलाई में खुलेगा स्कूल।
0: हाँ, जुलाई में खुलेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि आप तो राष्ट्र निर्माता है, भविष्य का निर्माण करते हैं, बहुत बड़ी बात है। गाना कौन सा सुनवाना है आज गुरु जी?
1: फिल्म का नाम है आंसू बने अंगारे, और गाने अच्छा। के बोले हैं, तुझे देख के खनखन खने पायल चांदी के।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।
1: ये सॉन्ग सर जो है आकाशवाणी की पूरी टीम और समस्त श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम आपको। लीजिए गाना सुनिए।

0: बहुत शुक्रिया आपका। बताएं भाई कैसे हैं?
1: ट्राई कर रहा था,
0: अच्छा
1: करते करते आखिर तक अपने ही उठा लिया। एकदम सुकून से, मतलब दिल भर गया।
0: हमें भी, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टेलीफोन का लगना, और ऊपर तो से अगर
1: दिल में ना जाने कैसे इतनी जगह बन गई तेरी एक मुस्कुराहट,
0: क्या कहने,
1: जीने की वजह बन गई।
0: वाह वाह, क्या कहने, वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब जी। भाई कैसे हैं, सब लोग ठीक हैं?
1: कार्यक्रम को दिल और जान से मैं चाहता हूँ, और फोन लगाने में कभी कभी क्या होता है, मतलब अनसक्सेसफुल जाता हूँ, लेकिन भगवान के दुआ से कभी कभी सक्सेस भी हो जाता
0: है ना। गाना बताइए भाई, तो कौन सा सुन रहे हैं?
1: प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता
0: जी, बताएं बताएं।
1: नाम है कर्तव्य।
0: अच्छा,
1: रखता था पहले भी दिल मेरा यूं ही,
0: क्या बात,
1: मगर इस आदा से मैं चलता ना था। कुमार सानू जी की आवाज में,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल बताएं।
1: पहले है प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और है बसंती लाल सूर्यवंशी जी है, अमर सिंह साहू जी, सतीश भाई, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, और अनुवर बिहारी भाई के लिए, और ढेर सारे तो अभी सुन रहे इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए, और खास करके आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: जी सर जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं श्री चंद्र निषाद ग्राम जलालपुर जिला बांदा से बोल रहा हूँ।
0: ओ क्या हालचाल है आपके?
1: हालचाल बढ़िया है सर जी।
0: अच्छा गाना कौन सा सुनाएं?
1: माई रे माई मुझे कुछ बोल रहा है कागा।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी सर जी।
0: लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: जय जय श्री माता जी। कैसे हैं आप?
1: मेरा नाम पूरण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: क्या हाल है पूरण जी?
1: बस सर बढ़िया है। और आप ना जब आ जाते हो और आपकी आवाज़ सुन के तो ये मान लो और भी सबके हाल अच्छे हो जाते हैं।
0: क्या क्या बात है,
1: आपकी आवाज़ बहुत दर्द भरी आवाज़ है सर आपकी।
0: ओए ओए।
1: जी सर हम सुनते रहे तो आपकी आवाज़ एकदम से क्या बताऊँ मैं आपको।
0: दर्द भरी आवाज़ है।
1: हाँ
0: चलिए आप समझ तो पाए कम से कम। बहुत शुक्रिया आपका
1: जी। सर आज गाने के बोले लो मान लिया तुमको ये प्यार नहीं तुमको और आपसे ज्यादा तो दो तीन दोस्तों को याद कर ले सकता।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद करें
1: जी। सबसे पहले तो आपकी दर्द भरी आवाज है तो आपके लिए।
0: ओहो।
1: और मेरा दोस्त राकेश है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है और राहुल है और जितने कॉलर लाइव सुन रहे तमाम श्रोता के लिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका भाई। पूरन जी लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: राजेश्वरी साहब, नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको। कौन साहब बोल रहे, कहाँ से फोन किया है?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से आपका दोस्त मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: ओहो, बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप भाई?
1: जी सर, मैं बढ़िया हूँ और आपके इंतजार करता था कि कब आए और कब आपसे बातचीत हो जाए, लेकिन काफी अंतराल आप ले लेते हैं सर। मुझे लगता है कि अगर हफ्ते में अगर दो बार आप आ जाएं तो ज्यादा खुशी हम लोग को हो जाएगी।
0: चलिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दुआ कबूल हो और मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात करने की।
1: जी सर, जी सर।
0: अच्छा लगा। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: गाना सुना दीजिए सर, फिल्म खराब रहा है आंदोलन और गीत की बोले कितने दिनों के बाद मिले हो।
0: अच्छा,
1: रहा है ये मौसम की इतने दिन तुम कहाँ रहे।
0: क्या बात है, इतने दिन तुम कहाँ रहे, वाह।
1: जी जी सर,
0: शुक्रिया बेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सर कुछ मेरे मित्र हैं जी, माघेला चंद्र जी, फूलचंद मनकारी से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए और मणिराम पाल हो गए और जितने हमारे अन्य श्रोता सुने सभी लोगों के लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: जहाँ हुस्न होता है वहाँ खुमार रहता है।
0: अच्छा,
1: खुशी वही होती है जहाँ प्यार रहता है। काबिले सद एहतराम जनाब सुरेंद्र राजेश्वरी साहब को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब।
0: वाह वाह विजय जी, आपका भी बहुत बहुत आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ आवरी का। हुजूर कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। कहा गया है जिसको खुदा हिदायत दे वो हिदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह करे तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला भी नहीं मिलेगा।
0: और हजरत कैसे हैं? घर पे सब खैरियत से हैं?
1: 8 जून को उर्दू प्रोग्राम मैंने सुना, आसिफ इकबाल साहब ने उर्दू शायर शकील बदायूनी और फिराक गोरखपुरी की जो गजलें नश्र की गई,
0: अच्छा,
1: वाकई काबिले तारीफ रही।
0: वाह वाह,
1: उनकी अंदाजे बयां, उनकी काबिलियत और उनके इल्मी सलाहियत को देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत ने खुद उन्हें अपने रहमतों से नवाजा है।
0: बेशक, इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं वो, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा आप तक प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। उनके काविशों और कोशिशों को हम भी सलाम करते हैं
1: जी। धन्यवाद आपको
0: जी। हुक्म कर फरमाएं कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा,
0: अजब सी चाहत
1: जी।
0: वाह, सुनवाएं फिर। बहुत शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने कीमती वक्त दिया इस प्रोग्राम को। बधाई हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इस प्रोग्राम के भागीदार बने। उससे ज़्यादा कहीं उनका शुक्रिया जिन्होंने कोशिश तो की लेकिन फ़ोन कॉल नहीं शामिल हो सका, नहीं लग पाया है या बात नहीं हो सकी है। ये भी बहुत बड़ी बात है, पूरे प्रोग्राम को सुनना इस उम्मीद में, इस आशा के साथ कि शायद अब की हमारी बात हो जाए। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर बात होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजेश्वरी को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: झलक रही है।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। चित्रपट संगीत।

लोफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंदोलन।

आंदोलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद किशोर कुमार की थी। गीत के बोल इंदीवर के थे और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की। आइए अब हसरत जयपुरी का लिखा हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है धरती।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें अनवर और सुलक्षणा पंडित की थी। बोल गुलजार ने लिखे थे और धुन बनाई थी खयाम ने। आइए अब जुदाई फिल्म के गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ें आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

जुदाई फिल्म में भी आप आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में पाकिज़ा फिल्म के गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ लता मंगेशकर की है, बोल कमाल अमरोही ने लिखे हैं और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

0: लता मंगेशकर के गाए पाकीज़ा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज के चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमों का।

अभी तो जी लें। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें आशा भोंसले और किशोर कुमार की थीं, गीतकार थे नक्श लाइलपुरी, संगीत सपन जगमोहन का था। आइए अब चरित्रहीन फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

नूरी फिल्म का गीत आपने सुना। आवाज लता मंगेशकर की थी, गीतकार थे नक्श लायलपुरी, धुन खयाम की थी। और अब स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गीत आपके लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

फकीरा फिल्म के गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में सौदागर फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

लता मंगेशकर की गाए सौदागर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार फिल्म नगमों का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को ही अब कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व

0: एंट्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोई हुई व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। अमित सिंह थानाध्यक्ष थाना कछौना हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार रामदीन जिसकी उम्र 40 वर्ष है, चेहरा लंबा, कद सामान्य है। जिस किसी को भी रामदीन के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। अमित सिंह थानाध्यक्ष थाना कछौना हरदोई। राकेश कुमार पुत्र श्री बहरुन लाल निवासी हरपालपुर हरदोई से हमें सूचित करते हैं कि सोनम जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कद 4 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। सोनम पिछले 4 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी सोनम के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। राकेश कुमार पुत्र श्री बहरुन लाल निवासी हरपालपुर जनपद हरदोई। विनोद सिंह पुत्र श्री कल्लू निवासी ग्राम कौढ़ा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई से हमें सूचित करते हैं कि काजल सिंह जिसकी उम्र 32 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है। काजल सिंह पिछले 11 मार्च 2025 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी काजल सिंह के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। विनोद सिंह पुत्र श्री कल्लू निवासी ग्राम कौढ़ा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

देखिए अब कार्यक्रम के बारे में कुछ सूचनाएं। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 11:10 से। आज का विषय है अष्टलक्ष्मी। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे ज्योतित्य सिंधा, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। समय 11:10। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष श्रृंखला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। विज्ञान जगत कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिएगा विज्ञान समाचार और इसके अलावा एक भेंटवार्ता जिसका विषय है जितना छोटा कण उतना बड़ा असर, नैनो टेक्नोलॉजी की वरदान और नैनो टॉक्सिकोलॉजी के अलर्ट। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आलोक पांडे, भेंट करता है प्रवीण कुमार। समय याद रखिएगा 7:31। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सरकर्दा स्टार्टअप हब में शामिल है और उसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गांवों के नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने खेलों में नौजवानों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैनुल अक्वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने नोट किया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे इकदामात ने इख्तराई और कारोबारी शख्सियत को फरोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए हुकूमत नौजवानों की क्यादत में तरक्की की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे मुल्क के नौजवानों के एतमाद में इजाफा हुआ है और वह अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रा के रास्ते के साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अकीदतमंदों के महफूज और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़ब है। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और जदीद निगरानी के निजाम जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा से वाबस्ता तमाम मकामी लोगों और जानवरों को रजिस्टर्ड किया जाए और QR कोड के साथ शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। वाज़ह रहे कि श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 39 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से कबल उन्होंने एक जिला एक प्रोजेक्ट के तहत लगाई गई नुमाइश का भी जायजा लिया। दरियसना वजीर आला आज और कल गोरखपुर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। साथ ही बड़हलगंज और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद प्रोग्रामों में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर बनारस में मुनक्किद अवामी बहबूदी कैंप और बहबूदी स्कीमों के फैजियाब अफराद को मंजूरी लेटर तकसीम किए। इस दौरान प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि PM स्वनिधि स्कीम में बनारस के 60,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक कर्ज की पहली किस्त, 26,800 वेंडर्स को दूसरी किस्त और 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी किस्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तब्दील होते हिन्दुस्तान में स्कीमें गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों को मानवन है। उन्होंने कहा,
1: मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरौनी की योजना प्रारंभ की और घरौनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और ये सर्वी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध करवाए मोदी जी ने। 3 करोड़ लखपति दीदी, 10 करोड़ महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी अभिनंदन कर रही है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में अहम तब्दीलियां देखी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका

0: विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नजर सानी शुदा औकात 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। नजर सानी शुदा इम्तिहान की मुद्दत में लाजमी इम्तिहान की रस्मी कार्रवाइयों के लिए दरकार वक्त शामिल है। और जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ समेत कर्बोजवार के अजला में तेज हवाओं और कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे अवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है और जायद की फसलों को फायदा हासिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का ख्याल जाहिर किया है। दरियासना, उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:15 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी, वैसे तो गर्मी के मौसम चल रहा है, मुला आज भिनसार से थोड़ा थोड़ा बदरी भी छाई है और मौसम भी कुछ ठीक है। नहीं तो सूरज देवता आपन तेवर दिखावे में कोनो कमी नहीं छोड़त है। और ये जो मिला जुला मौसम है ना, कि कबो चटक घाम तो कबो बदरी, यही के प्रभाव भी हम सबके स्वास्थ्य पर पड़त है। बाहर तो जो उन्हें थोड़ी राहत है, मुला जब घर के भीतरे रहो तो उमस के मारे खूब गर्मात है। तो ऐसन मौसम में श्रोता पंच हमार भोजन ऐस होए जो उनकी सुपाच्य होए, मने कम तेल मसाला वाला भोजन करें, साथ में हरा सब्जी मने लौकी तरोई कुंदरू परवर इन सब के सेवन करें, और रसदार मौसमी फलन के सेवन के साथ ऐसन पेय पदार्थन का भी लेत रहें जो उन शरीर का शीतलता प्रदान करे, साथ में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना डारे। तो बेल के शरबत, आम के पना, नारियल पानी, नींबू, शिकंजी, सौंफ के शरबत, लस्सी, माठा, गुड़ दही के शरबत, इन सब के भी जो उन्हें पियत रहें जो उन शरीर का ठंडक दई, साथ में शरीर में पानी के

0: मैं डर्मा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 13 जून को हम इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ एल्बिनिज्म होता क्या है। एल्बिनिज्म एक प्रकार का अनुवांशिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो पर्सन होते हैं जिनको हम एल्बिनो कहते हैं, जो इससे अफेक्टेड होते हैं, जो ग्रसित होते हैं, उनको हम एल्बिनोस कहते हैं। उनमें मेलानिन जो एक पिगमेंट है इनमें नहीं बनता है या फिर बहुत कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण इनकी त्वचा का रंग सफेद या हल्के रंग का होता है, बालों का रंग हल्का होता है या सफेद होता है, या उनकी आंखें काली ना होके नीली होंगी, ग्रे होंगी या फिर गुलाबी लाल रंग की होंगी, तो ऐसे लोगों को हम एल्बिनोज कहते हैं। तो ये 2024 में UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को प्रपोज किया था कि हम हर साल 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इस साल की जो थीम है हमारी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे का, प्राउडली इन माय स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स, गर्व से अपनी त्वचा में सभी स्किन टोन का उत्सव, यह एक बेहद शक्तिशाली वैश्विक आंदोलन और विचारधारा है। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो त्वचा के आधार पर होने वाले भेदभाव और हीन भावना को मिटाकर हर रंग रूप को स्वीकार करना है। एल्बिनिज्म जो है ये, जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर में एक पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन नाम का, जो होता है हमारी त्वचा को, आंखों को, बालों को कलर प्रदान करता है। इसके ना होने से या फिर कम मात्रा में बनने से जो त्वचा है हमारी सफेद या हल्के रंग की होगी, बाल हमारे हल्के रंग के होंगे और आंखों का कलर और आंखों के जो पलके होती है उनका कलर हल्के रंग का होगा, ग्रे होगा, नीला होगा या फिर गुलाबी लाल रंग का होगा। तो ये होता कैसे है, ये एक अनुवांशिक डिसऑर्डर है जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है, माँ बाप के से अपने बच्चों में आती है ये, और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। जो एल्बिनिज्म कंडीशन है ये एक जेनेटिक कंडीशन है, अनुवांशिक कंडीशन है, तो ये पैदाइशी इसमें लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। पैदाइशी ही बच्चे में पिगमेंट नहीं बनता है तो उसकी जो त्वचा का कलर होगा वो सफेद होगा और आंखों का भी कलर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हल्के कलर का होगा पिगमेंट ना होने के कारण। और ये बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, त्वचा में प्रोटेक्टिव पिगमेंट ना होने के कारण जो मेलानिन है वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमारी त्वचा को जो यूवी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे, तो उनमें जो बाहर निकलते ही जो सनलाइट है उसको ज्यादा सहन नहीं कर पाते या आंखों की जो दृष्टि होती है वो कमजोर होने लगती है, ये कुछ कारण है। और देख के ही आप पता कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो एल्बिनिज्म है उसको या एल्बिनो है वो व्यक्ति, क्योंकि उसका जो स्किन टोन होगा, स्किन कलर होगा पूरा सफेद होगा, सफेद बाल होंगे और आंखों का कलर भी अलग होगा। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उनकी स्किन में प्रोटेक्शन नहीं होता है मेलानिन के कारण, तो उनको हम सनस्क्रीन लगाने के लिए बोलते हैं पूरे शरीर में, और पूरे बांह के कपड़े पहनना, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, और यूवी रेज से प्रोटेक्शन वाले जो सनग्लासेस आते हैं, चश्मे आते हैं, उसको पहनना ताकि उनकी आंखें बच सके। बाकी स्किन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के ये स्किन कैंसर्स भी कॉज कर सकते हैं। तो ये जो एल्बिनोस के लिए हमारे भारत सरकार ने 2016 में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट प्रपोज किया था, जिसमें कि उनके जितने भी राइट्स होते हैं उनको दर्शाया गया है। जाते जाते मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो एल्बिनिज्म है या एल्बिनोस जो व्यक्ति होते हैं जिनको हम एल्बिनोस कहते हैं, उनको जो ये कंडीशन है वो कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो उनको ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनमें कोई बुद्धिहीनता या ऐसी कुछ कमी नहीं है, उनमें भी सेम IQ होता है, उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर जो आपके परिवार में या आपके कोई दोस्त कलीग्स वगैरह हैं उनसे भी समान तरीके से व्यवहार करें और उनको समान अधिकार दिलाने की कोशिश करें, चेष्टा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ तो श्रोता पंचो, अब हम सब सुना विश्व अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर डॉक्टर दीपिका रावत जी द्वारा दी गई जानकारी का, तो अपनी उपयोगी जानकारी दे खातिर हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद दे थे।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और श्रोता पंचो, आज है महीना के दूसरा शनिवार और आज के दिन हम लेके आए थे घर आंगन कार्यक्रम में शब्द एक गीत अनेक। जी माँ, आज के शब्द है फूल बहार। तो श्रोता पंचो, अब बढ़ चला जाए आप सब द्वारा पठाई पाती और ईमेल की ओरिया और जाना जाए कि आप सब जो ने फूल और बहार शब्द से कौन कौन से फिल्मी गीतन का सुने के फरमाइश करो है। तो शुरुआत की जाए पाती पढ़े से, जो उनकी आई है ग्राम रुदौली जिला अयोध्या से, जी का पठवे वाली हैं माला, दीपा, सुमन, लक्ष्मी और रानी। और बात ईमेल के करी तो ये आवा है ग्राम व पोस्ट ललहौआ जिला खीरी से, जी का पठवे वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम, ऋचा, शिखा, गुड़िया और बबलू। तो इन सब की फरमाइश पे चलो सुना जाए फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से ये गीत।

और श्रोता पंचो, अब बारी है कि अगले गीत के जी के सुने के फरमाइश कहाँ कहाँ से आई है ये भी तो जाना जाए, और ये के खातिर पाती पढ़ लीन जाए जो उनकी आवा है ग्राम कुटवा जिला अमेठी से। जी का पठवे वाले हैं अवधेश श्रीवास्तव, मुकुंदे, पुष्पलता, अंश, सूर्यांश, दीपाली और दीपिका। और बात ईमेल के करी तो ई आवा है रालपुर रायबरेली से। जी का पठवे वाले हैं तुलसी राम, देवता दीन, रोहित, गुड्डू, अनन्या और गुंजन। तो इन सब के फरमाइश पे चलो सुन जाए फिल्म आरजू के ही गीत।

0: गया।
1: और श्रोता पंचो, अब जाना जाए कि अगला फरमाइश के गीत कौन सा होए वाला है और वह कौन सी फिल्म है, तो इसके खातिर पढ़ा जाए पाती जो उनकी आई है मोहल्ला सबदलबाग लाल कुआं लखनऊ से, जी का पठवे वाले हैं विमला श्रीवास्तव, अभिषेक, सर्वेश, अक्षिता, गन्नू, पुलकित और हर्षित। और ईमेल आवा है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से, जी का पठवे वाले हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, रामचरण और रामसागर। और ई सज्जन फरमाइश करें फिल्म बंडलबाज के गीत सुने का, तो चलो सुना जाए।

और श्रोता पंचो अब बढ़ चला जाए अगले फरमाइशी फिल्मी गीत के ओरिया जी का सुने खातिर ईमेल पठवा गवा है सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से जी का पठ

श्रोता पंचो, अब बारी है अगले गीत के। जी का सुने खातिर ईमेल आवा है बैसवारा लालगंज रायबरेली से। जी का पठे वाले हैं शिवा गुप्ता, गुड्डू आकांक्षा, राजेश सिंह चौहान। और अगला ईमेल आवा है नेपा नगर से। जी का पठे वाले हैं प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे। और खंडवा से ईमेल पठे वाली हैं श्यामाबाई।

और यह गीत के साथ अब कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है, तो ई मनोकामना के साथ कि हमारे सभी श्रोता पंच सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेम भरी पाती और ईमेल के माध्यम से घर आंगन कार्यक्रम के शोभा बढ़ावत रहें। यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

मनहर और अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी हीरो। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। फौजी भाइयों, अगला गीत वो सात दिन से। आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की थीं। गीतकार थे एसएस बिहारी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आई फौजी भाइयों, अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत एक दूजे के लिए फिल्म से।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत फजी भाइयों आपने सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की थी। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। जय हिंद।

वीडियो वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 2:15 हुए, अब दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा

0: कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।

0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान, आज इस कार्यक्रम में सफलता की कहानी के अंतर्गत सब्जी उत्पादक श्री राम प्रवेश मौर्य के साथ की गई एक भेंटवार्ता सुनिए। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब्जी उत्पादन से जुड़े बहराइच जनपद के मेहपुरवा ब्लॉक के नैनिहा 54 नंबर गांव के राम प्रवेश मौर्य भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और सब्जी उत्पादन से जुड़ाव हुआ कब से?
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, मेरी पढ़ाई सन 1989 में इंटर बायोलॉजी से मैं किया था। उसके बाद कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण पढ़ाई छूट गई, जिससे मैं फिर खेती में आया। बच्चों की परवरिश के लिए मैं बाहर नहीं गया, फिर किसानी ही चुना और मैं सब्जी खेती चुना, क्योंकि सब्जी में पैसे डेली आते हैं और पारंपरिक खेती से धान गेहूँ गन्ना में तो पैसे उतना आते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सब्जी खेती चुना, जिसमें डेली हमारी मंडियों में सब्जी जाती है और डेली पैसे आते हैं, जिससे बच्चों को मैं पढ़ाई में सहायक बन सकता हूँ।
2: यानी लगभग 37 साल हो गया पढ़ाई से सीधे खेती की कढ़ाई में आते।
3: जी जी,
2: तो ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: हमारे पास डॉक्टर साहब केवल 2.5 एकड़ जमीन है, जिसमें मैं धान गेहूं गन्ना खाने को लगाता हूं। 1 एकड़ में सब्जी खेती करता हूं, जिसे हमारा सालों साल पैसा निकलता रहता है मंडी से।
2: यानी 1 एकड़ जो सब्जी की खेती है वो पूरे साल?
3: जी, सालों साल मौसम के अनुसार मैं सब्जी खेती लगाता हूं, जिसमें गोभी है, ब्रोकली है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, लोबिया है। इसमें अभी एक नई वैरायटी लोबिया का मैं किसानों को बताऊंगा, जो बहुत ही लाभप्रद है, जो एक बार लगाएंगे 8 महीने तक लगातार फल देगी।
2: कौन सी वैरायटी है?
3: XXL नाम से आई है, जो पर डे में लोबिया तोड़ता हूँ, 1.5-2 फीट की लंबी होती है, पर डे तोड़िए मंडी में ले जाइए, बढ़िया पैसा।
2: ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके 1 एकड़ खेत में हैं?
3: इस समय हमारे पास बैंगन है, मिर्च है और ये लोबिया जो नई वैरायटी में लगाया हूँ, ये तो बहुत ही किसानों के लिए फायदेमंद है। लोबिया तो टूटती है, एक दिन गैप देखे देखे ये लोबिया जो डेली टूटती है।
2: और रकबा कितना कितना है?
3: रकबा लगभग 1 बीघे 10-20 बीघे 5-20 बीघे में, ऐसे में करके पूरी मतलब खेती के मॉडल बना करता हूँ कि अगर एक सब्जी सस्ता बिके, 2-4 सब्जी हमारा महंगा बिके, मंडी में बराबर रेट मिलता रहता है। इसलिए कभी किसान भाई को एक सब्जी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंडी का उतार चढ़ाव मिलता रहता है।
2: तो आगे क्या तैयारी है सब्जी उत्पादन में?
3: आगे तैयारी, अभी बैंगन के हमारे पास लगभग 10 प्रजाति तैयार हो रहे हैं, जो भी 1 हफ्ते में लगा दिए जाएंगे। अभी एक बैंगन हमारा निकल रहा है और मंडियों में बढ़िया रेट से जा रहा है। अभी लोबिया निकल रही है हमारी, वो भी बढ़िया पैसा दे रही है। तो जो किसान एक ही खेती करता है तो उसमें नुकसान होता है, मंडी का रेट नहीं मिला तो नुकसान खा जाता है, इसीलिए उसको रकबा बांट दिया जाता है 10-20 बीघे 1 बीघे 5-20 बीघे, और जितना एरिया उसी हिसाब से किया जाता है और उसमें बराबर किसानों को अच्छा रेट मिलता रहता है।
2: जैसे बरसात में कौन कौन सी सब्जियां अभी आप लगाएंगे? कुछ मचान पर भी करते हैं?
3: जी, मचान में इसमें लोबिया लगेगी, करेला लगेगी और ये लौकी लगेगी और तरोई लगेगी, घिया तरोई लगेगी, ये सब बेल वाली सब्जियां लगेंगी। और जमीन में लगाएंगे तो भिंडी लगाएंगे, आप बैंगन लगाएंगे।
2: तो कब तक आप बुआई कर देंगे? क्या कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध तैयार करके रोपाई करेंगे?
3: पौध हमारी तैयार है, कुछ पौध तैयार हो रहे हैं, अभी 1 हफ्ते बाद हमारा बैंगन की रोपाई हो जाएगी और अभी लौकी कद्दू करेले के सब बेल पौधे तैयार हो रहे हैं, वो भी 10 दिन बाद लग जाएंगे सब।
2: उन्नत प्रजातियां चुनते होंगे आप?
3: जी, मेन तो यही है, उन्नत प्रजाति।

0: दिया। अगर किसान को उन्नत प्रजाति नहीं मिली तो फिर उत्पादन घट जाता है, फिर मंडी में रेट नहीं मिलता है। इसलिए प्रजाति का चुनना बहुत ही जरूरी है किसान भाइयों के लिए।
1: तो सब्जी उत्पादन में क्या बारीकी आप करते हैं कि और लोगों से आप अलग जाने जाते हैं?
0: पहले कि मैं सर्च करता हूँ और रेडियो के माध्यम से मैं रेडियो सुनता हूँ, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे सफलता कहानी जो किसान बताते हैं मैं नोट करता हूँ, एक नोटबुक बनाया हुआ हूँ और किसानों का नंबर से मैं बात करता हूँ। इससे हमको जब अनुभव मिलता रहता है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक को संपर्क में रहता हूँ, इससे अच्छे वैरायटी को पता चलता रहता है।
1: तो पूरे साल में आप सब्जी उत्पादन करते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है सब्जी उत्पादन 1 एकड़ में?
0: 1 एकड़ में हमारा लगभग 4 से 5 लाख रुपया हो जाता है
1: बचत?
0: जी, बचत हमारे खर्चा चलता रहता है, बराबर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चलती रहती है उससे।
1: और जो 1.5 एकड़ जिसमें मिठास की
0: हाँ,
1: फसल
0: धान
1: है
0: गेहूं गन्ना है तो अपना खाने भर को लगा देते हैं, अपना काम चलता रहता है घर का, सब जो पैसा मान नगद मिलता रहता है
1: आप नर्सरी व्यवसाय से भी जुड़े हैं?
0: जी। नर्सरी में नानपारा हाईटेक नर्सरी, कृषि विज्ञान केंद्र में हाईटेक नर्सरी खुली है। मैं पौधे उगा करके तैयार करके किसानों को देता हूँ, जिससे किसान से लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें ऑर्डर भी मिल रहे हैं, पौधे का ऑर्डर किसान दे रहे हैं और तैयार करके हमको देना है।
1: इस समय आपकी जो कृषि विज्ञान केंद्र की हाईटेक नर्सरी है जो आप द्वारा संचालित है, उसमें कौन कौन सी सब्जियों की पौध तैयार हो गई है?
0: अभी इस समय हमारे पास मिर्च है, बैंगन है, अभी शिमला तैयार करने जा रहे हैं, पकौड़ा मिर्चा, अचारी मिर्च, पतली मिर्च और गोभी का हमको लगभग 1 लाख पौधे तैयार करके देना है, ऑर्डर है। इसी तरह से ऑर्डर मिलते जाते हैं, कुछ अपने पास से भी बीज में डाल के तैयार करके बेचता हूँ अपने रेट से।
1: चूंकि आप सब्जियों की अगेती नर्सरी तैयार करने के माहिर हैं, तो और किसान भाई बहन जो दूर दूर के हैं, जो अपने खेत पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मंत्र देंगे?
0: हाँ, वो अपने खेत पर ऐसा तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आप बरसात में तेज बारिश होती है तो बीज गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए बेड बना करके 6 इंच ऊंचा ही उसको लगाया जाता है, ऊपर से ग्रीन नेट लगा दिया जाता है कि बरसात के पानी से नुकसान ना हो, और घर पे भी तैयार करके लगा सकते हैं,
1: और पोर्ट्रे में भी?
0: पोट्रे में भी लगा सकते हैं, कोकोपीट है, बर्मिकोलाइट है, ह्यूमिक है, इसको मिला करके उसमें ट्रे में जमा करके लगा सकते हैं।
1: जो अब तक का आपका सब्जी उत्पादन का तजुर्बा है, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर रोज की आमदनी चाहते हैं तो जो भी रकबा है उसमें कुछ न कुछ सब्जी उत्पादन, और वो भी अगेती या पिछेती, जरूर करिए?
0: जी डॉक्टर साहब, अभी इसमें तो बहुत सही टाइम चल रहा है, आप बैंगन लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, शिमला लगा दीजिए, पकौड़ा मिर्च लगाइए और ये गोभी लगाइए। गोभी इसमें जो लगेगी सीधे 70-80 रुपये किलो के रेट में जाती है, वो भी बिना पत्ती तोड़े जाती है,
1: अगेती फूल गोभी।
0: अगेती फूल गोभी। इसमें जो भी गोभी इसमें लगेगी वो 70-80 रुपये किलो के रेट में जाएगी। किसान 1 बीघे से लाखों रुपये कमाता है इस गोभी से, और बैंगन भी लगाएगा उसका भी बढ़िया रेट मिलेगा। मिर्चा जो लगाएगा शिमला वो 80 रुपये किलो के रेट से जाएगा, पकौड़ा मिर्चा वो भी 80 रुपये किलो के रेट से जाता है।
1: लेकिन पैदा करना भी तो कठिन है, बारीकी भी तो
0: जी,
1: करनी पड़े,
0: बारीकी एक बेड पे ही लगा के मल्चिंग करके लगाया जाता है कि बरसात में मिट्टी कट जाती है।
1: और जल निकास का अच्छा व्यवहार।
0: हाँ, जल निकास तो बहुत जरूरी है, खेत को ऊंचा होना जरूरी है, जल निकास जरूरी है, क्योंकि पानी भरेगा तो पौधे मर जाएंगे।
1: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: जी, मैं तो सब्जी की ही बिक्री करके, मैं बच्चों का हमारा एक भीमराव अंबेडकर PhD कर रहा है, सरकार उसको 4,000 दे रही है, तो मैं बच्चों को, 4 बच्चे हमारे, मैं चारों ग्रेजुएशन करा दिया हूँ और इस सब्जी की बदौलत मैं करा हूँ, मेरे पास कोई एक पैसे बाहर की आमदनी नहीं है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर हमारा 9651-26-41-30, 9651-26-41-30, 9651-26-41-30।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: मैं तो किसान जो दूर भागते हैं, मैं तो बड़ी खुशी होती है, मैं रेडियो के माध्यम से मैं बहुत आगे बढ़ा, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से हमको जानकारी मिलती है, मैं रेडियो खेत में ही रख के मैं काम करता रहता हूँ, रेडियो सुनता रहता हूँ और पेन डायरी भी रखे रहता हूँ कि कहीं कोई नंबर बोले मैं तो नोट कर लेता हूँ। एक मैं 10 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैं पूरा वैज्ञानिकों का नंबर है, इसमें किसानों का नंबर है, और इसीलिए मैं आगे बढ़ता गया और अच्छे अच्छे सब्जियों के बारे में जानकारी, अभी किसान मुझसे जुड़ते हैं तो मैं बताता हूँ कि आप खेती करिए, सब्जी में तो उतना पैसा है कि बस अगेती पछेती का ध्यान रखना है, बीच में थोड़ा कम करिए, क्योंकि रेट तो अगेती में था या पछेती मिलता है, इसमें आप लोग सही टाइम में लगाइए,

0: मिर्च, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी है। आप लोग पैसे कमाइए और नौकरी से अच्छा पैसा है अपना ये सब्जी में, अगर समय से करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो आप लोग खुशहाल रहेंगे, बच्चों के पढ़ा लिखा के कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, भविष्य के लिए।
1: राम प्रवेश मौर्य भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आप इंटर बायोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद 89 में खेती से जुड़े, 2.5 एकड़ आपके पास खेती की जमीन है और 1 एकड़ में सब्जी उत्पादन पूरे साल करके आगेती और पिछेती,
0: जी।

0: और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सफलता की कहानी के क्रम में आप सुन रहे थे सब्जी उत्पादक श्री राम प्रवेश मौर्य के साथ की गई ये भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। सावित्री पत्नी श्री सुरेंद्र पाल निवासी शीशीताली जनपद हरदोई से हमें सूचित करती हैं कि विनय जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कद करीब 5 फीट, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है। विनय पिछले 21 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को विनय के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। सावित्री पत्नी श्री सुरेंद्र पाल निवासी शीशीताली जनपद हरदोई। श्रीमती रीता पत्नी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह निवासी अटरा मझरा दौलतपुर जनपद हरदोई से हमें सूचित करती हैं कि राहुल जिसकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। राहुल पिछले 23 मार्च 2024 से कहीं लापता है। जिस किसी को राहुल के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्रीमती रीता पत्नी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह निवासी अटरा मझरा दौलतपुर जनपद हरदोई। कमाल खां पुत्र तैयब खां निवासी रानी सिर जनपद श्रावस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार सहरीन जिसकी उम्र 16 वर्ष है, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। सहरीन पिछले 19 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को सहरीन के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। कमाल खां पुत्र तैयब खां निवासी रानीसीर जनपद श्रावस्ती। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं अब समाप्त हुई।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। दिन के 2:45 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अवधी युगल लोक

इस समय आप सुन रहे हैं अवधि युगल लोकगीत। कलाकार हैं अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम। आइए अंत में सुनते हैं एक नकटा।

लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थीं अंजलि खन्ना और पल्लवी निगम। आपके साथ नाल पर संगति की अवध बिहारी वर्मा ने, हारमोनियम पर थे चंद्रेश पांडे, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइट रिदम पर थे बालकृष्ण शर्मा। इसके साथ ही लोक माधुरी का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकेंगे आज रात 11:10 पर। आज का विषय है अष्टलक्ष्मी। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। रात 11:10 पर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं हमारी

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए, खासकर विज्ञान

0: प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीरवायु हेमाराम कुमावत और अग्नि वीरवायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 6वें ओवर में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। सबसे पहले जानकारी इस सभा के कार्यक्रमों की। आज रात्रि 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में मोहित कुमार की वार्ता होगी, विकसित भारत और गांव में हरित विकास। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन। इस विषय में डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील।

कुमार राय। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम विज्ञान जगत। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में प्रवीण, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर प्रवीण कुमार से सुनिएगा हास्य काव्य पाठ। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें सुनिएगा, कलाकार होंगे गुलाम कासिम। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात्रि 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनिएगा कल शाम 6:30 पर। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। सवेरे 9:15 पर कार्यक्रम सामयिक चर्चा। सवेरे 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, खरीफ में भूमि और बीज शोधन। इस विषय में डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आराधना कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल सवेरे 6:15 पर। सवेरे 6:43 पर श्रीरामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर की जानकारी का विषय होगा जीवन की डोर, आपके रक्त की एक बूंद, विश्व रक्तदाता दिवस पर। समय रहेगा सवेरे 7:00। सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा विश्व रक्तदाता दिवस। सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी। इसमें कलाकार होंगी पूजा तोमर, इनसे सुनिएगा अवधि लोकगीत। सवेरे 10:00 कार्यक्रम आपकी पसंद के लोकगीत। दिन में 12:00 बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल मंच। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें नीलम राकेश की लिखी झलकी सुनिएगा मच्छर का चक्कर। निर्देशन अतिश कुमार श्रीवास्तव का होगा। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में सुनिएगा चार दीवारी का सन्नाटा, दुर्व्यवहार के वो जख्म जो दिखाई नहीं देते। इस विषय में डॉक्टर अमित सक्सेना से भेंट करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जवानों के लिए यह कार्यक्रम होगा दिन में 1:50 पर। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में यतीन्द्र कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग। संस्कृत कार्यक्रम सुनेगा दिन में 3:15 पर। ये थी जानकारी हमारी इस सभा की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त मांडवी और
1: मैं हूँ अभिषेक। अगले कुछ समय तक हम दोनों आपके साथ रहेंगे, कुछ दिलचस्प बातों के साथ, कुछ खूबसूरत गीतों के साथ और उन अनुभवों के साथ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी रंगीन बना देते हैं।
0: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आसपास की छोटी छोटी व्यस्तताओं को हम भूल जाते हैं ना, और छोटी छोटी जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनको महसूस करना भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर कभी कुछ पल रुककर देखें तो पाएंगे कि हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। हर सुबह की अपनी जो एक होती नहीं ताजगी, उसमें वो एक ताजगी होती है। हर शाम का अपना सुकून होता है और हर मौसम का अपना एक अलग रंग होता है।
1: बिल्कुल।

0: मांडवी, मौसम जैसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत संदेशवाहक है। कभी हल्की हवा चलती है तो मन में अपने आप तरोताजा हो जाता है, कभी आसमान में तैरते बादल कल्पनाओं को नई उड़ान दे देते हैं, तो कभी सूरज की किरणें हमें नई ऊर्जा और नए उत्साह से भर देती हैं।
1: और इन दिनों मौसम भी कुछ ऐसा ही है, सुबह और शाम में ठंडक है और दिन की व्यस्तता के बीच भी कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें याद दिला रही है कि जरा ठहरिए, आसपास देखिए। जीवन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते के इन छोटे छोटे खूबसूरत पड़ावों को महसूस करने का भी नाम है।
0: और शायद यही कारण है कि जब हम किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ दोस्तों से बातें करते हैं या फिर रेडियो पर अपने पसंद का कोई गीत सुनते हैं, तो मन को अलग ही सुकून मिलता है।
1: और आज के दौर में अभिषेक, डिजिटल दुनिया का जो एक
0: कनेक्शन है, लोगों से लगाव है,
1: बिल्कुल, और आज के दौर जो है वो डिजिटल दुनिया का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है, हर पल नोटिफिकेशन है, हर तरफ अपडेट्स हैं, दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है। लेकिन इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ कर रखती हैं,
0: और वो है हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारा लोक संगीत।
1: बिल्कुल,
0: समय बदलता है, तकनीक बदलती है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन लोक धुनों की मिठास कभी पुरानी नहीं होती।
1: क्योंकि लोकगीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते, वो पीढ़ियों का अनुभव होते हैं। उसमें खेतों की हरियाली होती है, गांव की जो गलियों की रौनक होती ना वो होती है, और रिश्तों की गर्माहट होती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है।
0: और मांडवी, लोकगीत हमें बताते कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, वे हमारी जड़ों की याद दिलाते हैं और ये एहसास कराते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी पहचान को संजो कर रखना कितना जरूरी है।
1: और जब बात अवध की हो तो फिर संगीत और संस्कृति की मिठास अपने आप बढ़ जाती है। अवध की लोक परंपरा, उसकी बोली, उसके गीत और उसकी संवेदनाएं सीधे दिल तक पहुंचती
0: हैं। सच कहा मांडवी तुमने, अपने अवध के लोक गीतों की जीवन की सहजता, अपनापन और एक ऐसी आत्मीयता है जो सुनने वाले को अपनेपन से भर देती है।
1: तो अभिषेक, क्यों ना आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत की जाए ऐसे ही अवधी लोकगीत के साथ,
0: जिसकी धुनें हमारी मिट्टी की महक, हमारी संस्कृति की झलक और लोक जीवन की मधुरता है।
1: बिल्कुल,
0: और इस लोकगीत को अपनी मधुर प्रभावशाली आवाज से सजाया है लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी ने, जिनकी गायकी ने लोक संगीत को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है।
1: बिल्कुल, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुंदर अवधी लोकगीत के साथ।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अभिषेक, तुम कह रहे थे अभी कि तुम्हारा गला खराब है और आजकल जो मौसम बदल रहा है उसमें कुछ लोगों को जुकाम बुखार भी हो रहा है और तुम्हारा गला वैसे तो ठीक लग रहा है, तुम बोल रहे हो।
2: बिल्कुल मांडवी, गला तो ठीक है, ठीक ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि
1: बिल्कुल
2: आजकल ऐसा मौसम हो रहा है, बिगड़ रहा है। एक तरीके से बिगड़ भी रहा है, एक तरीके से अच्छा भी हो रहा है, पर इससे स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं हो जा रही
1: है। स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है लेकिन इस मौसम के बदलने के साथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी बीमारियां हो जा रही है, जैसे तुमने कहा कि गला खराब हो जा
1: रहा है। मेरा भी खराब है,
2: तुम्हारा भी खराब है। तो दोस्तों देखो, आजकल ऐसा मौसम चेंज हो रहा है, हालांकि हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, पर घूमने के दौरान साथ साथ हमारे साथ क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है। कभी जुकाम हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, तो कभी बस यूं ही ऐसा लगता है कि बस कुछ करने का मन नहीं है, शरीर में कुछ अलग सी थकावट हो रही है।
1: हाँ, और अभिषेक ऐसा भी होता है, और सिर्फ ये हमारे साथ दिक्कत नहीं, हमारे दोस्त भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, है ना। और दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं कि हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जिसका विषय है गर्मी में स्वास्थ्य सुरक्षा। भेंट करता है नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी, वार्ताकार हैं डॉक्टर कुलदीप चंद रस्तोगी। तो आइए ये सुनते हैं भेंट वार्ता।
3: कहा जाता है मौसम के अनुसार हमारा खान पान हो तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इसीलिए गर्मी जाड़ा बरसात तीन जो मुख्य मौसम हैं हमारे यहाँ, उसी के अनुरूप हमारा खान पान होता है और हम लोग इसे बहुत पहले से परंपरागत रूप से जानते समझते रहे हैं। फिर भी आवश्यकता होती है क्योंकि तमाम तरह के पर्यावरण प्रदूषण हो या किसी तरह का प्रदूषण हो, वह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है मौसम के अनुरूप ही। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बल्कि बरसात का जो मौसम होता है वह भी गर्मी में ही गिन लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो ऐसे में क्या कुछ गर्मी के मौसम में हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमारे स्टूडियो में डॉक्टर कुलदीप चंद्र रस्तोगी जी हैं, जो कि टुड़ियागंज आयुर्वेदिक जो कॉलेज है उसमें आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका।
4: धन्यवाद।
3: पहली बात के तौर पर, गर्मी का बहुत दिक्कत वाला होता है, लोग समझते ही हैं, एक डॉक्टर होने की हैसियत से क्या समझते हैं स्वास्थ्य को लेकर?
4: सामान्य रूप से भी जानते हैं कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं बताई गई हैं
3: जी,
4: है ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, साल भर में 6 ऋतुएं होती हैं।
3: आप डॉक्टर हैं तो उसको और माइन्यूट तो ऑब्जर्व करेंगे।
4: जी जी जी जी, तो उसको तो फिर 6 और जो ऋतुएं हैं उनमें दो दो महीनों को रखा गया है हमारे यहाँ। तो माघ, फागुन, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, सावन, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, अगहन और पोष, पूरे 12 महीने जो है, तो उनमें से प्रत्येक दो दो महीने लेके एक एक ऋतुएं बनाई गई हैं। चूँकि होली के बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है, है ना, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत तभी से हो जाती है, हम लोग कहते हैं होली के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सूर्य की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है पूरे वातावरण से और शरीर से विभिन्न

0: जीव जंतुओं सबके रस धातु का अवशोषण होने लगता है। यह सीधे सीधे अगर हम कहें साधारण तो जलीयांश जो जलीय अंश है उसका अवशोषण होने लगता है
1: जी, मतलब तो, शरीर में हमारे जो जल है
0: हाँ वो कम होने लगता है।
1: होने लगता है
0: तो जो जल कम होगा तो रुक्षता भी बढ़ेगी, अग्नि पे भी प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जब डाइजेशन कमजोर होगा तो धातुएं भी कमजोर होंगी, तो शरीर में धीरे धीरे निर्बलता आती जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जाड़े में हम लोग कुछ भी खा लेते हैं तो सब पच जाता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है ना। और गर्मी में क्या होता है कि चूंकि अग्नि कमजोर होती जाती है तो हम जो भी खाते हैं तो ठीक से पचता भी, कभी इंडाइजेशन होगा और प्यास की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है, तो जब ठीक से खाना ही नहीं खाता है व्यक्ति तो कमजोरी बढ़ती जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसीलिए अच्छा चूंकि कमजोरी बढ़ेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी शरीर में, तो वो होगा तो इन्फेक्शन होने के चांस भाई एक सीक्वेंस में सब जुड़ता चला जाता है।
1: जी जी। और आपका आयुर्वेद तो उसी सिद्धांत पर चलता है।
0: उसी चलता है ये कि हम लोग हर चीज बैलेंस करके रखें
1: और जड़ को पकड़ते हैं,
0: जड़ को जी जी,
1: तो बीमारी की तरफ केवल उसी रोग का सीधे सीधे ट्रीटमेंट नहीं बल्कि उसकी जड़ को पकड़ करके जड़ मूल से खत्म करने का होता है और दूसरा रोग होने की संभावना कम हो जाती है।
0: जैसे
1: तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब खान पान की जो व्यवस्था होती है हमारे यहाँ वो तो पारंपरिक है ही, उस परंपरागत से हट करके थोड़ा सा डाइवर्जन आजकल देखने में मिलता है, तो क्या आपका सुझाव होगा कि कैसे अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने पर ध्यान दें?
0: जी जी, अब चूंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल में भी काफी परिवर्तन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी है और ऋतु के हिसाब से भी हम लोग नहीं आहार विहार करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है हम उसके हिसाब से चलने लगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सुबह जैसे आहार की बात करें हम लोग तो गुनगुना जल ले लें, और उसके बाद फिर नाश्ते में खाने पीने में भी अगर वातावरण के हिसाब से हम लोग लेते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे आहार में ही अगर हम बात करें तो इस समय हमको हल्के और शीघ्र पच जाने वाले आहार लेने चाहिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: जैसे क्योंकि अग्नि कम है, हमने आपसे बात करी, डाइजेशन कम होता है ना पावर, तो इसलिए हमको हल्के जैसे आप इस समय खिचड़ी ले सकते हैं, है ना, दलिया ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया सत्तू वत्तू आजकल देखिए हम लोग बचपन से खाते चले आए,
1: ये सत्तू को
0: जी जी मीठा भी शक्कर के साथ ले लेते थे, कभी नमक के साथ लिया जाता था, और कभी कभी तो घोल बना के भी पीने का है कि उसको आप पीजिए तो बहुत अच्छा रहता है।
1: अब सत्तू को आप रिकमेंड कर रहे हैं तो आजकल देखते हैं चना का सत्तू विशेष रूप से चलता है, जौ पीछे छोड़ गया है।
0: जी जी जी,
1: तो आपके आयुर्वेद के अनुसार कौन सा वाला अच्छा है, दोनों का मिक्स हो या फिर अलग अलग?
0: दोनों का मिक्स हो तो बहुत अच्छा है
1: जी,
0: चने में प्रोटीन ज्यादा होता है, और जौ का जो सत्तू है वो डायबिटीज में बहुत बढ़िया काम करे, जिनको मधुमेह रोग है उनके लिए जौ रामबाण बताया गया है।
1: अच्छा,
0: तो अगर गेहूं के साथ जौ को मिलवा पिसवाते हैं या जौ का सत्तू यूज करते हैं या तीनों अगर लेते हैं चने का भी सत्तू तो बहुत अच्छा रहेगा, वो तो बहुत अच्छा लाभदायक हो जाएगा दोनों। हम लोग जो डायबिटीज वाले रोगी हैं उनमें बताते भी हैं कि गेहूं के साथ चना और जौ को मिक्स करके जरूर पिसवाइए तो वो आपके लिए लाभदायक हो, और सत्तू के रूप में अगर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर
1: जी, मतलब डाइजेशन के लिए कि सत्तू का सेवन
0: बहुत लाभदायक है। जी जी,
1: इसके अलावा?
0: अब इसके अलावा हम लोग मसूर का सेवन कर सकते हैं, मूंग अंकुरित करके लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अंकुरित चना, गेहूं, दलिया हमने आपको बताया ही।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये चना हो या मसूर हो, मूंग हो,
0: जी जी,
1: इसे पहले लोग नाश्ते के रूप में गुड़ के साथ करते थे।
0: जी जी,
1: तो क्या गुड़ के साथ इसका सामंजस्य कुछ खास है जो हमारे शरीर के लिए होता है, या फिर वो पुरानी व्यवस्था थी उससे अब आगे चले?
0: गुड़ चूंकि मधुर है, मीठा तो शरीर के लिए शक्तिवर्धक तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें मिनरल्स बहुत से होते हैं, जो खनिज हम लोग आजकल मल्टी विटामिन टैबलेट्स और कैप्सूल्स लेते हैं वो उसमें बहुत अच्छा रहता है गुड़ में, तो अगर उसके साथ लेते हैं तो जो क्षमता है उसकी भोजन की वो और अच्छी हो जाती है और स्वाद भी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए गुड़ के साथ लेने तो बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हमारे वो बताते ना कि त्रिफला लीजिए पेट साफ करने के लिए, तो इसी तरह से हमारे यहाँ हरण जो आता है तो हरण को भी ऋतु के अनुसार बताया गया है, अब इस अच्छा। समय हमको उसको गुड़ के साथ ही लेने कहा जाता है।
1: अच्छा,
0: तो अगर लेते हैं तो पेट बहुत अच्छा साफ होगा।
1: अब जो हमारा मूल खाना दाल चावल रोटी सब्जी,
0: जी
1: ये
0: जी,
1: तो सबका मुख्य आहार है,
0: जी जी,
1: इसमें भी क्या कुछ सावधानी या परहेज रखना चाहिए?
0: जी जी बिल्कुल, हमने आपसे पहले ही बताया कि चूंकि अग्नि कमजोर होती है इस समय तो इसलिए जो हल्के सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए, हमको क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे जो भारी चीज है जैसे उड़द है आपका या घुइया है, कटहल हालांकि बहुत अच्छा लगता है लेकिन
1: आप लोग कहते हैं सीजन में तो खाना चाहिए,
0: नहीं खाना चाहिए लेकिन भारी होता है, आप देखिए जब भी खाएंगे तो दूसरे दिन थोड़ा सा महसूस जरूर होगा, तो घुइया है, कटहल है, बैगन है, ये सब नुकसान करता है, ये नहीं लेना चाहिए, है ना। और अग्नि कमजोर है तो पूड़ी पराठा कचौड़ी पे भी रोक लगानी चाहिए जितना हो सकता है,
1: मतलब गर्मी के मौसम में तेलीय चीजों से बचें।
0: जी, क्योंकि

0: तेल कटु विपाक है, उष्ण होता है। तो जब भी आप घी तेल वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो अग्नि क्या गर्मी ज्यादा होती है शरीर में, तो आपको उष्ण गर्मी लगेगी काफी और इंडाइजेशन भी होगा आपको उसके साथ साथ।
1: दूध दही मठा वो इसका है, तो बहुत चलता ही है।
0: जी जी, मठा बहुत अच्छा है। मठा तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये अग्निवर्धन भी काम करता है। और हम लोग जो रोकने वाली बात कहे थे आपने, क्या लेंगे जो भारी मीट है वो नहीं लेना चाहिए।
1: भारी मीट का तात्पर्य
0: ऐसे बकरे वकरे का है।
1: अच्छा,
0: वो नहीं लेना चाहिए।
1: रेड मीट का,
0: रेड मीट जी जी जी, वो नहीं लेना चाहिए।
1: मुर्गा का ले तो
0: मुर्गा हल्का होता है, लोग जनरली जो मान्यता है तो वो ले सकते हैं, लेकिन बकरे वकरे का नहीं लेना चाहिए जो भारी।
1: अंडा के लिए कहा जाता है कि गर्मी में अंडा नहीं खाना चाहिए, जाड़े में खाइए तो ज्यादा अच्छा है।
0: अंडे में एक्चुअली जो बीच वाला पोर्शन है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, तो वो नहीं ले सकते। व्हाइट वाला जो सफेद वाला पोर्शन है वो ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं।
1: और आहार तो
0: इसके
1: हो गया,
0: साथ साथ
1: विहार तो, उसमें अगर जोड़ना चाहें तो
0: अब विहार,
1: एक मिनट में उसे
0: जी,
1: भी
0: जी, जी जी विहार में तो ये है कि चूंकि गर्मी रहती है तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह उठे और थोड़ा सा टहल ले, है ना, और टहलने के साथ साथ व्यायाम अगर हल्का फुल्का हो सकता है, और स्नान अगर हो सकता है तो दो बार कम से कम दिन भर में करना चाहिए, क्योंकि गर्मी रहती है पसीने निकलते हैं, तो दिन भर का जो गर्मी वो भी शाम को थोड़ा दूर हो जाए और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे अगर पसीना साफ हो जाता है। कि आप देखते भी होंगे इस समय रिंग वर्म और इन सब के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं गर्मी में।
1: सही है,
0: तो अगर दोनों टाइम नहाएंगे तो उससे आसान रहेगा।
1: और बचाव का कोई उपाय, मान लीजिए दोनों टाइम नहीं नहा रहे तो?
0: नहीं नहा रहे तो फिर पाउडर, बहुत से एंटी फंगल हैं, उनको लगा सकते हैं, या स्किन के ऑयल हैं जो इन्फेक्शन को रोक सकते हैं वो करना चाहिए।
1: सरसों का तेल,
0: सरसों का तेल तो बेस्ट है सर।
1: अच्छा,
0: वो तो बेस्ट है,
1: मतलब सरसों का तेल लगावे तो फिर और किसी चीज पर जाने की
0: जरूरत ही नहीं है, चूंकि हम लोगों ने छोड़ दिया है ना। एक चीज और कहेंगे कि चूंकि गर्मी रहती है, कोशिश करें कि अपने जो भी काम है दैनिक वर्क वो सुबह और शाम के वक्त निपटाएं जो है अधिकतम। अगर बहुत जरूरी है कि आपको दिन में निकलना ही है तो चूंकि धूप ज्यादा हो, गर्मी है तो इसलिए या तो सर पे कैप हो, टोपी होनी चाहिए, या अंगोछा ही रख लीजिए, कुछ नहीं है। आप देखते भी हो कि जो महिलाएं होती हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, गर्मी में छाता लेके चलते हैं, इसीलिए कि धूप से बचा जा सके।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हमको लगता है कि आपने जो बताया है बिल्कुल यह परंपरा से तो था ही, लोग भूलते जा रहे थे, फिर से आपने रिवाइज कराया है, बल्कि अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे आपको अपनाना है, खान पान अपना सुदृढ़ रखना है, फिर आप देखेंगे कि बचे रहेंगे, आपको रोग जो है ग्रसित नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने समय निकाला स्टूडियो आए।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी एक भेंट वार्ता जिसका विषय था गर्मी में स्वास्थ्य सुरक्षा। वार्ताकार थे डॉक्टर कुलदीप चंद्र रस्तोगी, भेंट करता थे नगेंद्र सिंह रघुवंशी। वापस आते हैं, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम युवा तरंग में, जहाँ पे मौजूद हैं आपके दो दोस्त मांडवी और
1: अभिषेक।
0: दोस्तों, आज है 13 तारीख, 13 जून, और 13 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। तो दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य रंगहीनता से प्रभावित लोगों के अधिकारों, सम्मान और समान अवसरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: और दोस्तों, मानव समाज विविधताओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के साथ इस संसार को और अधिक सुंदर बनाता है, लेकिन कभी कभी कुछ शारीरिक विशेषताएं लोगों को दूसरों से अलग दिखाती हैं, और यही भिन्नताएं कई बार भेदभाव या गलतफहमी का कारण बन जाती हैं। रंगहीनता भी एक ऐसी अनुवांशिक स्थिति है, इसे समझने की आवश्यकता है, ना कि इसे दूरी बनाने की।
0: बिल्कुल। और कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसके बाल जन्म से ही सफेद हों, त्वचा अत्यंत हल्की हो और आंखें तेज धूप में आसानी से ना खुल पाती हों। अक्सर लोग उसे कौतूहल से देखते हैं, उसके बारे में तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो बच्चा भी उतना ही सामान्य, प्रतिभाशाली और सपनों से भरा हुआ है जितना कोई अन्य बच्चा।
1: बिल्कुल दोस्तों, रंगहीनता यानी कि अल्बिनिज्म कोई बीमारी नहीं है, एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक रक्त द्रव की निर्माण कम हो जाता है। और मेलेनिन यानी त्वचा बालों और आंखों को रंग प्रदान करता है। जब इसकी मात्रा कम होती है तो व्यक्ति की त्वचा और बाल सामान्य से अधिक हल्के दिखाई देते हैं।
0: दोस्तों, रंगहीनता का प्रभाव केवल बाहरी स्वरूप तक सीमित नहीं है, कई बार इससे दृष्टि संबंधी समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। प्रभावित व्यक्तियों को तेज रोशनी में देखने में कठिनाई हो सकती है,

0: उनकी दृष्टि सामान्य से कम हो सकती है और आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए उन्हें नियमित नेत्र जांच और धूप से बचने के लिए चश्मे लगाने चाहिए और उनको एक जो होता नहीं कि
1: बिल्कुल धूप से बचाव करें, धूप से अगर आपको एलर्जी होती है, आंखों पर असर पड़ता है, तो उस चीज़ से आप केयर से रहें। और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि रंगहीनता किसी प्रकार से संक्रमक नहीं है। ये किसी के संपर्क में आने से, साथ बैठने से या भोजन शेयर करने से, किसी अन्य सामाजिक व्यवहार से नहीं फैलती। इसके बावजूद समाज में इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास आज भी मौजूद
0: है। बिल्कुल अभिषेक, और अभिषेक हम लोग आगे भी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन क्यों ना अपने दोस्तों को उसके पहले सुनवा दिया जाए गीत।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सृजन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, महात्मा गांधी जी का एक विचार है कि समाज की महानता इस बात से मापी जा सकती है कि वो अपने सबसे कमजोर उपेक्षित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के कारण अलग या कमतर नहीं समझना चाहिए।
3: लेकिन अभिषेक, दुर्भाग्यवश दुनिया के कई हिस्सों में रंगहीनता से प्रभावित लोगों को भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कई लोग इसे किसी अभिशाप या लौकिक घटना से जोड़ देते हैं, लेकिन विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि ये केवल एक अनुवांशिक स्थिति है और इसका किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से कोई संबंध नहीं है।
2: बिल्कुल साथियों, और ऐसे में जागरूकता की सबसे बड़ा समाधान है जब हम सही जानकारी प्राप्त करते हैं या उसे दूसरों तक पहुँचाते हैं, तभी समाज में व्याप्त गलत धारणाएं समाप्त होती हैं। स्कूलों, परिवारों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: लेकिन हमारे आसपास कोई व्यक्ति रंगहीनता से प्रभावित है तो उसे सहानुभूति से अधिक सम्मान और अवसरों की आवश्यकता है। उसे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, खेल, कला और सामाजिक जीवन जो है उसमें समान भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी क्षमताओं को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा से पहचाना जाना चाहिए।
2: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों दुनिया भर में उनके ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने रंगहीनता के बावजूद शिक्षा, खेल, कला और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी सफलता ये प्रमाणित करती है कि प्रतिभा का रंग संबंध किसी रंग से नहीं बल्कि आत्मविश्वास, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से होता है।
3: और अभिषेक, तुम्हारी इस बात से हमें एक विचार याद आ रहा है, और विचार कुछ ऐसे है कि त्वचा का रंग इंसान की पहचान नहीं होता, उसके विचारों और कर्म उसकी असली पहचान होते हैं। और यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस हमें देता है। ये दिवस हमें विविधता का सम्मान करना और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना सिखाता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, जो जागरूकता के लिए जरूरी हैं, पर बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, पर उससे पहले लेते एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, रंगहीनता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। दोस्तों, ये केवल एक दिन या दिवस नहीं है, बल्कि समानता, संवेदनशीलता और मानवीय गरिमा का संदेश है।
1: आइए दोस्तों, अब सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके रंग रूप या शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ना हो, बल्कि उसकी योग्यता, मेहनत और मानवीय गुणों के आधार पर हो, क्योंकि विविधता ही प्रकृति की सबसे सुंदर पहचान है और यही विविधता हमारे समाज को समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल। और अभिषेक, हम अपने दोस्तों को बता दें कि कल के प्रोग्राम में वो क्या क्या सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, कल यानी कि 14 जून को आप के दो दोस्त हाजिर होंगे, मांडवी और आयुषी। कल आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता जिसका विषय है रक्त, मतलब एक चर्चा है एक चर्चा सुनेंगे रक्तदान सर्वोत्तम दान, और भेंट वार्ता है संक्रमण रोग कारण लक्षण निदान। वार्ताकार हैं डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता।
1: तो दोस्तों, बहुत सारी बातें अब कल के प्रोग्राम में हम सुनेंगे और हम लोगों की जो अनुमति,
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवा तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

ज्यादा मेलानिन त्वचा उतनी गहरी, जितना कम मेलानिन त्वचा उतनी हल्की, और ये पूरी तरह प्रकृति का खेल है। इसमें किसी की कोई गलती या पसंद नापसंद नहीं होती। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान के पूरे शरीर में मेलानिन बहुत कम बने तो क्या होगा? उसकी त्वचा, उसके बाल, यहाँ तक कि उसकी आँखों का रंग भी सामान्य से कहीं ज्यादा हल्का दिखाई देगा। इसी स्थिति को एल्बिनिज्म कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को देखकर कई बार समाज गलत धारणाएं बना लेता है। कोई कहता है कि ये छूत की बीमारी है, कोई अनजाने में उन्हें अलग नजर से देखने लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि एल्बिनिज्म ना तो छूने से फैलता है, ना साथ रहने से, और ना ही ये कोई संक्रमण है। ये जन्म से जुड़ी एक अनुवांशिक स्थिति है। एक और बात, हम अक्सर रंग को खूबसूरती का पैमाना बना देते हैं, जबकि सच ये है कि इंसान की खूबसूरती उसकी त्वचा के रंग में नहीं, उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और संवेदनाओं में होती है। हाँ, एल्बिनिज्म वाले लोगों को कुछ अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे तेज धूप से बचाओ, क्योंकि मेलानिन कम होने की वजह से उनकी त्वचा और आंखें सूरज की किरणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। कई लोगों को देखने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हें विशेष चश्मे या नियमित नेत्र जांच की आवश्यकता होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें कि किसी इंसान को उसके रंग से नहीं, उसके गुणों से पहचानेंगे, जानकारी फैलाएंगे, भ्रम नहीं, अपनापन देंगे, दूरी नहीं, क्योंकि हर जिंदगी खूबसूरत है और हर इंसान सम्मान का हकदार है। तो दोस्तों, जिंदगी के हर रंग को खूबसूरती से जीने की कोशिश कीजिए और सम्मान से जीने दीजिए। फिलहाल हम सफर में आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी को एक और नजरिए से देखने के लिए। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और फिर ले चलते हैं जिंदगी के अगले रंग की ओर।

नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं नई उड़ान, एक ऐसा मंच जहां हम विकास, अवसर और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर बात करते हैं। आज के अंक में सबसे पहले बात होगी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस की। जानेंगे कि अल्बिनिज्म क्या है, इससे जुड़े भ्रम क्या है और सही जानकारी क्यों जरूरी है। इसके बाद रुख करेंगे आज के विशेष आउटडोर ब्रॉडकास्ट की ओर, जहां साथी एंकर कपिल तिलहरी आपका परिचय कराएंगे फुटपाथ बाजार की जीवंत अर्थव्यवस्था से, जहां सजता है सड़क से सपनों का बाजार। और कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह होंगी विकास और अवसरों से जुड़ी ताजा खबरें, जो आपके भविष्य और प्रगति से सीधे जुड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और नई उड़ान की ओर अपने पंखों को फैलाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी त्वचा का रंग तय कैसे होता है? कोई गोरा क्यों होता है, कोई सांवला और कोई गेहुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर में बनने वाले एक प्राकृतिक तत्व मेलानिन से। जितना

0: दोस्तों, अभी हमने सुना ये गीत कि मैं हूँ आदमी सड़क का, जिसने किया इरादा पक्का। फुटपाथ की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है, पक्का इरादा और बस आगे बढ़ते जाने की सोच, हर दिन कमाना और खाना। जिंदगी का असली संघर्ष इसी फुटपाथ से तो शुरू होता है, लेकिन यही पर ठहर जाता है ये जरूरी नहीं है। कई बार फुटपाथ की जिंदगी शुरू तो होती है, मगर वो पहुँचती है ऊँचे आसमानों तक और कई बार संघर्ष करती रह जाती है इसी फुटपाथ पर। फुटपाथ की जिंदगी को बहुत करीब से जानने और समझने के लिए हमारे साथ ही एंकर निकल पड़े अपने माइक के साथ ये जानने कि फुटपाथ की जिंदगी कैसे कर रही है गुजर बसर। ये फुटपाथ के बाजार महज कमाने और खाने का जरिया नहीं है, ये वो जीवंत अर्थव्यवस्था है जहाँ से हमारे सपनों का बाजार सजता है और बदल देता है पूरी अर्थव्यवस्था, न सिर्फ हमारी जिंदगी की बल्कि पूरे देश की। तो आइए जानते और समझते हैं फुटपाथ बाजार की जीवंत अर्थव्यवस्था को, जहां से सजता है सड़क से सपनों का बाजार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नई उड़ान, और मैं हूं आपका दोस्त कपिल। नई उड़ान के विशेष सेगमेंट स्ट्रीट लाइन इंडिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं उन गलियों, चौराहों और बाजारों तक जहाँ भारत की असली तस्वीर बसती है। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे संसार में जहां सुबह की पहली किरण के साथ कारोबार सस्ता है, जहां मोल भाव की आवाजें गूंजती हैं, जहां सीमित आय वाले लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं और हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। जी हां दोस्तों, आज का हमारा विषय है फुटपाथ बाजारों की जीवंत अर्थव्यवस्था, सड़क से सपनों का बाजार। आइए चलते हैं सीधे उसी बाजार में।
2: कोई सा भी कलर आपकी इससे मैचिंग होगा और 65 रुपए की कोई सी भी टाई आप यहाँ से आके ले सकते हो।
3: तो ये कितने का था करीब वाला? 250। ये 250 के दो थे और ये
2: इनमें से कोई सा भी 350 का। कितने का भैया?
4: 300 में दो है भाई साहब।
2: 300 में दो लेडीज ईगल वाला सिर्फ 200 रुपए का है। काश मेरा साइज होता है ना।
1: दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ शहर के एक व्यस्त फुटपाथ बाजार में। मेरे चारों रंग बिरंगे कपड़े, खिलौने, घरेलू सामान, जूते, चप्पल और तरह तरह की चीजें सजी हुई हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे हैं और पूरा माहौल ऊर्जा से भरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ दुकानदारों से। क्या नाम है आपका?
5: हमारा नाम मनोज है। मैं नजीराबाद के अंदर दुकान लगाता हूँ। फुटपाथ है मेरी नजीराबाद रोड में, करामत बटन के थोड़ा सा आगे है। और यहाँ पे मैंने अपने हाथ से शुरू किया है। मैंने नौकरी वोकरी क्या पढ़ाई अड़ाई करके मैंने नौकरी भी ढूंढा, नहीं मिली। तो हमने सोचा कि एक अपना ही कारोबार करूँ। छोटी सी दुकान फुटपाथ पे लगाता हूँ। दो रिंग लगाता हूँ, लोबर नेकर टी

0: हम यही लगाते हैं दुकान और अपना यही से शुरू हुआ है, यही काम चल रहा है। अब ईश्वर चाहेगा तो अपनी दुकान भी ले सकता हूँ मैं।
1: अच्छा ये बताइए कि आपकी औसत कमाई कितनी हो जाती होगी?
0: अरे अपना औसत कमाई 1000 से 1200 पैदा हो जाता है, कभी भरे सन्नाटे में 500 हो जाता है।
1: अच्छा फुटपाथ पे आप जब लगाते हैं तो क्या कभी आपको किसी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है?
0: हाँ बरसात है, सन्नाटा है, धूप है, सब कुछ है, बस क्या है न कोई ज्यादा परेशान नहीं करता, बस लगाता हूँ, बैठा रहता हूँ, कस्टमर आता दिखाता रहता हूँ।
1: क्या नाम है आपका?
2: शानू नाम है।
1: शानू आप ये काम कब से कर रहे हैं?
2: ये हो गया टाइम मुश्किल से 10-12 साल हो गए हमको करते हुए।
1: अच्छा जहाँ पे चिकन के बहुत बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं वहाँ पे आपने कैसे सोचा कि मैं चिकन का ही व्यवसाय करूँगा और ये चल जाएगा?
2: सर मैंने बचपने से लेके शुरू तक पहले तो मोहन मार्केट में मैंने काम किया, उस चिकन ही की दुकान पे काम किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैं अपनी दुकान में मैंने सोचा कि खोल लें, तो अपने ही काम में कर रहा हूँ सर।
1: और ये काम जैसे आप फुटपाथ पे लगाए हैं, क्या आपके सामने कभी कोई चुनौती भी आती है, आपको किसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है?
2: क्यों नहीं आता सर, जैसे बहुत से कस्टमर होते हैं चले आते हैं, बार्गेनिंग इतना इतना करते हैं, कहते हैं आगे दुकान में तो सस्ता मिल रहा है, आपके पास इतना महंगा मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सर, बल्कि दुकान में जो चीज आपको महंगी मिलती है 1000-1200 रुपए की मिलेगी, हमारे पास आपको 700-800 रुपए में मिल जाएगी, जो वहाँ पे 400-500 का मिलेगा हमारे पास 250-300 रुपए का मिल जाएगा। दुकान से अच्छी वरायटी होगी हमारे पास, जो दुकान में रखते हैं वही वरायटी हम लोग भी रखते हैं सर।
1: क्या नाम है आपका?
3: अलहाज रसूल। फुटपाथ में मेरे पीछे चचा घड़ी की दुकान है, इन्हीं के जरिए से मैं फुटपाथ आ गया था। थोड़ा सा काम मेरा बाहर का था, दरदूजी लाइन का काम था, वो मेरा जब बंद हो गया काम तो मैंने सोचा ये लॉकडाउन के टाइम पे तो मेरे थोड़ा सा ये सहारा बने चचा मेरे, तो ये पर्स की दुकान इन्होंने डलवाई, तो उन्हीं के जरिए से मैंने ये दुकान अलाट हुई मेरे नाम, उसके बाद मैं पर्स की दुकान डाला। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का उसका कि पर्स की दुकान की थोड़ा बहुत काम चल रहा, मगर इस टाइम सन्नाटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, तो 600-700 रुपये से हो जाता है, साल में 1000-1100 रुपये हो जाता है भाई, यही ज़िंदगी चल रही है। वैसे फुटपाथ पर मैं सोचता हूँ दुकान लेने का पूरा इरादा है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लंबी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी के जरिए से मैं थोड़ा सा बच्चों का पढ़ाई करा रहा हूँ।
1: तो दोस्तों एक और शख्स है जो चादर पर्दे और घर को डेकोरेट करने के आइटम यहाँ पर लगा के रखे इन्होंने फुटपाथ पे। क्या नाम है आपका?
4: इरफान।
1: इरफान ये काम आप कब से कर रहे हैं?
4: 2 साल हो रहे हैं।
1: तो आपको इस काम की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे लगा कि ये शुरू किया जाए?
4: ये से जैसे पहले सेल में बेचा, फिर धीरे धीरे जो है अपने आगे बढ़ के और भी देखा, पर्दे चादर से स्टार्टिंग किया, पहले नॉर्मल चीज स्टार्ट किया, फिर अच्छे में स्टार्ट किया, कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इंशाल्लाह मिली।
1: अरे कामयाबी क्या, मैं तो देख रहा था कि आपके पास अभी बहुत सारे ग्राहक खड़े थे, तो क्या लगता है जो ग्राहक हैं पटरी दुकानदारी से आजकल ज्यादा परचेजिंग करने लगे, ऐसा क्यों है?
4: नहीं नहीं मसला क्या है, क्वालिटी अच्छी रखते हैं ना, क्वालिटी अच्छी रखते हैं, एक बार जो आता है ले जाता है खुद बोलता है जो कस्टमर कि भैया क्वालिटी अच्छी थी हमें और दी।
1: एक दिन में औसत कमाई कितनी हो जाती होगी?
4: 2000-3000।
1: क्या नाम है आपका?
5: आशीष प्रताप सिंह।
1: आप क्या क्या बिक्री करते हैं?
5: कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स, कुरकुरे और बिस्कुट, टॉफी, च्युइंगम।
1: ये काम आप कब से कर रहे हैं?
5: हमें 20 साल हो गया।
1: तो इस व्यवसाय को शुरू करने की प्रेरणा कैसे मिली?
5: कम पैसे थे, आर्थिक तंगी थी, इसलिए हमने छोटे पैसे से जो है काम स्टार्ट किया, आज एक कंपनी ने हमको एक दुकान दिया है।
1: नगर निगम जो है वो अलाउ करता है ये दुकान लगाना?
5: जी नगर निगम ने हमको जो है 600 रुपए देते हैं हर महीने, अलॉटमेंट किया है हम लोगों को।
1: अच्छा
5: जी,
1: तो इस काम को शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने क्या आई थी जब आपने 20 साल पहले शुरू किया था?
5: हम लोगों को जो है नगर निगम से अलॉटमेंट नहीं था तो हमें भगना पड़ता था, फिर यहाँ अलॉटमेंट हुआ, अब हमको भगना नहीं पड़ता है।
1: तो लगभग कितनी कमाई आप कर लेते होंगे?
5: 10 से 12 हजार, 15 हजार।
1: तो उसमें घर चल जाता है आपका?
5: जी।
1: फुटपाथ बाजार केवल सामान बेचने की जगह नहीं बल्कि हजारों परिवारों के सपनों का आधार भी है। अब बात करते हैं कुछ ग्राहकों से। तो क्या नाम है आपका?
6: आशीष गुप्ता।
1: आशीष आप फुटपाथ बाजार से खरीदारी क्यों करते हैं, क्या कारण है?
6: सर मैं खरीदारी इसलिए करता हूं कि जो सामान मुझे दुकान पे जिस रेट में मिलता है उससे कम रेट में फुटपाथ पर ही मिल जाता है, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है सेम ही क्वालिटी मिल जाती है मुझे। पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन के चक्कर में सामान थोड़ा अच्छा क्वालिटी में अच्छा मिल जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं फुटपाथ पे ज्यादा ध्यान देता हूँ।
1: अच्छा इससे क्या आपको ये लगता है कि ये जो फुटपाथ बाजार है ये लगनी चाहिए?

0: ये जो देश की इकोनॉमी है इसको बढ़ाने में मदद करता है?
1: हाँ, मदद तो करता होगा, क्योंकि अब हम लोग सामान, हमें सस्ता सामान मिल रहा है और हम लोग खरीद भी रहे हैं इससे, और बिजनेस भी बढ़ जाएगा। इन लोग का बिजनेस बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी तो बढ़ ही जाएगी।
0: अच्छा आशीष, आजकल मॉल संस्कृति आ गई है और ऑनलाइन बहुत सारा सामान बिकने लगा है, लोग घर बैठे परचेसिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या फुटपाथ बाजार की ज़रूरत होती है?
1: हाँ, फुटपाथ बाज़ार की ज़रूरत तो है, क्योंकि ऑनलाइन में जो हम सामान खरीदते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं उसमें ये होता है कि हमें सामान जो है दिखाई नहीं देता है। कभी कभी सामान जो है एकदम लो क्वालिटी का आ जाता है, कभी कभी होता है जो अच्छा आता है, लेकिन अधिकतर मैंने मंगाया है जब तो मुझे लो ही क्वालिटी मिली है। और ये जो फुटपाथ बाज़ार है इस पर जाके हम अपने सामने देख कर अच्छा क्वालिटी खरीद सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, और पैसे भी थोड़े से कम देने पड़ते हैं, और ऑनलाइन बाज़ार में पैसे भी ज़्यादा होते हैं और मैं देख भी नहीं सकता हूँ उस चीज़ को। ये दिक्कत है, हमें तो ये सही लगता है कि ये जो फुटपाथ बाज़ार है इसको होना चाहिए, ताकि हम लोग को थोड़ा सा कम रेट में सामान मिलता रहे।
0: तो दोस्तों, अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग से शख्स खड़े हैं, वो भी फुटपाथ बाजार से खरीदारी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या नाम है?
2: राम नरेश तिवारी।
0: राम नरेश जी, बताइए फुटपाथ बाजार से आप खरीदारी क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है?
2: अरे वहाँ सस्ता मिल जाता है, दुकान में महंगा मिलता है।
0: तो दुकान की क्वालिटी और फुटपाथ की क्वालिटी अब सेम मिलती है क्या?
2: हाँ, मिलती भी है, कहीं कहीं नहीं मिलती, दूसरी जगह ले लेते।
0: आजकल ऑनलाइन बहुत खरीदारी होने लगी है, तो आपको क्या लगता है कि फुटपाथ बाजार होने चाहिए या नहीं?
2: बहुत जरूरी है, गरीब आदमी फुटपाथ से लेगा, वहाँ से नहीं लेगा, चौगुना भाव वो लेंगे, चौगुना भाव हम कहाँ से देंगे, हमारे पास है।
0: ग्राहकों की बातों से साफ है कि फुटपाथ बाजार आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या इन बाजारों का महत्व केवल खरीद बिक्री तक सीमित है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों से बात की। तो दोस्तों, हमारे साथ है नेशनल पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मानसी गौर।
3: Roadside shops or street vendors constitute an unorganized sector of our economy, which I must say is pretty large. So they are reducing the problem of unemployment. Aur iske saath hi saath employment hai tabhi income hai isiliye consumption hai isiliye demand hai, demand hogi तभी प्रोडक्शन होगा तभी सप्लाई होगी। हम एक और इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में देख सकते हैं कि दे आर क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, दे आर क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी। जो भी लोकल रीजनल टेस्ट है, स्किल है, आर्ट फॉर्म है, उसको भी ना ये प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत ही स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं और जनरली ये ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जो कि बेसिकली इनका लोकल चीज है, ठीक है? तो ये एक तरीके से इंडिजिनस, वो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। पर समवेयर आई फील कि देयर कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन्स neglected because they are operating on a very small scale. इनका जो contribution है ना वो consider ही नहीं हो पाता है majority का, वो unaccounted रह जाता है, वो आपका neglect हो जाता है।
0: तो दोस्तों, अब इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी जी, जो कि प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि फुटपाथ बाजार हमारे शहर की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं?
4: अगर हम देखें तो फुटपाथ आजकल शहरों में अलग अलग मोहल्लों में सप्ताह के अलग अलग दिनों में लगते हैं और काफी लोगों को जीविका का अवसर प्रदान करते हैं। जिस तरीके हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस फुटपाथ बाजार के भी दो पहलू हैं। हम आज उस पहलू पे ज्यादा बात करेंगे जो कि लाखों लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार हैं, और अगर इन सबको बढ़ावा नहीं देंगे या इन सबको अगर विस्थापित कर देंगे तो बहुत से लोगों को अपनी जीविका अर्जन करने के साधनों से विमुक्त होना पड़ेगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ठीक है जो बाजार है, जो स्थापित बाजार है उनका महत्व है, लेकिन जो फुटपाथ बाजार है वो भी देश की आर्थिक प्रगति में, रोजगार सृजन

0: अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान भरपूर दे रहे हैं
1: जी।
0: तो उनके उनके इस कंट्रीब्यूशन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, अनदेखा नहीं कर सकते। फुटपाथ बाजार से आप ये देखिए कि आपको रोजमर्रा की सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपको अपने हिसाब से उनसे मोल भाव करने का भी विकल्प प्राप्त होता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर हम उनके साथ जो है एक सोशल कनेक्ट स्थापित करते हैं कि अगर मान लीजिए चीज पसंद नहीं आई और हम उससे खरीदते हैं तो कहता है कि भैया ऐसा बदल के दूसरा ले जाइए। इसका अपना महत्व आज भी बना, आज भी बहुत से लोग हैं और हर वर्ग के लोग आज भी फुटपाथ बाजार पे कहीं ना कहीं आपको वस्तुओं को खरीदते हुए अवश्य मिलता है।
1: एक आखिरी सवाल था आपसे कि फुटपाथ बाजार से कई बार जो ट्रैफिक है उसको भी बड़ी असुविधा होती है या कई बार लोगों को लगता है ऐसा, तो फुटपाथ बाजारों को बेहतर बनाने के लिए क्या विकल्प होने चाहिए, किस तरीके से सरकार बेहतर बना सकती है या नगर निगम है या हम लोग भी इस बारे में सोच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं?
0: देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये जो बाजार लगते हैं फुटपाथ, इसकी वजह से यातायात जो है बाधित होता है, लेकिन किसी की रोजी रोटी है वो हफ्ते में एक दिन के लिए आता है, रोज वो लगते नहीं, इसी दिन को साप्ताहिक बाजार के नाम से कहते हैं। सरकार अगर चाहे तो इनके लिए ये कर सकती है कि एक इनके लिए कोई एक लेन बना दे, गली बना दे कि आप यहीं पर बेचेंगे, है ना। तो एक ऐसी कुछ पॉलिसी आनी चाहिए कि जो भी कोई अपना व्यापार करना चाहता है उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, वो अपने को रजिस्टर करा पाए और सरकार उसको जो है बिल्कुल नॉमिनल रेट के ऊपर एक जगह प्रोवाइड करे जिसका वो धीरे धीरे किराया भी देता रहा और एक समय के बाद वो जगह उसकी हो जाए। तो इससे दोनों का फायदा है, आखिरकार देश की तरक्की में ही सबका जो है भविष्य जो है वो समाहित है।
1: आज की इस यात्रा में हमने सुना कि फुटपाथ बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये संघर्ष है, मेहनत है, अवसर है और आत्मनिर्भर भारत की एक जीवंत तस्वीर भी है। एक तरफ दुकानदारों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ ग्राहकों की जरूरतें और इनके बीच धड़कती है स्थानीय अर्थव्यवस्था। छोटे छोटे ठेले, अस्थायी दुकानें और रोज होने वाला कारोबार मिलकर एक बड़ी आर्थिक कहानी लिखते हैं। इन्हीं कहानियों को आपके सामने लाने का प्रयास है स्ट्रीट लाइन इंडिया। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नई गली, नए बाजार और नई कहानी के साथ।
2: तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे फुटपाथ से हम प्रगति की ओर बढ़ जाते हैं, और जब प्रगति की ओर बढ़ते हैं तो जरूरी है हमारा हमेशा अपडेट रहना। तो चलिए ले चलते हैं आपको उन खबरों की ओर जो विकास और अवसरों से जुड़ती हैं आपके साथ। एआई और बिजनेस एनालिटिक्स में नया डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ है। लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान ने BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स नाम से नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया खुल चुकी है और पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। ये कोर्स AI, डेटा और बिजनेस मैनेजमेंट के संयोजन पर आधारित है। दोस्तों, एक जनपद एक उत्पाद योजना तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा हो चुकी है कि एक जनपद एक व्यंजन योजना, इसको भी मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी मिलने के बाद हर तरह से देखा जाए कि हर जिले के जो पारंपरिक व्यंजन की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। और लखनऊ के लिए रेवड़ी, मक्खन मलाई, चाट और आम आधारित उत्पादों को प्रमुख पहचान दी गई है। तो इस क्षेत्र में जो जुड़े हुए काम करने वाले लोग हैं उनके सपने साकार हो सकते हैं। इस पहल से स्थानीय हलवाई, सूक्ष्म उद्यमी और खाद्य व्यवसायियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। ODOP से जुड़े कारीगरों को वैश्विक बाजार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास तेज हुए हैं। इससे जरदोजी, पीतल, बनारसी सिल्क और अन्य हस्तशिल्प क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगरों को नए निर्यात के अवसर मिल सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 4,500 अप्रेंटिस पद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। रोजगार संगम पोर्टल पर नए जॉब मेले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर विभिन्न जिलों में रोजगार मेले और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए पंजीकरण जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब खबरें ऐसी हैं जो आपके करियर को एक उड़ान दे सकती हैं, एक दिशा दे सकती हैं। बस आपको अपने साकार करने हैं सपने और उसके लिए जुट जाना है पूरी तैयारी के साथ। और इसी के साथ दोस्तों

0: अब जो समय है वो हमारा है आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का मतलब यही है कि सफ़र में हम और आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं से भी जुड़ें। आपको हमारी नई उड़ान का ये प्रयास कैसा लग रहा है, इसके लिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि अपने ईमेल, अपने पत्र हमें ज़रूर भेजें। तो कैसे भेजेंगे आप, ये जानने के लिए सुनते हैं ये।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान airlakhnow@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

जी हाँ दोस्तों, अब आपने नोट कर लिया होगा मेल और एड्रेस, आप दोनों जगह पे अपनी बात रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप जिस तरह की जानकारियां हम दे रहे हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं और आप इच्छुक हैं इस बात के कि आपकी बात भी लोगों तक पहुंचे कि कैसे किया है आपने संघर्ष और कैसे सफलता के आयाम को चूमा है, तो बिल्कुल आप हमें लिख भेज सकते हैं। इस बारे में भी हम आपसे जुड़ेंगे और आपको जोड़ेंगे, आपकी आवाज़ को जोड़ेंगे लोगों के बीच में, क्योंकि नई उड़ान का मकसद ही है कि हम अनुभव के साथ सीखें, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और एक साथ मिलकर आगे न सिर्फ बढ़ें बल्कि लोगों को बढ़ाएं भी। तो इसी प्रयास में हम लगातार आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। पत्रों का इंतज़ार हमें रहेगा ही रहेगा और समय अगर कहीं चलने का हो रहा है तो बिल्कुल समय कह रहा है कि हम आपसे इजाज़त लें। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी बात ये कि हमने शुरुआत में ही आज कहा था कि रंग भेद हम ना करें। हम किसी को किसी की पहचान के साथ देखें तो ससम्मान देखें, हम किसी रंग के आधार पर, किसी की जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर कभी तुलना ना करें। उसके व्यक्तित्व को देखें और व्यक्तित्व के साथ हम सीखते हुए आगे बढ़ें। यही एक खूबसूरत सा संदेश आज के इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से, और इस संदेश के साथ मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छे विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दीजिए अपनी दोस्त शालिनी को इजाजत, फिर मुलाकात के वादे के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूले
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: ये आकाशवाणी लखनऊ है, शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांस देशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धान् स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने जी सेवन शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्यलक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:30 वादने

0: अपूर भैया।
1: हाँ कंचा।
0: देखो आज मौसम बड़ा अच्छा है, सवेरे सवेरे बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती रहा, उनके साथ बूंदा बांदी भई रहा है, जेके खातिर आज मौसम बड़ा नीक है और गर्मी तो यहाँ थोड़ी राहत है।
1: बिल्कुल सही कहे हो, देखो यू हम आए दिन देख रहे। अच्छा एक चीज है, इधर बरसात के बाद से यू देखे थे कुछ कुछ अंतराल पर मौसम जरूर अपनी थोड़ा नमी दे देते हैं, नहीं तो वैसे तो गर्मी के मारे बड़ा मन परेशान रहा था।
0: बिल्कुल भैया, और जून क्या महीना चल रहा है और मौसम जो मानसून आवे वाला है, और गांवन में यहाँ पहले जब बरखा भैया हुए थे पहले जो सब जने रहा है गांव के निवासी भी तालाब नाली कुआं नहर नाला की सफाई सब जने मिलके करते रहें ताकि जो बरखा क्या पानी है वो साफ साफ इकट्ठा हो सके और पानी क्या निकास जो है वो नीक नीक बना रहा है।
1: बिल्कुल सही कहती हो, लेकिन अब तो देखो बड़ा समय परिवर्तित हुई गया है, ई तरफ कोनो ध्यान नहीं देते, ये तो समझ लेते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। और हम देखे थे कि जो पहले के ताल तलैयन की बात करें उनकी भी संख्या बड़ी कम परत जा रही है, जो कि एक सोचे वाला विषय है।
0: बिल्कुल भैया, अब कुआं तो लगभग खत्म हो गए हैं, बोला जो पहले हमारे जो दादा बाबा नाना नानी लोग रहा है जो या परंपरा रहा है कि सब जने अमावस्या और जो है पूर्णिमा के यहाँ सब जने मिलके जो है तालाब के और जो है कुएं के साफ सफाई करते रहे, बोला अब ये

0: परंपरा जो है थोड़ी कम देखे के यहाँ मिल रही है, आप सही कह रहे हैं।
1: तो देखो इसके पीछे यह कारण है, चूंकि उनकी संख्या कम पड़ती जा रही है। पहले यूँ होता रहा, कच्चे मकान होते रहे, तो एक जिसे बात करो तालाब की, तो मिट्टी निकाली जाता रहा, यह एक सफाई का साधन होता रहा तालाब की। लेकिन फिर भी हमका अपने अगर जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बचाना है, तो इनका संरक्षण करे परी। और बात जो साफ सफाई की किन्हों, तो अब तो देखो पहले की अपेक्षा गाँवन में देखो इंटरलॉकिंग लगी है, रोडें आई गई हैं, बिजली की पूरी व्यवस्था है, कायदे ते नाली बनी हुई है, लेकिन उनकी भी साफ सफाई की जिम्मेदारी हम पंच नाय उठाए रहना है। पता लगत है हमरे जो सामने घर के सामने की नाली है, उम्मा हम झिल्ली है, दुनिया का कचड़ा है, वो खुद ही डाल दी थे। इसके बाद में आरोप लगाए थे कि पानी निकल ना रहा है, वो भरा पड़ा है।
0: बिल्कुल भैया, तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोग जो साफ सफाई, अगर हम अपन घर साफ कर रहे हैं, द्वार साफ कर रहे हैं, तो हमारे जो अपने घर के द्वारे जो नाली है वह साफ कर की जिम्मेदारी हमें लोगों के है। और जब साफ सफाई की बात भैया चल रही है, तो यो वही कहावत है, वही कथन है कि जो साफ सफाई में यानी स्वच्छता में यहाँ देवता निवास करते हैं।
1: बिल्कुल, देखो कहा जाता है यदि स्वच्छ तन है तो स्वच्छ मन नहीं, और स्वच्छ मन है तो हमारे संस्कार हुए स्वस्थ और स्वच्छ रही हैं। लेकिन युद्ध तब है संभव है जबकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ होए और स्वस्थ होए।
0: पर्यावरण स्वच्छ है और साथ ही साथ जो हमारा आसपास घर गांव नली नाला वो है वो सब साफ हैं। तो ये साफ करे की परंपरा का यहाँ निभावे की खातिर अपन जो सरकार है वी याक जो है कार्यक्रम बनाए हैं, जे क्या नाम है स्वच्छ भारत मिशन। और ये का दो भागन में यहाँ बांटागा, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरे है स्वच्छ भारत मिशन शहरी।
1: तो बिल्कुल सही कहो। अब हम चूंकि गांव से संबंधित है तो अपनी गांव की बड़ी बात करित है, और इका लेके देखो कत्ता जागरूकता अपने गांवन में यहाँ आए गए, जो शौचालय बनाए गए या जो उनकी दिशा निर्देश दिए गए भैया कि सूखा कचरा हियाँ गीला हियाँ। अब यहाँ तक कि हम देखें जो अपने गांव की पंचायतें हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हों जिनका हम CSC कहते हैं या PSC वाले हैं, या जो भी अन्य सरकारी इमारतें हैं जैसे स्कूल आदि, हुआ जाए थे तो देखे तो बड़ा नीक लागत है। इससे पहले का होता है दुनिया भरे कचरा, हम गंदगी खुदे करा कर रहा है, लेकिन अब हम पंच या कहीं सब लोग जागरूक हो गए हैं, यो एक बड़ा अच्छा संकेत है।
0: बिल्कुल भैया, और जागरूक ये के खातिन भय हैं लोग कहत के हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ये के द्वि चरण जो है बनाए गए हैं। पहले चरण में यहाँ जो है 2014 से लेकर 2019 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि जो खुले में यह सोच के जो प्रथा है, जो बुरी प्रथा है, कुप्रथा है, यही ते निजात पावा जाए। और निजात पावे के खातिर सब घरन में यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ शौचालय के व्यवस्था करवाई गई। और यह फिर यही के बाद द्वितीय चरण में यहाँ यो जो है लागू किएगा कि जो सब घरन में यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ जो शौचालय व्यवस्था है वही के साथ साथ जो गीला कचड़ा है सूखा कचड़ा है वही का उचित रूप से यहाँ प्रबंधित की जाए, और साथ ही साथ लोगन के यहाँ साफ सफाई के प्रति जागरूक की जाए।
1: बिल्कुल सही कहे। और यूँ देखो विकसित भारत की तरफ एक बहुत बढ़िया कदम है। और जब बात हम पंचकृत है विकसित भारत की, तो उम्मा देखो गांवन का योगदान हो सकत है, और गांवन में जो हरित विकास हो रहा है वीके संदर्भ में एक अपने बीच में वार्ता है, तो सुन लीन जाए। विकसित भारत और गांव में हरित विकास, ई के वार्ताकार हैं मोहित कुमार जी।
0: हाँ भैया सुना
2: जाए। भारत के विकास की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन एक साथ चल सकते हैं या नहीं। यह मुद्दा खासकर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ लगभग 65% आबादी रहती है और लगभग 47% श्रमिक कृषि उससे जुड़े कामों में लगे हैं। ग्रामीण लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली कृषि भूमि, जल संसाधन और प्राकृतिक तंत्र जिन पर उनकी आजीविका निर्भर करती है, उनके दैनिक जीवन के लिए बेहद जरूरी है कि साथ ही यह जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के प्रति काफ़ी संवेदनशील भी है। इसलिए यह स्थिति भारत के हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। वर्ष 2025 के स्तर की तुलना

में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी लाना, भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% और गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से 2.5 अथवा 3.5 अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने जैसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे नीतियों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम किया जा सकेगा। पिछले एक दशक में भारत ने इस दिशा में कई नीतियां बनाई हैं। अब इससे जरूरी यह देखना है कि ये नीतियां जमीन पर कितने प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं। भारत में ग्रामीण हरित विकास का विजन कई गतिशील राष्ट्रीय योजनाओं पर आधारित है, जो पानी, ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, आजीविका और कृषि जैसे आपस में जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करती हैं। ये योजनाएं मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को गांव स्तर पर लागू करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं, जैसे विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की नींव रखता है, जल जीवन मिशन भविष्य के लिए टिकाऊ जल प्रणाली को मजबूत करता है, परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य रासायनिक पदार्थों को कम करके खेती के आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पीएम कुसुम विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। गोबरधन योजना कचरे के पुनः उपयोग पर आधारित है। ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ और हरित गांव बनाना है। इन सभी योजनाओं के संयुक्त प्रयासों से गांव में समग्र और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिल रहा है। नीतियां चाहे कितने भी अच्छी तरह से बनाई गई हों, उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे स्थानीय परिवेश में कितने प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं। भारत के कुछ राज्यों ने हरित विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने मजबूत संस्थागत व्यवस्था को समुदाय की भागीदारी के साथ जोड़ा, जिससे विकास के ऐसे मॉडल बने जिनसे महत्वपूर्ण सीख ली जा सकती है, जिसके तहत राज्य के 38% ग्रीन फेलो नियुक्त किए गए हैं। इनका काम स्थानीय प्रशासन में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई पीएम कुसुम योजना यह दिखाती है कि सतत विकास कैसे किसानों की आजीविका को बेहतर बना सकता है। सौर जल पंप उपलब्ध होने से किसानों की निर्भरता अब महंगे डीजल जनरेटर पर ना रह करके अब सोलर पर आ पहुंची है। गुजरात ऊर्जा एजेंसी द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बनासकांठा जैसे क्षेत्र के किसानों को कई आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। वहीं वहां के अब किसान हर महीने 10,000 से अधिक बिजली खर्च में कमी और अतिरिक्त बिजली बेचकर अपनी नई आय का जरिया अपना रहे हैं। गुजरात का यह अनुभव एक महत्वपूर्ण सीख देता है, जब टिकाऊ तकनीकी किसानों के आर्थिक रूप से लाभकारी होती है तो किसान उसे तेजी से अपनाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सतत विकास केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के आर्थिक विकास का एक मजबूत संसाधन भी बन सकता है। गांव को सशक्त हरित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने की एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इन परिवर्तनों में प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनः जीवित करना, किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बायोगैस संयंत्र स्थापित करना और खाना पकाने के लिए स्वच्छ एवं नवीनीकरण ईंधन उपलब्ध कराना

शामिल है। ये सभी पहल मिलकर या अलग अलग रूपों में ग्रामीण समुदायों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए मददगार हैं, जिससे वे केवल हरित नीतियों के लाभार्थी न रहकर उससे क्रियान्वयनकर्ता बने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण को नेतृत्व करें। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्ञान को प्रभावी संस्थाओं, रणनीतिक योजनाओं, नवाचार, पूर्ण बाजारों और निरंतर प्रगति के

0: प्रचारित किए जाएं। यह संयोजन हरित ग्रामीण परिवेश की और एक स्थायी और सकल परिवर्तन को संभव बनाएगा। सरकार और व्यवसायों के साथ साझेदारी के माध्यम से स्थानीय क्षमता और विकास परिणाम आधारित निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय सरकार यानी ग्राम पंचायत स्वच्छ और हरित गांव लक्ष्य के लिए योजना बनाने की मुख्य इकाई है, जैसे प्राकृतिक संसाधन के कार्यों की योजना बनाना, जल गुणवत्ता और डेटा को समझना और उसका विश्लेषण करना, सौर बायोगैस के उपयोग की अव्यवहार्यता का आकलन करना आदि आदि। भारत ने यह कर दिखाया कि मजबूत नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से बड़े हरित लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।
1: अपूर भैया।
2: हाँ कंचा।
1: मोहित कुमार भैया, विकसित भारत और गांवों में हरित विकास विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दें और कई योजना क्या जिक्र कहें जैके अंतर्गत, जैसे कि सोलर पैनल और जीवने जैके अंतर्गत जो है गांवों में यहाँ हरित विकास के यहाँ विकसित किया जा रहा है और बहुत अच्छे से यहाँ जानकारी दें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, अब देखो एक समय हो चुका है कि अपने पंच बहन का एक लोकगीत सुनाई दिन जाए, तो आओ सुन लिया जाए संजोली पांडे के स्वर में यू लोकगीत।
1: हाँ भैया।

0: आकांक्षा।
1: हाँ भैया,
0: देखो लोकगीत बढ़िया लगा।
1: हाँ भैया, लोकगीत बड़ा नीक रहा है। भैया आप जो है अपनी खेती पाती के बारे है, तो अपनी खेती पाती के बारे में बात कर जाए, तो जून क्या महीना चल रहा है, वो बरखा आवे वाली है। धान के बुवाई जो है कईयों पंच भाई कह चुके हैं, और अब जो है एक वाधी बरखा हो जाए तो अपन पंच भाई अपने ख्यातन के यहाँ एक वाधी जुताई कह दें। जुताई जब कह देते हैं अपन पंच भाई, तो ये जो माटी के कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, खरपतवार होते हैं, वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, और माटी जो है खुल जाते हैं, वे के जो है ऑक्सीजन वे का मिलत है, जिसके खातिर वे की उर्वरा शक्ति में यहाँ काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है।
0: बिल्कुल भैया सही कहा। देखो जो है गर्मी में बरसात से पहले एक गहरी जुताई निश्चित रूप से सारे किसान भाई करते हैं, तो हम कह चुके हैं। लेकिन जो बात बताओ धानन की, देखो धानन की फसल, खरीफ की फसल जी हम गए थे, यह बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और इस समय तो हम देख रहे हैं तमाम पंच भाई दुई विधिते का लगावे का प्रयास कर रहे हैं। एक तो है रोपाई विधि से, और एक है सीधी बुआई विधि से। और ये दोनों विधियाँ देखो अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सही हैं। बात यह है कि किसी के पास कितना समय है और कते समय वो खेती में यहाँ दे पा रहा है, क्योंकि भागम भाग की अपने समय में देखो और भी काम होते हैं, और खेती बाड़ी में भी तमाम तरह के अब तो वैज्ञानिक प्रयोग हो लगे हैं, जी की वजह से देखो सहूलतियाँ भी बढ़ी हैं और समय की कमी हुई है।
1: बिल्कुल भैया, समय की कमी है। मूलापन पंच भाई अपनी खेती पाती के यहाँ समय जरूर देते हैं, देके आप प्रयास करते हैं। और जो है भैया अपन जो पंच भाई हैं, अपन जो खेती पाती की जो व्यवस्था है, किसानी जो है वह खासकर जो है मुख्य फसलन पर निर्भर रहा थे कि धान गेहूं गन्ना, तो कईयों पंच भाई आज जो है कि मुख्य फसलें अपनी ख्यातन में यहाँ लगा देते हैं, और कईयों जो औरी फसलें होती हैं उनका जो है नहीं अपनावते हैं, नहीं लगावते हैं। तो जब ये पंच भाई करते हैं कि खाली मुख्य फसल लगा दें, वही की उत्पादकता पर निर्भर रहते हैं, तो कईयों पंच भाई जो लोग इस करते हैं उनका काफ़ी बार नुकसान उठावे पड़ जाते हैं। तो वे नुकसान तो यहाँ बचे की खातिर आजकल अपने कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ और टीवी समाचारन के माध्यम से यहाँ आजकल अपने पंच भाई के यहाँ नई नई तकनीकी नई नई जानकारी के माध्यम से यहाँ अपन पंच भाई काफ़ी जागरूक हो गए हैं, और जागरूकता के तहत अपन पंच भाई अपनी मुख्य खेती यानी गेहूं धान की फसल के साथ ही साथ कृषि जो है पशुपालन और जो है कुक्कुट पालन औरों कईयों डेयरी उत्पादन की कईयों प्रकार की प्रणाली जब अपनावत हैं और एक खेती पाती के साथ है, तो ये प्रणाली कहीं समन्वित कृषि प्रणाली कहते हो, ये प्रणाली कहीं अपना कहीं अपन पंच भाई काफ़ी लाभ उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखो चाहे डेयरी उत्पादन हो चाहे कुक्कुट पालन हो, इमा हम देखे थे कि जो हमारा खेती से समय बच जाते हैं या खेती के साथ साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से देखो अपने पंच भाई कर रहे हैं और बढ़िया मुनाफा भी उठा रहे हैं।

0: और जहाँ तक बात आवत है समन्वित कृषि प्रणाली की, तो इमा एक चीज़ और लागू होती कि हम अपनी जो मुख्य फसलें हैं उनके साथ साथ में बागवानी है या मेड़न पर है ऐसे पेड़ पौधा लगा सकते हैं जिनसे हमका अतिरिक्त आय 2 साल बाद 4 साल बाद मिल सकत है। जैसे कि मान लिया यदि हम सागौन के पेड़ लगाए रहन है या और कोई ऐसे फलदार पेड़ लगाए रहन है जिनसे हमका फल भी मिल रहे हैं और हमारी खेत की जो चौहद्दी है जो वहाँ बाउंड्री जी का हम कहते वहाँ सुरक्षित रहते कहूँ ना कहूँ एक बेड़े के रूप में देखो वही पेड़ काम करते हैं। तो इनका हमारे पंच बहन का उपयोग में लाभ
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: भैया, जो पेड़ जो है आप बताओ ना कि जो मेड़न पर लगा दें जाते हैं, तो जो वे के मुख्य फसल रहते हैं वे का कई बार जो कीड़ा होते हैं वही पर आक्रमण करते हैं, जो मेड़न पर जो है पौधा लगाए रहते हैं उन्हें पर आक्रमण करे थे, जेके खातिर अपन जो मुख्य फसल रहते वह जो है सुरक्षित हो जाते। और एक ही साथ साथ आप जब बताए ना कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, कुक्कुट पालन और साथ साथ मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज़ें कहीं अपन पंच भाई अपना रहे हैं। और ये जब कृषि प्रणाली जो होती है समन्वित कृषि प्रणाली कहीं अपना कहीं जो खाद्यान्न की आपूर्ति रहते वह सब तक जो है पहुँच पावती है। अगर खाली मुख्य फसल पर अगर अपन पंच भाई निर्भर रहते हैं कि धान, गेहूं, गन्ना, तो वहीते जो है पूरी खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पावती। और साथ ही साथ जो पोषण जो थाले में यहाँ सारी चीज़ें हो चाहिए, कायद कि अपने शरीर के यहाँ सारी चीज़ें चाहिए और सारी चीज़ें के खातिन सारी चीज़ें का उत्पादन हो चाहिए। और उत्पादन जो है तभी हो पावत है जब अपन पंच भाई समन्वित कृषि प्रणाली का जो है अपनावत है।
0: बिल्कुल सही कहो। देखो बातें तो बहुत हैं और बहुत बढ़िया तुम बताए रही हो, लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने खेतन में खरीफ फसल की तैयारी चल रही है, तो आओ ऐसे एक जुड़ी भेंटवार्ता सुन ली जाए। क्योंकि हम देखे जाए चाहे वो रोपाई बीज से हम धान उत्पादन कर रहे हैं या सीधे सीधे बुआई बीज से कर रहे हैं, लेकिन खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमेशा हमारे सामने रहते हैं। तो आप जानी थे कि खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन कैसे कीन जा सकत है, इके वार्ताकार हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: तो आई का सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं, खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, यानी जो बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं खरीफ फसलों के साथ उनका प्रबंधन समन्वित ढंग से कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर वीपी सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन की बात करें, उसके पहले खरीफ में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
3: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। प्रायः खरीफ के मौसम में किसान भाई धान, मक्का, ज्वार, बाजरा की खेती करते हैं, दलहन के रूप में अरहर, उड़द और मूंग की खेती करते हैं और तिलहन के रूप में मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तिल इत्यादि की खेती करते हैं। अब किसान भाई, इन सारे फसलों में अगर हम खरपतवार के प्रकार की बात करें तो इनको मैं 3 श्रेणी में बांट करके आपको बताता हूँ। पहली श्रेणी के खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले, जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। इनमें मुख्यतः कनकथा, महकुआ, बन मकोय, काला दाना, सफ़ेद मुर्ग, जंगली जूट, दुधी बर की खरपतवार आते हैं
2: और पत्थरचट्टा भी
3: आता है। दूसरा समूह है सकरी पत्ती वाले, जिनकी पत्तियां पतली होती हैं, जिनको घास कुल भी कहा जाता है। इस ग्रुप में सवा, जिसको बहुत से किसान लोग सेवई के नाम से जानते हैं, दूब घास, बनरा, बनरी या मकड़ा या डिस्टेरिया ग्रुप के खरपतवार आते हैं। और तीसरा ग्रुप होता है मोथा परिवार, जिसको हम साइप्रस इरिया के रूप में जानते हैं, इनका प्रकोप होता है।
2: तो जो भी खरीफ की फसलें हैं उनमें कोई क्रांतिक अवस्था होगी कि जब इन खरपतवारों का प्रबंधन आवश्यक होगा, क्योंकि उसी समय फसल का नुकसान सबसे ज्यादा होता है।
3: वैसे किसान भाई पूरी फसल अवधि के दौरान खरपतवारों से मुक्त नहीं रह सकते, ये आर्थिक दृष्टि से हितकारी भी नहीं, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है। अतः किसान भाइयों को खरपतवारों के रोकथाम, फसल में क्रांतिक अवस्था जब खरपतवार और फसल की स्पर्धा ज़्यादा होती है।

0: उस समय करना चाहिए।
1: जैसे
0: जैसे धान में ये अवस्था 30 से 45 दिन बुआई के बाद आती है,
1: रोपाई वाले धान में।
0: रोपाई वाले धान में सीधी बुआई वाले धान में 15 से लेकर के 45 दिन बुआई के बाद का जो अवधि है ये क्रांतिक अवस्थ है। मक्का ज्वार में भी 15 से 45 दिन होता है, बाजरा में 30 से 45 दिन, इसी तरह मूंग उड़द अरहर ये सब 15 से 45 दिन। इस अवधि के दौरान किसान भाइयों को अवश्य खरपतवार का प्रबंधन करना चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान होगा।
1: नुकसान अगर होगा तो कितना होगा पैदावार में?
0: ये फसल वार जो बैरी करता है, जैसे रोपाई वाले धान में 15 से लेके 40%, सीधी बुआई वाले धान में 50 से लेके 90%, कभी कभी 100% 100% नुकसान हो जाता है। उसी तरह मक्का में 40 से 60%, ज्वार और बाजरा में 15 से 40 या 15 से 60% तक नुकसान होता है। और जहाँ तक दलहन मूंग उड़द अरहर की बात है, उसमें भी 40 से 60% तक पैदावार में कमी होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो तीनों तरह के खरपतवार हैं जो खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके समन्वित प्रबंधन की बात करें तो कौन कौन से उपाय हैं जो किसान भाई बहन आसानी से अपना सकते हैं ताकि इनका समन्वित प्रबंधन भी हो जाए?
0: खरपतवारों के लिए रोकथाम के लिए बहुत सी विधियां हैं, जिसमें से कुछ विधियां ऐसी है जिसको किसान भाई बिना रसायन का उपयोग में ला सकते हैं। वैसे भी किसान भाई बुआई के पहले खेत की तैयारी करते हैं, लेकिन एक विधि होती है स्टेल सीड बेड, बुआई के पहले खरपतवारों को नष्ट करना। प्रायः खरीफ मौसम में फसलों की बुआई के पहले ही किसान भाई खेत की तैयारी किए रहते हैं, और वर्षा ऋतु या वर्षा ऋतु के पहले भी अगर किसी प्रकार का बारिश मिल जाता है तो उस समय खेत में खरपतवार उग जाते हैं बुआई के पहले ही। अतः किसानों को उसको नष्ट कर देना चाहिए, चाहे हल्की गुड़ाई से या कुछ रसायन है जिनका प्रयोग से, इसको स्टील सीड बेड करते। दूसरी सावधानी किसान भाइयों को करना चाहिए, शुद्ध साफ बीज का प्रयोग करें या ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो हमारे खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा कर दे। थोड़ा अपने बुआई के विधियों में परिवर्तन करें। और कुछ फसल जैसे मक्का है, अरहर है, इसमें अंतर्वर्ती फसलें भी उगा करके जो खाली जमीन है जहाँ खरपतवार उगते हैं,
1: यानी सफसली खेती
0: कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यांत्रिक विधियां हैं, जैसे व्हील हो है, जिनको चला करके खरपतवारों का रोकथाम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि किसान भाई फसलों को लाइन में बोएं।
1: और अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो सुरक्षित खरपतवार नाशियों का प्रयोग भी?
0: जी हाँ, सुरक्षित खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से काफी लाभकारी होता है, कम खर्चीली होता है, और ये शाकनाशी रसायन फसलवार अलग अलग होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, धान मुख्य फसल है खरीफ की, तो धान की दो तरह से, एक तो धान की सीधी बुआई कर रहे हैं किसान भाई बहन और रोपाई विधि भी अपना रहे हैं, तो इसमें खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें?
0: वैसे तो किसान भाई जानते होंगे कि जो सीधी बोनी या सीधी बुआई वाले धान है उसमें खरपतवारों की संख्या अधिक होती है, और रोपाई वाले धान में खरपतवारों की संख्या कम होती है। इसका कारण होता है रोपाई वाले धान में मचौआ या पडलिंग किया जाता है, जो खरपतवार रोकथाम के लिए एक विधि है। इसके अलावा जो शाकनाशी रसायन है, तो मैं किसान भाइयों को दोनों स्थिति में कुछ शाकनाशी रसायन को बता रहा हूँ जो वो लिख सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पुरानी शाकनाशी रसायन थी पेंडीमिथ्रिन, जिसकी लगभग 1300 से 2000 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं,
1: यानी लगभग सवा लीटर से लेके
0: दो लीटर तक
1: पर एकड़
0: ये इसका छिड़काव करें, और ये बुआई से 2-3 दिन के अंदर कर दें,
1: यानी 48 से 72
0: घंटे के बीच में। उसी तरह दूसरी भी बुआई के 2-3 दिन के अंतर ही छिड़काव करने वाला शाकनाशी रसायन है, जिसका प्रेटिला क्लोर और पायरोजोसल्फिरान, ये कंपनी से रेडी मिक्स के रूप में आ रहा है, जिसकी 800 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं।
1: और ये भी प्री इमरजेंस है?
0: ये प्री इमरजेंस है, बुआई के 2-3 दिन के अंदर ही कर देना है।
1: इसके अलावा
0: भी अगर कोई किसान भाई इन दोनों दवाओं का प्रयोग न कर पाया हो तो उसके लिए अन्य शाकनाशी रसायन है, जैसे बिसपायरीबैक सोडियम, जिसकी 100 ml प्रति एकड़ की मात्रा, और ये 15 से 20 दिन बुआई या रोपाई के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं,
1: यानी खड़ी फसल में
0: फसल पे कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह साहेलोफा ब्यूटाइल है, ये घास कुल के खरपतवारों को मारती है, और इसका

0: 350 ml प्रति एकड़,
1: ये भी 15 से 20 दिन,
0: 15 से 20 दिन, सारे 15 से 20 दिन है अर्ली पोस्ट इमरजेंट। इसके अलावा प्रोपानिल, ये बहुत पुरानी हर्बिसाइड है लेकिन बंद हो चुकी थी, अब ये दूसरे फॉर्म में आ रही है और काफी कारगर है। इसकी 1000 से लेके 1250
1: यानी 1 से लेके 1.25 लीटर
0: तक ये प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह रेडी मिक्स बहुत सी अच्छी शाकनाशी रसायन है जो सभी प्रकार के खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं,
1: जैसे
0: बिस्पायरीबैक सोडियम और पायरेजो सल्फेरन मिथाई 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़, या बिस्पायरीबैक सोडियम, क्लोरीम्यूरान मिथाइल और मेट सल्फ्यूरन मिथाइल, ये 3 शाकनाशी रसायनों का कॉम्बिनेशन है, इसका भी 40
1: यानी ये विशेष असरकारक,
0: ये विशेष असरकारक है और ये सभी प्रकार के खरपतवारों पे कारगर तरीके से, प्रभावी तरीके से रोकथाम।
1: और रुपाई या बुआई के 15 से 20 दिन
0: के बाद, और इसमें जो नई कुछ शाकनाशी रसायन आई है जैसे पिनाक्सुलाम और साहेलोफाप का रेडी मिक्स कॉम्बिनेशन है, इसकी 800 ml, या ट्राइफामोन और इथॉक्सी सल्फ्यूरान 100 ग्राम, ये धान की इस समय की सबसे कारगर शाकनाशी रसायन है जिनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां मक्के की फसल है, ज्वार बाजरा है, तो उसमें भी खरपतवारों का प्रबंधन आवश्यक है?
0: जी हाँ, इसके लिए भी कुछ नई शाकनाशी रसायनों का अनुसंधान हुआ है जिसमें टेम्बोट्रियन, जिसकी 115 ml प्रति एकड़ की दर, या टोप्रामिजोन, ये भी लगभग 20 से 25 दिन बुआई के बाद पोस्ट इमरजेंस के रूप में डाल सकते हैं। हाँ, कुछ किसान भाई अगर बुआई के तत्काल बाद डालना चाहें तो अभी भी पुरानी शाकनाशी रसायन अट्राजिन, जिसकी 400 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से उसका प्रयोग,
1: ज्वार बाजरा मक्का तीनों में
0: कर सकते हैं। ज्वार बाजरा में अट्राजिन की जो डोज है, मात्रा है, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी मिजोट्रियन और अट्राजिन का रेडी मिक्स आ रहा है, टेम्बोट्रियन एट्राजिन का रेडी मिक्स आ रहा है, जिनका भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे प्रभावी नियंत्रण देखा गया।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ दलहनी फसलों में अरहर, उड़द और मूंग है, तो वहाँ खरपतवारों का प्रबंधन कब, कैसे और कितना करें?
0: दलहन में जो शाकनाशी रसायन का प्रचलन है उसमें पेंडीमिथ्रिन, जो पुरानी शाकनाशी रसायन है, आज भी बहुत कारगर है, ये बुआई इसके 2-3 दिन के अंतर कर दे किसी भी प्रकार का, चाहे दलहन हो या तिलहन हो।
1: 1.25 लीटर प्रति एकड़,
0: 1.25 लीटर, 1 से लेके 1.25 लीटर प्रति एकड़ की दर से इसका बुआई के 2-3 दिन या बुआई के तत्काल भी बाद इसका प्रयोग कर सकते।
1: और खड़ी फसल में,
0: खड़ी फसल में शाकनाशी रसायन काफी मात्रा में आ गई है जिसमें इमेजेथेपायर, ये सभी प्रकार के खरपतवारों को मारती है और ये मूंग, उड़द और अरहर तीनों में प्रयोग हो सकती है। इसकी मात्रा है 400 ml प्रति एकड़। इसी तरह आगजी फ्लोरफेन 250 से 400 ml प्रति एकड़, और क्यूजाला फाप, ये जब सकरी पत्ती वाले घास कुल की अगर किसी दलहनी फसल में इसका प्रकोप ज्यादा है तो क्यूजाला फाप इथाइल का प्रयोग कर सकते हैं,
1: और ये बुआई के 15 से 20 दिन
0: के बाद इसका।
1: लेकिन ऑक्सी फ्लोरोफेन जो आपने बताया,
0: ये बुआई से 3 दिन के अंदर ही, प्री इमरजेंस पेंडीमिथ्रिन और ऑक्सी फ्लोरफेन, ये दोनों 3 दिन के अंदर ही।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ मूंगफली की फसल है तो उसमें भी खरपतवार,
0: उसमें भी इमेजेथ, हाँ उसमें भी, और इमेजेथेपायर, ये बड़ी कॉमन दवा है, इनका प्रयोग कर सकते हैं और पेंडीमिथ्रिन का भी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9415195535, 9415195535, 94-15-19-55-35।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाई जो शाकनाशी रसायन का प्रयोग करें उसमें कुछ सावधानियां बरती जाए, जो मैंने दवा की मात्रा बताई उससे कम, उससे ज्यादा न करें, उतना ही करें, और हवा की दृष्टि में थोड़ा सा ध्यान दें, हवा के विपरीत छिड़काव न करें, उनके शरीर पे वो दवा आ सकती है, स्वास्थ्य के लिए है, और उस समय किसान भाई किसी प्रकार का नशा पत्ती, बीड़ी, तम्बाकू का प्रयोग न करें, ये स्वास्थ्य।

0: के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा न थोड़ा जहरीला होता।
1: डॉक्टर वीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अपूर भैया,
3: हाँ,
2: डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह भैया, खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन विषय पर काफी विस्तार दिया जानकारी दें और कईयों खरपतवारन का जिक्र कहें, जैसे बलूरा, पत्थर चटा, इनते कैसे अपनी फसल का निजात दिलावा जा सके, यही विषय पर पारंपरिक विधि और जैविक विधि तहिया कैसे इनका निवारित कीन जाए, यही विषय पर जानकारी दें, यही खातिर इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया बहुत अच्छे तहिया इनते पूछें, यही खातिर इन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल, अब देखो जब अपने खेतन से खरपतवार हट जाते हैं या नियंत्रित हो जाते हैं तो हमारी जो फसल की मात्रा है, जो उत्पादन है, वो काफ़ी हद तक बहुत बढ़ जाते हैं। काहे कि जो भी हमारा चाहे पानी है या उर्वरक है या और भी चीज़ें हैं, हमारी मेहनत है, वही का तमाम सदुपयोग हमारी फसलन का होत है और वही का दुरुपयोग ना हो पावत है।
2: बिल्कुल दुरुपयोग नहीं हो पावत है। और जब अपने जो ख्यातन के फसल है जो अपन पंच भाई लगावत हैं, जब उनके उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और जो है उनका उत्पादन अच्छा मिला था, तो अपन पंच भाई काफी खुश हो जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और जब खुश हो जाते हैं तो अपन जो भारतीय परंपरा है, जो भारत देश है, वो अपने पंच भाई का देश है, किसानन का देश है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में यहाँ लाइन है एक किसानी गीत, तो आई का सुना जाए।
3: बिल्कुल, आई का स्वर देने प्रीति सिंह।

0: आकांक्षा।
1: हाँ भैया,
0: देखो भैया, कितने बढ़िया जानकारी लोकगीत के माध्यम से मिली कि हमका अपनी खेती बाड़ी का नियमित रूप से देख रेख करे चाहिए।
1: बिल्कुल भैया।
0: पहले देखो ये व्यवस्था होता रहा कि हम लोग मचान डालित रहा है, हुए रहित रहा है, खाना पानी देखो भौजाई लेके आया जा रहा है, बहुरिया अम्मा लेके जाती रहे, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, चूंकि संसाधन बढ़ गए हैं तो आराम से खेत तक आसानी से पहुँचा जा सका था, इसके लिए मचान की व्यवस्था थोड़ा कम पड़ गई है, खास करके हुई खेतन के लिए। जैसे अभी कुछ खेतन में है ऐसा बिल्कुल बंद ना है, मूँगफली है आपका, वो देखो उसका क्या कहते हैं, भुट्टा है, तो इनमा सम्मा मचान अभी पड़ते हैं, लेकिन अब देख रेख कम करे के पड़ते हैं, तो देख रेख हमका हर चीज़ का करेक्ट पर चाहिए अपनी खेती बाड़ी में यहाँ। और जब देख रेख की बात आवत है तो उम्मा एक हमका ध्यान दे के यहाँ चाहिए अपने मौसमों पर कि मौसम इस समय का कह रहा है और खेती बाड़ी का लेके का कुछ विशेष बातें हैं, तो मौसम की जानकारी है आपके पास?
1: हाँ भैया,
0: तो
1: बिल्कुल
0: बताओ पंच बहन का।
1: हाँ, ये मौसम संबंधी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कईयों संभागन में गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है और मौसम संबंधी चेतावनी यू जारी की गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कईयों संभागन में मेघ गर्जन के साथ साथ झोंकेदार हवा चले और बौछारें पड़े के संभावना है और जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। और सब लोगों ते यहाँ अनुरोध है सब पंच भाई ते कि जब हवा चले बरसे गरजे तो अपने जानवरन का और खुद अपने लड़का बच्चन का और स्वयं का भी सुरक्षित रखे का प्रयास करें और घर के अंदर रहें।
0: बिल्कुल, देखो ये तो मौसम की जानकारी बहुत बढ़िया दी हो, तो विशेष चेतावनी कोई नए है, लेकिन चूंकि मौसम तो बदलन रहा है हम लोगों का ध्यान देख चाहिए, पानी कबो भी गिर सकत है। अब अपना जो कार्यक्रम है ये देखो एक बहुत सामान्य लोगों से अपने पंच भाई से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और इसका अधिकतर लोग सुनत हैं, जत्ते किसान भाई हैं जत्ते गांव घर के लोग हैं, लेकिन उनकी कुछ अपने विषय रहते हैं जिनका वे हम तक पहुंचावा चाहते हैं या इसे कुछ संदेश रहते हैं जो हम तक भेजे चाहते हैं, तो वी के लिए देखो आकाशवाणी लखनऊ अपना एक मेल आईडी भी बनाई से, और पता तो हम पंच जनते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग हर कार्यक्रम में बताए थे एक बार फिर से पंच बहन का पता और ईमेल आईडी बता दो।
1: हाँ भैया, कार्यक्रम का पता है लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001 और ईमेल आईडी है जहीं पर अपन जो है पंच भाई ईमेल भेज सकते हैं। मेल आईडी का पता है farm@lko.lucknow@gmail.com।
0: बिल्कुल, देखो अपने पंच भाई अब तो अच्छा एक चीज़ है, जब से गाँव में डिजिटलीकरण हुआ है, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल उहाओ देखो वो वाला ना है मोबाइल जी में फोटो हो ना खींचे जा सकें, अब तो भैया सारी व्यवस्था है और उस मेल से चलत भी है, तो पंच भाई अपनी मेल का प्रयोग करके हम तक अपन संदेश भेज सकते हैं या पत्राचार करके चाहे तो पत्राचार कर सकते हैं, और इसे देखो हमका बड़ी प्रसन्नता होते है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चली कुछ और एक बात कर ली जाए कि देखो इस समय खरीफ फसल बुआई चल रही है, लेकिन साथ ही साथ में अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध बहुत जरूरी है।
1: हरे चारा में यहाँ भैया इतने समय धैंचा करवी ये सब अपन पंच भाई खरीफ के अंतर्गत लगाए हैं, और जब धान लगे हैं अपन पंच भाई तो ये जो धैंचा है करवी है ये जो है वे का काट देते हैं वे का खाद में यहाँ वे की ठुठिया

0: जो है लगा जो है उसका जुताई करवा देते हैं, तो ये कि अपन हरा चारा के साथ साथ वे खेत के यहाँ वे के जो पोषण क्षमता है वहाँ वहीं यहाँ बढ़ोतरी हो जाती है।
1: यदि एक शब्द में कही तो देखो, हरी खाद जी का हम पंच कह सके थे, वही के उपयोग में हम का लाए सकते हैं। और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो पंच भाई अपने खेतन में प्रयोग कीन करते हैं। देखो, लेकिन जो तुम बतायो, अगर जो हरी खाद के रूप में हुई उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि विकी वह हम यहाँ पलेवा कर दें, जो कि सड़े के बाद में एक अच्छा उर्वरक तैयार हो जाते हैं।
0: हाँ भैया,
1: अब देखो, अपने कार्यक्रम का समय समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो पंच भाई से लीन जय विदा।
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी

0: नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
3: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
1: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
4: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की

0: दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टॉक्सिकोलॉजी विषय पर भेंटवार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
1: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अगले साल के अंत में होने वाले अपने अगले आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों और एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री के नाम घोषित किए हैं। ये मिशन स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार कक्षा में परीक्षण करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और रैंडी ब्रेसनिक तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी अंतरिक्ष यात्री लूका परमिटानो आर्टेमिस तृतीय के चालक दल में शामिल होंगे। 4 सदस्यीय ये मिशन एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के चंद्रयानों का पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण करेगा, जिसमें एक एक करके नाजुक डॉकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। मेडिकल साइंस में एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जिसे कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा माना जाता था। वैज्ञानिकों ने इंसानी उम्र के बढ़ते असर को रोकने और उसे वापस पलटने की दिशा में एक बेहद बड़ी सफलता हासिल की है। अमेरिका के बॉस्टन में स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लाइफ बायोसाइंसेज ने घोषणा की है कि दुनिया के पहले पार्शियल सेलुलर रीप्रोग्रामिंग क्लिनिकल ट्रायल के तहत पहले इंसानी मरीज को दवा की खुराक दे दी गई है। चिकित्सा इतिहास के इस ऐतिहासिक पड़ाव को ER-100 नाम के एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। इसका प्राथमिक परीक्षण उन मरीजों पर किया जा रहा है जो ग्लूकोमा और उम्र से जुड़ी आंखों की अन्य बीमारियों के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। 9 जून यानी मंगलवार को सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आकाश में एक अद्भुत एवं दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली, जब सौर मंडल

0: दो सर्वाधिक चमकीले ग्रह शुक्र एवं बृहस्पति एक दूसरे के अत्यंत निकट दिखाई दिए। खगोल विज्ञान में इस घटना को ग्रहीय युति यानी प्लैनेटरी कंजंक्शन कहा जाता है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना के अवलोकन हेतु लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला परिसर में दो उच्च क्षमता वाले टेलीस्कोप और दो एस्ट्रोफोटोग्राफी स्टेशन स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त जन सामान्य की सुविधा के लिए अन्य जगहों पर भी दो टेलीस्कोप लगाए गए। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया।
1: और अब बात नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टॉक्सिकोलॉजी यानी नैनो कणों की विषाक्तता की। अक्सर हम बड़ी बड़ी चीजों की बातें करते हैं, बड़े रॉकेट, बड़ी गाड़ियां, बड़ी इमारतें, लेकिन आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो इतनी छोटी है कि हमारी आंखों से दिखती ही नहीं। जी हाँ, आज हमारा विषय है नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टॉक्सिकोलॉजी यानी नैनो कणों की विषाक्तता की। इस सूक्ष्म दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पांडे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियो में।
2: श्रोताओं को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि डॉक्टर आलोक लखनऊ स्थित CSIR भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी IITR में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं। जी आलोक जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नैनो का मतलब क्या होता है।
2: नैनो एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है बौना, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई थी सबसे पहले 1959 में, फिजिसिस्ट थे एक रिचर्ड फाइनमैन, जिसमें उन्होंने एटम्स में सीधे बदलाव करके सिंथेसिस की संभावना के बारे में बताया था। और ये शब्द उसके बाद 1974 में सबसे पहले नोरियो तानिगुची ने इस्तेमाल किया, और फिर रिचर्ड फाइनमैन के विचारों से प्रेरित होकर एक डॉक्टर के एरिक ड्रेक्सलर ने 1986 में अपनी किताब इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। नैनो टेक्नोलॉजी अब हम लोग बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। उसके बारे में लोगों को जानकारी है या नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता।
1: जी, तो इतने छोटे कण जिन्हें हम साधारण माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते, तो इतने छोटे कण आविष्कार करने की जरूरत क्या थी?
2: दरअसल इसका जो इस्तेमाल शुरू हुआ वो इतने छोटे कण जो आप बता रहे हैं, इसका अगर सही से हम लोग इसको अनुवाद करें या इसको समझें, तो अगर एक बाल को हम लोग खड़े बाल को 1,00,000 टुकड़े करें तो जो सबसे आखिरी टुकड़ा मिलेगा उसको नैनो बोलते हैं। तो अब ये इतना छोटा टुकड़ा है कि हमको खुली आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखता है, हालांकि बहुत से जो नॉर्मल हमारे माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते हैं, जो आम भाषा में लोगों को पता है माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं दिखते। तो इसको देखने के लिए बहुत हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, जो खास करके इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। और इसका जो इस्तेमाल हुआ इसलिए क्योंकि जब नैनो स्तर पर कोई पदार्थ चला जाता है तो इसका जो विशेषताएँ हैं मतलब अद्भुत रूप से बदल जाती हैं। कोई एक बल्क पदार्थ या जो बड़ा पदार्थ है उसको जब छोटे पार्टिकल में हम नैनो पार्टिकल रेंज में ले जाते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो अप्रत्याशित रूप से चेंज हो जाता है।
1: जी, यानी उसके गुण में कई तरह
2: गुण में बहुत तरह के मतलब गुण या अवगुण जो भी हैं वो बहुत विस्मयकारी रूप से बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वैज्ञानिकों ने फिर शुरू किया। हालांकि शुरू में इसका इस्तेमाल जो होना था वो जैसे नैनो कैंसर के इलाज के लिए, दवाओं का डिलीवरी करने के लिए, बहुत सारी एनर्जी स्टोरेज के लिए और बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अभी आजकल पेंट्स में इस्तेमाल होता है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नैनो मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता। अभी आप चाहे खेलकूद के सामान में ले लें, आप कपड़ों में ले लें, आप दवाइयों में ले लें, आप खाने के सामान में रखें इसको, पेंट्स में रखें, जो हमारे घरों में पेंट्स होते हैं आजकल, आप विज्ञापनों में बहुत सारे टीवी में विज्ञापन देखते होंगे, उसमें भी लगभग हर तीसरा चौथा विज्ञापन होता है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे इस तरह के कोई भी पदार्थ हो, इवन आप AC की टेक्नोलॉजी में है, वाटर फिल्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी में है, लगभग हर क्षेत्र में कृषि में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, नैनो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं।
1: जी, यह तो वाकई जादू जैसा है। तो यह हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह तो बात हो गई नैनो टेक्नोलॉजी की, लेकिन नैनो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है?
2: दरअसल जब कोई भी नई तकनीक या नई चीज हमारे रोजमर्रा के कामों में आने लगती है, जैसे एक छोटा उदाहरण हम आपको देंगे कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था देश में, तो चूंकि भुखमरी की स्थिति थी, हमको खाना चाहिए था, तो वैज्ञानिकों ने उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया। चूंकि उस समय हमको खाना चाहिए था इतनी बड़ी जनता को खाना खिलाने के लिए, तो हमने वो इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हमें मिले वो बाद के 10 साल 20 साल 50 साल के बाद तक मिलते आ रहे हैं। तो फिर हमें समझ में आया कि अच्छा, इसका इस्तेमाल अब कम किया जाए, और इसकी ये समस्याएं हैं, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। तो अब इसी तरह से जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका कोई दुष्परिणाम ना हो आगे जाके, क्योंकि हम इस्तेमाल तो हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम चाहे एनवायरमेंट में हो, चाहे ह्यूमन में हो, चाहे जानवरों में हो, कहीं पर भी हो,

0: जानकारी करने के लिए हमें नैनो टॉक्सिकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, या नैनो विषाक्तता जिसको हम बोलते हैं। तो ये जानने से ये फायदा हो जाएगा कि अगर हम इसको अभी टेस्ट कर लें कि ऐसा तो नहीं कि इससे मानव पे या एनवायरमेंट पे या जलीय जीवों पे या किसी पे भी कोई टॉक्सिक इफेक्ट या कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि हम ऐसे ही नैनो पार्टिकल बनाएंगे जिसका इफेक्ट सही हो या अच्छा हो, जो एनवायरनमेंट में जाने के बाद भी नुकसान ना करें, या हम किस लेवल तक या किस मात्रा में बना सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए। तो टॉक्सिकोलॉजी का फायदा इस समय यही है कि हम पुरानी अपनी जो भी एक्सपीरियंस कह लीजिए, गलतियां मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो भी जरूरत थी उस समय, तो जो एक्सपीरियंस हमारा पुराना है उसके हिसाब से हम नई चीजों को जब हम इस्तेमाल में ला रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान हमको होने लगे आगे जाकर। तो इसलिए हम लोग नैनो टॉक्सिकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इसमें, और ये जानकारी करने के लिए कि इन जो नैनो मटेरियल है इनका क्या साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं एक तरह से, कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।
1: इस्तेमाल तो ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में हो रहा है जैसा कि आपने बताया
0: जी।
1: तो लोग नैनो पार्टिकल के संपर्क में कैसे आ जाते हैं?
0: नैनो पार्टिकल के संपर्क में आने के कुछ मेजर तीन चार रास्ते हैं
1: जी।
0: जैसे हमने कॉस्मेटिक्स की बात की, तो अगर कॉस्मेटिक्स में कोई नैनो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, जैसे आमतौर पर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है नैनो पार्टिकल, सनस्क्रीन है या कोई भी कॉस्मेटिक, तो अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं या त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानने के लिए कि त्वचा के थ्रू अंदर तो नहीं जा रहा है शरीर में या ब्लड में तो नहीं जा रहा है, तो हम एक रास्ता हो गया स्किन के थ्रू। दूसरा ये है कि अगर हम कोई खाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसको खा रहे हैं तो वो होता है आप तो इंजेशन के थ्रू, तो एक रास्ता ये हो गया। तीसरा रास्ता हो गया सांस के थ्रू, क्योंकि हम सांस कभी लेना बंद नहीं करते, 2400 घंटे सांस लेते हैं, चाहे हम फ्रेश जगह पे हों या कंटामिनेटेड जगह पे हों। तो जब हम नैनो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हों या नैनो मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हों वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका, तो इससे जो उनके सांस के थ्रू अंदर जाता है। तो मेजर तो यही तीन रास्ते हैं, इंजेशन, इनहेलेशन और स्किन के थ्रू। जाने अनजाने में लोग इनसे एक्सपोज हो ही रहे हैं।
1: तो क्या सभी तरह के नैनो पार्टिकल्स खतरनाक होते हैं?
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर खतरनाक ही होते तो हम बनाते ही नहीं। तो जो वैज्ञानिक बना रहे हैं या जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टनों टन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर सिर्फ ये पहले हमें पता हो जाए कि खतरनाक ही है तो हम बनाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत ये सब नुकसानदायक हैं, जैसे बहुत से सुरक्षित और उपयोगी जो इसके नैनो पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं वो सनस्क्रीन में होते हैं जैसे मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल नुकसान ही करेगा या खतरनाक ही होगा, लेकिन कुछ हैं जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब है या इस तरह के मटेरियल्स हैं कुछ, तो अगर वो इनहेलेशन में जाते हैं या आपकी सांस में जाएंगे तो फेफड़ों में सूजन हो सकती है या फाइब्रोसिस हो सकती है, या अगर वो बहुत छोटे पार्टिकल हैं और लंग में जाएंगे तो वहाँ से आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा सकते हैं, फिर इसके थ्रू वो ब्रेन में भी जा सकते हैं, तो इस तरह से वो पूरी बॉडी में मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नैनो पार्टिकल ऐसा करेंगे। आप कितना इस्तेमाल करते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं और वो अल्टीमेटली कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है जा करके, तो इससे उसका तय किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में कि वो नुकसान करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादातर जो है नैनो पार्टिकल अच्छे ही हैं और अच्छे बनाए जाते हैं, अच्छे कामों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो हम ये मान के चलते हैं कि वो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन ये जानने के लिए हमारे पास उस तरह की लैब फैसिलिटी होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए कि हम उसको पहले से जान लें, कि चाहे हम उसको एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करें या दूसरे अकशेरुकी जीवों पे जैसे जो पानी में रहते हैं उन पे टेस्ट करें कि उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा मछलियों में जैसे, तो इन सभी पे हम लोग टेस्ट करके ये देखते हैं कि किस में किस लेवल पे इसमें विषाक्तता आ रही है। तो वो जो सेफ लेवल है उसकी ज़रूरत है आजकल, कि हम जब भी इस्तेमाल करें तो सेफ लेवल में ही इस्तेमाल करें
1: जी। यानी इससे कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है हमारे बॉडी पे कुछ खास तरह के जो नैनो पार्टिकल है उनसे, तो इनसे क्या क्या बीमारियां समस्याएं हो सकती हैं?
0: अब बीमारियां जैसे आप अगर फेफड़ों में जैसे अगर सांस लेने में आपने इसको इनहेल किया है ज्यादा, या जो मैन्युफैक्चरिंग है अगर वहाँ सही से प्रोटेक्शन नहीं लिया गया, उनको ग्लव्स और मास्क और ये चीजें नहीं दी गई, चूंकि नैनो पार्टिकल हैं तो साधारण मास्क से काम नहीं चलता, इसलिए आपको एक स्पेशलाइज मास्क चाहिए। अगर ये सब सुविधा नहीं दी गई तो जैसे फेफड़ों में सूजन है, फाइब्रोसिस है या कैंसर हो सकता है, तो ये चीज़ें इसकी संभावना है। अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो जैसे एलर्जी होती है, और डर्मल लेयर में पोटेंशियल इसका जो है वो पेनिट्रेशन अगर अंदर गया तो उसके थ्रू वो फिर ब्लड सर्कुलेशन होकर पूरी बॉडी में जा सकता है। अगर हम उसको निगल रहे हैं या मतलब खा रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो अंदर जाके किसी अंग में इकट्ठा हो सकता है, किडनी पर असर कर सकता है। तो ये इसके जो एक्सपोजर के रूट्स हैं उसके हिसाब से ये इफेक्ट कर सकता है अलग अलग अंगों पे।
1: जी, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? हालांकि इसके नैनो पार्टिकल्स के जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे फायदे हैं, इसी वजह से इसका आविष्कार भी किया गया, तो इस क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं?
0: देखिए, किसी भी नए टेक्नोलॉजी की चुनौतियां यही होती हैं कि उसको बिना पूरी तरह टेस्ट किए या उसकी जानकारी रखे बिना उसको बाजार में उतार दिया जाए या बिना जानकारी के आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो मुख्य चुनौती जो है वो इनोवेशन जिसको कहते हैं हम, किसी चीज का बनाना और उसकी सुरक्षा, वो सुरक्षित है कि नहीं है, तो इसके बीच हमको बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सुरक्षा की बात हमेशा करते रह जाएंगे कि सुरक्षित बनाना है, तो हो सकता है वो इनोवेशन बाजार में ही ना आए या लोगों के इस्तेमाल में ही ना।

तो उसका फायदा नहीं ले पाएंगे हम। और अगर हमने सुरक्षित रखने का उसका तरीका खत्म कर दिया, सुरक्षा नहीं देखी हमने, तो ऐसा ना हो कि जैसे पेस्टिसाइड का हल हुआ वैसा कुछ हो जाए। तो हमको सबसे बड़ी जो चुनौती है वो इनोवेशन में और सुरक्षा के बीच में बैलेंस बनाना है कि हम उसको सुरक्षित रखते हुए इनोवेशन करें। और इसके लिए मजबूत रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं उनको इस फ्रेमवर्क हमको अच्छा चाहिए, जिससे बेहतर टेस्टिंग हमारी अच्छी हो इसकी, अच्छे से अच्छे तरीके से इसको हर जगह करेक्टराइजेशन से लेकर के और इसकी जो टॉक्सिसिटी या जिसको विषाक्तता कहते हैं वहाँ तक हम ढंग से इसको टेस्ट कर पाएँ, और जो लोगों में या इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुँचाए, इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण में नुकसान ना पहुँचाए,

0: तो खैर 1970-80 से ही है, लेकिन अभी जो काम इस पे शुरू हुआ है वो इस तरह के जो सेफ बाय डिजाइन तरीके हैं वो लोगों में अभी इसके बारे में काफी काफी तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी ऐसी बने कि हम अच्छी चीजें बनाएं और उसको इस्तेमाल ढंग से कर पाए। तो चुनौती अभी यही है कि हमको दोनों में बैलेंस बनाना है।
1: जी, तो इस क्षेत्र में IITR क्या कर रहा है?
0: अगर आप IITR की बात करें तो IITR में 2006 में नैनो टॉक्सिकोलॉजी पे काम शुरू हुआ था, हम लोगों की लैब ने ही शुरू किया था उस समय, तो 2006 से अभी 2026 आ गया, तो 20 साल लगभग काम इसमें हुआ है। और कुछ बड़ी योजनाएं जो भारत सरकार की हमारी CSIR की योजनाएं थी उस पर IITR उसमें नोडल रहा है, और IITR को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी मिला इसमें। तो जो कुछ भी कैरेक्टराइजेशन के लिए जितने उपकरण हमको चाहिए वो सब IITR में उपलब्ध हैं, और इसके अलावा लगभग हर तरह के मॉडल हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मॉडल मतलब आप सेल लाइन जिसको कहते हैं कि किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के आप जो सेल्स होती हैं उस पर हम काम करते हैं, लगभग हर तरह के सेल लाइन इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मॉडल्स हैं, मतलब आपके प्रोटोजोआ हों या छोटे एनिमल्स हों, फिश है, इस तरह के मॉडल उपलब्ध हैं, और छोटे एनिमल्स भी उपलब्ध हैं। तो इन सब पे हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली फिर इस पे जो है कंप्यूटेशनल टॉक्सिकोलॉजी भी काम हो रहा है कि आप बिना एक्सपेरिमेंट किए जो पहले का डेटा है उससे भी आप निकाल सकें कि ये टॉक्सिसिटी हो सकती है कि नहीं।
1: जी बिल्कुल, यानी IITR टॉक्सिकोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी अगर वरदान है तो नैनो टॉक्सिकोलॉजी वह ढाल है जो हमें इसके खतरों से बचाएगी। डॉक्टर साहब, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: तो श्रोताओं, यह थी नैनो टेक्नोलॉजी की छोटी सी लेकिन बेहद असरदार दुनिया। आज के लिए विज्ञान जगत में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। सुनते रहिए रेडियो, बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामियावत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मोहरा फिल्म के इस गीत से। आवाज़ पंकज उदास और साधना सरगम की है।

0: धड़कन फिल्म के इस गीत के साथ ही शाम अवध कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार से हास्य कविता पाठ।
1: माँ शारदा की वंदना में एक कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैहर की माँ शारदे करूँ सदा गुणगान, ज्ञान चक्षु वरदान दो अम्ब सदा हो मान। अम्ब सदा हो मान ज्ञान की तुम हो देवी, रचना लिखता माँ तू आपका बनकर सेवी। कहीं प्रेम कविराय सुभिक्षा से मंगल कर, ब्रह्म ज्ञान का दान दीजिए माता मैहर। भगवान राम सीता और जयंत प्रसंग पर दो कुंडलियां प्रस्तुत हैं। चुन चुन कर श्री राम ने भांति भांति के फूल, श्रृंगारित सिय को किया निज अभिरुचि अनुकूल। निज अभिरुचि अनुकूल रूप का गाधर आया, चोंच मार सिय चरण जयंता रक्त बहाया। किया सीख संधान काग उड़ चला हृदय गुन, मिला न कोई ठौर राम हंते रिपु चुन चुन। नारद मिले जयंत से दीन दुखी अति जान, शरणागत हो राम के राय हमारी मान। राय हमारी मान दया के सागर प्रभु जी, चरण शरण में गए करें रक्षा रघुवर की। दंड दिए प्रभु राम नेत्र कर एक नदारद, रख जयंत का प्राण गए निज गृह मुनि नारद। रख जयंत का प्राण गए निज गृह मुनि नारद। जल प्रदूषण से संबंधित कुछ कुंडलियां समर्पित कर रहा हूं। बंधे में घिरती हुई नालों में तब्दील, सई गोमती घाघरा होती सबको फील। होती सबको फील सही होगी यदि नियत, करें प्रदूषण दूर यहाँ पर हर एक कीमत। कहीं प्रेम कविराय बंद हो गोरख धंधे, धंधे करके बंद सुरक्षित होंगे बंधे। धंधे करके बंद सुरक्षित होंगे बंधे। गंगा जल के पान से खुले स्वर्ग के द्वार, उल्टी दस्त जुलाब से मिले मोक्ष हर बार। मिले मोक्ष हर बार कानपुर हो या पटना, दूषित बहती गंग नित्य होती यह घटना। कहीं प्रेम कविराय सदा सच होता नंगा, करें प्रदूषण दूर विवश रोती माँ गंगा। करें प्रदूषण दूर विवश रोती माँ गंगा। यमुना कल कल बह रही झेल प्रदूषण वार, श्वेत फेन से है भरी दूषित जल की धार। दूषित जल की धार शहर के नाले गिरते, शोधित जल हर बार फेल वह करते फिरते। कहीं प्रेम कविराय किसी को कोई गम ना, हुआ कलंकित काल प्रदूषित।

0: देखी यमुना, हुआ कलंकित काल प्रदूषित देखी यमुना। मलवा सामुद्रिक भरा दूषित जल संसार, जीव जंतु मरने लगे करते हाहाकार, करते हाहाकार लुप्त होते कुछ प्राणी, संरक्षित हो जीव समय की दुर्लभ वाणी। कहीं प्रेम कविराय कभी मत चाटें तलवा, नीति बने अविराम हटे सागर का मलवा, नीति बने अविराम हटे सागर का मलवा। मित्रों, दान तो सभी लोग करते हैं, पर एक ऐसा दान भी है जो जीवन दान देता है। इस स्वैच्छिक रक्तदान विषय दो कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूं। होता जो व्यापार यदि रक्त दान का काम, व्यवसायी बन बेचते करें इसे बदनाम, करें इसे बदनाम रक्त से रोग चुनेंगे, पंसारी का काम चिकित्सक शीश धुनेंगे। कहीं प्रेम कविराय अस्मिता मानो खोता, रक्त दान बिन शुद्ध रक्त क्या संभव होता, रक्त दान बिन शुद्ध रक्त क्या संभव होता। अवसर आया है अभी करें रक्त का दान, नेक कार्य पर हित करें जीवन दान महान, जीवन दान महान प्रेम जनहित में भरिए, रक्तचाप नियंत्रित हो मधुमेह से लड़िए। कह प्रवीण कविराय रक्तदानी मिल जमकर, कर लें दान महान आज ही अनुपम अवसर, कर लें दान महान आज ही अनुपम अवसर। मित्रों, हिंदी भाषा के समर्थन के लिए, विकास के लिए एक कुंडलिया प्रस्तुत है। भाषा चुनिए वोट से लोकतंत्र दरबार, डालें मत अपना सभी प्रजातंत्र आधार, प्रजातंत्र आधार अधूरी सबकी आशा, हिंदी भाषा बने राष्ट्र भारत की भाषा। कह प्रवीण कविराय लोकनायक से आशा, हिंदी चुनकर बने आज भारत की भाषा, हिंदी चुनकर बने आज भारत की भाषा। सहमत हों सब राज्य मिल आवश्यक यह कार्य, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने हिंदी ही स्वीकार्य, हिंदी ही स्वीकार्य राष्ट्र अपना ये माने, प्रजातंत्र आधार इसी को दिल से जाने। कह प्रवीण कविराय वने संसद में जनमत, हिंदी को दे मान राज्य सारे हूँ सहमत, हिंदी को दे मान राज्य सारे हूँ सहमत। मित्रों, खेलों की सब बातें करते हैं, इसमें ओलंपिक खेल सर्वश्रेष्ठ है। प्रस्तुत है कुंडलियां। प्रतियोगी हो विश्व में ओलंपिक का खेल, सर्वश्रेष्ठ देकर करें स्वर्ण पदक से मेल, स्वर्ण पदक से मेल तेज सबसे कहलाएं, सबसे ऊंचा कूद साहसी जब इतराएं। खेल कराता मेल भावना हो सहयोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी, हिस्सेदारी प्रमुख खेल खेलें प्रतियोगी।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण कुमार से हास्य कविता पाठ। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
3: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
4: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव

0: 547 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में पेश है गजलें। कलाकार हैं गुलाम कासिम।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुन रहे हैं गज़लें और कलाकार हैं गुलाम कासिम।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलाम कासिम की आवाज़ में ये गज़ल। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चित्रपट से बस थोड़ी देर में।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं मिलन, सूरज और चंदा, प्रतिज्ञा। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के थी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस

0: और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ

0: महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभयम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।

0: three overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामिये को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ्फुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरक़ी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 5:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर मैक्रों मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों CEOs और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मनक़द की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ दूसरी खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रेटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुत नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी

0: के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाए मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तकम करने में भी मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि आवाम से आवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत और स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रातिस्लावा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खीमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और वक़ार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़िदा 5 रोज़ा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफ़ तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फराहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफ़िक काश्तकारी, ज़रई तिजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मसनूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तआवुन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक की खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मसनूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांव से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से

छिद्र आ गई है। मर्दों के क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में बारिश से मुतासर मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 195 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 13 ओवर्स में 2 विकेट पर 117 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 2 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अल-अक़वामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहां रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगे।

0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुँचता है, उस परम तत्व तक पहुँचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया, और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये

0: हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2 बाय 6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफ़ी समय के बाद हुए थे, वहाँ योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को, और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहाँ से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूँ कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, इस वक्त ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने 2 चीज़ें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा।

0: योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे। भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद

विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है, परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है, वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में, जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की, इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है? जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते।
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की आउटरीच, उसके

0: ओरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: शौर्य आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है।
2: ओके सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
1: हाँ, वो
2: 500
1: लोग
2: रुपये एक फैमिली के कंट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
0: अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूज़िक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट्स के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूज़िक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने
0: एक
1: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र
0: जी
1: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं,
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट।
1: जैसे भी आपने
0: हाँ
1: एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया
0: जी,
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की

0: लय नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैकेयी का प्रसंग कि कैकेयी के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महा आचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: देयर इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, अ सीन टू बिहोल्ड, टू सीइंग देम कम द शूर्पणखास।
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू रामा एंड लक्ष्मण फ्रॉम दैट राक्षसी बावन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लव।
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adita.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of
2: Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम

0: फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing

0: सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है। और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है, लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, और सिर्फ बात नहीं, क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं? जी हाँ, हर घर जल और नल, ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही। और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
1: नमस्कार।
0: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के, और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी, जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
1: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है, जो अपेक्षा है, वो पूरी करना, और बार बार जीतना, और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन। उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
0: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया।
1: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है, और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
0: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
1: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
0: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
1: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
0: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात

0: कर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
1: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबके ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
0: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं, मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था केन बेतवा, दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके

0: अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता।

0: और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं, तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, लगा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है, मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमरों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के नहीं लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं, और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश

0: पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर कि उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है, वो भी माननीय मोदी साहब के जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है, उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है, और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: मैंने मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, हम सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था, और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी, और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक

0: 30 लाख या 40 लाख यूज़र थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूज़र यूज़ करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फ़ोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफ़र और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियाँ हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फ़ोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफ़ी नीतियाँ थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियाँ थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय, जैसा आपने खुद कहा, कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपये का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपये की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा।

0: तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलेगा।
1: सकते।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से देखते
0: देखिए,
1: हैं?
0: डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।